पानी का लुत्फ लीजिए, प्रणाम कीजिए प्रकृति को जो हमारी हर हाल में, हर तरह से, हर रूप में सेवा कर रही है।

जी हाँ, हर तरफ फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं कलियां और नए दिन का स्वागत कर रही हैं। वैसे भी सुबह की शांत हवा में एक खास ताजगी होती है। जब आप इस समय गहरी सांस लेते हैं तो मन का सारा तनाव, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। जब हम अपने हम सफ़र के साथ चलते हैं तो ये सफ़र और भी सुहाना लगता है, जैसे इस वक्त हमें लग रहा है आपके साथ चलते हुए। और आप हमारे साथ चल रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर। रूपा है आपके साथ भोर सुहाने में।

तो जनाब हर भोर को प्रणाम कीजिए और मन से कहिए, जब भोर की पहली किरण आसमां को छूती है तो हर मुसाफिर के दिल में एक नई आस जगाती है। फिलहाल ये वक्त यहीं तक भोर सुहानी का। रूपा आपसे विदा लेती है, फिर किसी नए मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको आज के खास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आएंगी आपके लिए बबीता शर्मा। छह बजकर चवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 34। छह बजकर पचपन मिनट से सात बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम में आपके साथ होंगी बबीता शर्मा। नौ बजे आप सुनेंगे पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। नौ बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल्ली कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे नाज शेख। दस बजे आप सुनेंगे समाचार। दस बजकर तीस मिनट पर होगा कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आएंगे आपके लिए बबीता शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। छह बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी

0: बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The projects significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi, Mr. Shah said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear the brunt for decades. The Home Minister said the government has eliminated the formidable challenges across these three internal security hotspots, and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies, and

बुधवार की सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं अर्पण, और आज साथ हूं मैं आपके बबिता। नमस्कार, सुप्रभात।

मनुष्य को जो सबसे बड़ी विभूति प्राप्त है वो है मानव जीवन। चाहे तुलना निम्न योनि के प्राणियों से करें या देवताओं से, मानव जीवन से श्रेष्ठ और बहुमूल्य संपदा ईश्वर के विभूति भंडार में और कोई है ही नहीं।

सदा मतलब निकालने का ही उसी के फिराक में नहीं रहना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि स्वार्थ के लिए किसी के साथ अनर्थकारी बर्ताव तो नहीं हो रहा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 6:31 और 8 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हम स्वयं ही कर्ता और भोक्ता हैं। कर्म करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जैसे कर्म हम करते हैं ईश्वरीय विधान के अनुसार, वैसा फल भी तुरंत या देर में मिल ही जाता है। इस प्रकार अपने भाग्य का निर्माण करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। परिस्थितियों के जन्मदाता भी हम स्वयं ही हैं। इसलिए दूसरों पर दोषारोपण उचित नहीं है।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय, केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारतचीनदेशयोः मध्ये द्वैपाक्षिकसम्बन्धस्य निरन्तरविकासाय प्रगत्यै च भारतचीनसीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीतडोभालः फिजिकनगरे चीनविदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारतचीनसीमाप्रश्नविषयेषु विशेषप्रतिनिधीनां वार्तायाः 25वें चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीमप्रश्ने राजनैतिकसमाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000 अक्टूबर मासे कजान नगरे, गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्तृकार्यविभागस्य सचिवा निधिखरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्लीनगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिकटन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, NCCF तथा केन्द्रीयभण्डारकेन्द्रेषु पलाण्डुः 35 प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरई, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500

ये मौसम भी क्या रंग लाया है, हवा और घटाएं संग लाया है, मिट्टी की खुशबू फैलाए, सावन आया है। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गोल्ड सुप्रभात के सुरीले सफर में आज मैं हूं आपके साथ बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

ये था प्यार ही प्यार फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। अब बात कर लेते हैं मौसम की। कल शाम आई तेज आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। इससे तापमान में भी गिरावट आई है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब देखना यह है कि आज मौसम कैसा रहेगा, धूप खिलेगी या फिर घटा छाई रहेगी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

केरल का प्रमुख लोक पर्व है ओणम और ये त्योहार खुशियां, समृद्धि और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। मान्यता यह है कि ओणम के अवसर पर महान और प्रजाप्रिय राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग अपने घरों को फूलों की रंगोली यानी पुकलम से सजाते हैं। नौका दौड़, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस पर्व की शोभा बढ़ाते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि वास्तव में प्रेम, समानता और मिलजुल कर रहने में है और साथ ही खुशियां बांटने में भी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: Namaskar Mukesh, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very, very fresh episode of Aaj Savere. And well, it's a holiday today, Mukesh, so most of the people are probably sitting back with a very relaxed mood in their home, sipping a cup of coffee or tea and listening to our show. Har roz jo hai bichare sab log jo hai daud daud ki hai, ho sakta hai car mein, bus mein, kisi tarah sunte honge radio, lekin aaj sukoon se ghar pe sun sakte hain because the country is celebrating Eid Miladun Nabi also, and of course today is the final day of Onam festivities, so a very happy Onam to all our listeners as well. So first let's start with the headlines, Mukesh.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi, Mr. Shah said that Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047, and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. The Home Minister said the government has eliminated the formidable challenges across these three internal security hotspots.

0: And the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. Mr. Shah said that three new criminal justice laws will be implemented 100% within the next year, aiming to ensure the resolution of criminal cases up to the Supreme Court level within 3 years and to boost the conviction rate by 25%.
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया गया। इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले वर्ष अगस्त में तियानजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और तीन निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ने का भी स्वागत किया। श्री अजीत डोभाल ने चीन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट की।
0: Canada has imposed counter tariffs of up to 50% on $27.6 billion worth of U.S. goods after suspending trade negotiations with Washington. Canada said U.S. had demanded too much while offering too little. The counter tariffs will take effect on the 8th of next month and cover steel, dairy products, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, electronics and other goods. Ottawa also unveiled a $7.5 billion support package for workers and businesses affected by the escalating trade dispute. The action follows a U.S. decision to impose a 50% tariff on $27.6 billion of Canadian goods from the 22nd of this month. Canada said it would match those duties dollar for dollar, rate for rate.
1: गोवा मुक्ति संग्राम के शहीदों को समर्पित पत्रा देवी स्मारक का आज लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गोवा महाराष्ट्र सीमा पर स्थित पत्रा देवी का गोवा की आजादी की लड़ाई में विशेष महत्व रहा है।
2: 15 अगस्त 1955 को पुर्तगाली शासन के खिलाफ देश भर से हजारों सत्याग्रही गोवा पहुंचे थे। सत्याग्रहियों का पहला जत्था तिरंगा लेकर पत्रा देवी के रास्ते गोवा में दाखिल हुआ। पत्रा देवी में पुर्तगाली सैनिकों ने सत्याग्रहियों पर मशीन गनों से गोलीबारी की, जिसमें 31 सत्याग्रही शहीद हुए। वहीं गोवा मुक्ति के लिए चले पूरे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अलग अलग स्थानों पर कुल करीब 74 सत्याग्रहियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि पत्रा देवी में बनाया गया यह स्मारक गोवा मुक्ति संग्राम के वीरों के साहस और बलिदान को हमेशा याद दिलाता रहेगा। यह स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ लोगों को गोवा की आजादी की लड़ाई का इतिहास समझने में मदद करेगा। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी उन वीरों के बलिदान और साहस के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आज सवेरे के लिए मैं निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, वर्जी।
1: देश भर में आज ओणम का त्यौहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि नौका दौड़, लोक नृत्य, संगीत और खेल इस त्यौहार से जुड़ी महत्वपूर्ण परंपराएं हैं जो केरल की संस्कृति और मूल्यों को दर्शाती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार सभी के लिए सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा तथा नागरिकों को राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा।
0: And Eid al-Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Muhammad, is being celebrated with religious fervor in various parts of the country today. Milad Mehfils and Seerat conferences will be held, highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Milad processions are also being taken out to mark the occasion. Elaborate security arrangements have been made for the occasion.
1: और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सायरा सबसे पहले आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार है आपके पास।
0: Well, Mukesh, the Tamil Nadu government will provide sports jerseys to 23 lakh students in government and government-aided schools from classes 9 to 12. State School Education Minister Raj Mohan said that the government will also develop 50 government high and higher secondary schools as sports plus schools for nurturing young sporting talent. The government is also set to launch AI-powered, personalized and adaptive learning across 500 government

0: government middle schools for students studying from classes 6 to 8. And another news coming in from Sherry Chennai. The Director General of Indian Coast Guard, Paramesh Shivamani, paid a courtesy call on Chief Minister of Tamil Nadu, C. Joseph Vijay, yesterday. The deliberations range from coastal security, maritime safety, welfare and protection of fishermen, search and rescue operations, deterrence of illicit maritime activities, marine environmental conservation, and welfare of Indian Coast Guard veterans. He apprised the Chief Minister of successful search and rescue interventions that safeguard numerous lives, including Tamil Nadu fishermen.
1: और अब रुख करते हैं मुंबई के समाचारों का. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई के वर्ली में प्रो गोविंदा लीग के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया. ये लीग 25 से 27 अगस्त तक चलेगी. इसमें 16 टीम खिताब और 1,89,00,000 रुपए के पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. प्रो गोविंदा लीग मानव पिरामिड निर्माण के पारंपरिक खेल को समर्पित है. मुंबई की सातों झीलों में 95% से अधिक पानी पहुंच चुका है. इसके बावजूद बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने शहर में पानी की 10% आपूर्ति में कटौती जारी रखने का निर्णय लिया है. बीएमसी ने यह निर्णय भविष्य में संभावित कमी से बचने और पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए लिया है. और महाराष्ट्र के जनजातीय विकास मंत्री अशोक उइके ने कहा कि राज्य के जनजातीय विकास विभाग के छात्रावासों में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी गई है. ये निर्णय राज्य के आदिवासी विधायकों और सांसदों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया. इससे पहले 30 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध था. और अभिनेता बोमन ईरानी ने छात्रों से अपने सच्चे जुनून को पहचानने और समर्पण के साथ अपने सपनों को साकार करने का आग्रह किया है. मुंबई विश्वविद्यालय के 58वें सांस्कृतिक युवा महोत्सव के प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के अभिनंदन समारोह के उद्घाटन पर श्री ईरानी ने छात्रों को अपनी खूबियों और कमियों दोनों को स्वीकार करने, खुद पर विश्वास करने और ईमानदारी से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया.
0: Moving on to Bengaluru, the FIDE-rated Rapid Chess Tournament will be held tomorrow as a run-up to the Global Chess League Season 4, scheduled from 5th September to 13th in Bengaluru. Around 1,000 chess enthusiasts across age groups and skill levels will come together for this tournament tomorrow. The tournament will offer the participants an opportunity to compete in a professionally organized FIDE-rated Rapid Chess format and also win a 4 lakh cash prize pool. The participants will also receive passes to the Tech Mahindra Global Chess League Season 4. Some of the biggest names in global chess, including defending champion Magnus Carlsen, Vishwanathan Anand, Arjun Erigaisi, Ian Napomniachtchi and Nihal Sarin will also be there.
1: और अब रुख करते हैं कोलकाता महानगर का. पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कल कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को कई दिशा निर्देश दिए हैं. पर्यटन विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों के आधुनिकीकरण, रोपवे सेवाओं की शुरुआत, नदी पर्यटन को बढ़ावा देने, विभिन्न सहयोगी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने, कर्मचारियों की भर्ती करने और विभाग की स्वयं की पहलों के माध्यम से पर्यटन स्थलों के विकास के साथ साथ विवाह और पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे पर्यटन विभाग के नए प्रतीक चिन्ह के अनावरण समारोह में भी शामिल होंगे.
0: Moving on to Hyderabad, Telangana's Revenue, Housing and Information Minister P. Srinivas Reddy announced fast progress in building Indiramma Towers within GHMC limits, a housing project for the urban poor launched by Chief Minister A. Revanth Reddy. The tender process for the first phase has been completed in 16 constituencies, with the project estimated at ₹807.4 crore, out of 60,720 applications received between 20th of June and 15th of August. Officials found 40,900 applicants eligible after detailed field verification, while 19,820 were declared ineligible. A transparent lucky draw will be held from 28th of August to 31st in different locations in the presence of eligible applicants to select the final beneficiaries. Unsuccessful applicants will get their 10,000 EMD refunded immediately. The government has also selected sites in four new constituencies, that is LB Nagar, Goa Dosha Mahal, Murshidabad and Chandrayaan Gutta to build 1,920 more homes with applications open until 3rd of September. Each beneficiary will get a 525 square feet flat with free registration of undivided land share worth 60 lakh rupees to over 1 crore rupees depending on the location. The state is giving a 5 lakh rupees subsidy per house, leaving beneficiaries

0: to pay only 6 lakh rupees in 4 installments, helping poor families finally own homes instead of living on rent.
1: और अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों की। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र के कार्यों को मंजूरी दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे 36 लाख से अधिक दिल्ली वासियों को बेहतर जल आपूर्ति मिलेगी और इसके साथ ही अनाधिकृत पानी कनेक्शनों को नियमित करने की योजना भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों और वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉक्टर सिंह ने राजधानी में बीमारियों की स्थिति, जांच और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा के साथ। और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जाने का, तो सायरा सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं।
0: बिल्कुल,
1: तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा हुई और आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में भी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: एंड वेल मुकेश, अब जाहिर सी बात है मानसून आए हुए हैं तो बारिश तो पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं हो ही रही है।
1: होनी भी चाहिए
0: होनी भी चाहिए। इनफैक्ट दिल्ली में तो बहुत दिनों बाद कल पानी बरसा और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि अब इतनी गर्मी हो रही, लगी नहीं रहा है कि बरसात का मौसम है। बट डाउन साउथ थिंग्स आर बेटर। चेन्नई विल हैव अ क्लाउडी स्काई एंड सम लाइट रेन इज एक्सपेक्टेड देयर। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 26 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल experience again some light rain and the cloud sky will remain generally cloudy throughout the day. Minimum temperature was 20 degrees Celsius while maximum may reach 28 degrees Celsius. Hyderabad will see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to hover between 24 and 28 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 26 अगस्त है, आज ही के दिन सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी सारा?
0: Well, on this day in 1789, a momentous milestone was reached in the French Revolution as the National Constituent Assembly sanctioned the Declaration of the Rights of Man and the Citizen on this day. This foundational document enshrined principles of liberty, equality and fraternity, significantly shaping modern discourse on politics and human rights.
1: और अगर 1914 की बात करें तो आज ही के दिन बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला किया और 50 माउजर तथा 46,000 राउंड गोलियां लूट ली थी।
0: That's right. Also on this day, 1920, the 19th Amendment became part of the Constitution of the United States, giving women the right to vote. In 1927, the second radio center was started in Calcutta. Also on this day in 1955, Satyajit Ray's landmark film Pathar Panchali, the first of the Apu trilogy, was released on this day. And on this day in 1957, the Soviet Union announced that it had successfully tested an intercontinental ballistic missile.
1: और 1977 की बात करें तो आज ही के दिन जर्मनी के म्यूनिक शहर में 20वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और 1982 में आज ही के दिन नासा ने टेलीसेट एफ का प्रक्षेपण किया था, जबकि 1999 में आज ही के दिन माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

0: On this day in 2002, the Earth Summit on Sustainable Development brought together about 60,000 people in Johannesburg, South Africa, to address global environmental and poverty challenges.
1: और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार ए के हंगल को. आज उनकी पुण्यतिथि है और ए के हंगल का पूरा नाम था अवतार किशन हंगल. वर्ष 1967 में हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहे हंगल ने लगभग 225 फिल्मों में काम किया. उन्हें फिल्म परिचय और शोले में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. तो क्यों ना सायरा सबसे पहले शोले फिल्म का जो डायलॉग है वो अपने श्रोताओं को सुनवाएं.
2: इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
3: इमाम साहब.
2: कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ?
3: आप आ पाइए मेरे साथ.
2: क्या हुआ? क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ लिए जा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.
0: That's right. And अभी भी हम लोग जब कहीं जाते हैं जहाँ बहुत खामोशी होती है, हम लोग उसी स्टाइल में पूछते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई. So some dialogues and some characters, they become, you can say, immortal. And his most notable roles, of course, are Ram Shastri in Aina, as Inder Sen in Shaukeen. And ये फिल्म बहुत ही दिलचस्प फिल्म है. अगर आज की जनरेशन ने नहीं देखी तो आई थिंक दे शुड सी. एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट टू सी द गोवा ऑफ दोज डेज. इतना खाली खाली और इतनी चौड़ी, मतलब यू वोंट बिलीव दैट दिस इज एक्चुअली गोवा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. एंड एज बिपिन लाल पांडे इन नमक हराम, एज ऑफ कोर्स इमाम साहब इन शोले, एज अनोखे लाल इन मंजिल, एंड द एंटागनिस्ट इन प्रेम बंधन, एंड द 16 फिल्म्स दैट ही डिड विद ऑफ कोर्स राजेश खन्ना. ही एक्टेड इन अराउंड 225 हिंदी फिल्म्स इन अ करियर दैट स्पैंड फ्रॉम 1966 टू 2005.
1: और अपने श्रोताओं को बताएं कि ए के हंगल का भारत की आजादी की लड़ाई में भी योगदान रहा है. 1930 से 1947 के बीच वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और दो बार जेल गए. हंगल 3 साल पाकिस्तान की जेल में रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पेशावर में काबुली गेट के पास एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें हंगल साहब भी उपस्थित थे. अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, लेकिन चंदर सिंह गढ़वाली के नेतृत्व वाले उस गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया. ये एक विद्रोह था. चंदर सिंह गढ़वाली को जेल में जाना पड़ा और हंगल साहब को उस घटना से काफी दुख हुआ था क्योंकि चंदर सिंह गढ़वाली को भारत रत्न नहीं मिला था और भारत माँ का ये वीर सपूत 1981 में गुमनाम मौत में मरा था और पेशावर में हुआ नरसंहार उसी काबुली गेट वाली घटना के बाद हुआ था. और जहां तक फिल्मों के सफर की बात करें तो ए के हंगल ने 50 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया था. उन्होंने 1966 में बासु चटर्जी की फिल्म तीसरी कसम और शागिर्द में काम किया. इसके बाद उन्होंने सिद्धांतवादी भूमिकाएं निभाई. 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने प्रमुख फिल्मों में पिता या अंकल की भूमिका निभाई.
0: That's right, मुकेश. In fact, ये सफर लेकिन शुरू हुआ था उनका पेशावर से फ्रॉम द ईयर 1936 when he joined श्री संगीत प्रिय मंडल which was a theatre group in पेशावर. And then he continued to act in many plays and until even in Undivided India till 1946. But following his father's retirement, the family moved from पेशावर to Karachi and then he was jailed in Karachi, जो आपने बताया, for 2 years from 1947 to 1949. And after his release, he moved to India and settled in Mumbai. Once in Mumbai, he was involved with the theatre group IPTA along with Balraj Sahni and Kaifi Azmi. And of course, उसके बाद तो आपने कई फिल्मों के नाम हम लोगों ने बताए ही हैं.
1: और अगर पुरस्कारों की बात करें तो वर्ष 2006 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था. और अब हम याद करते हैं नाट्याचार्य खाडिलकर कृष्णजी प्रभाकर को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उनका जन्म सांगली में हुआ था. विद्यार्थी अवस्था में ही इनकी नाट्य प्रतिभा चमक उठी थी. ये बहुमुखी प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे जो परीक्षा में, खेल में और वक्तित्व में की स्पर्धा में सदा चमकते थे. हाई स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी नाटकों का गहन अध्ययन किया. वकील होने पर स्वदेश सेवा करने की उनकी जो भावना थी वो लोकमान्य तिलक के सहयोगी बने और इनके स्वभाव में लालित्य और गंभीर का अलौकिक मेल था. लोक जागरण के उदात्त उद्देश्य से ये नाट्य सर्जना करने लगे. इन्होंने शेक्सपियर की नाट्य शैली को अपनाकर लगभग 15 कलापूर्ण और प्रभावशाली नाटकों की सफल रचना की. उन्होंने कलापूर्ण गद्य नाटक के समान ही संगीत नाटक भी लिखे और गद्य नाटकों को संगीत नाटक जैसा कलापूर्ण बनाया.
0: And Mukesh, we remember some personalities in this section, or her personality.

0: कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना एक मकाम हासिल किया होता है. किसी ने किसी को थिएटर करके जो है सुकून मिलता है, किसी को गाना गा के सुकून मिलता है, वो नाम कमाता है. लेकिन दुनिया में चंद लोग ऐसे होते हैं हु एक्चुअली डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट बाय सर्विंग अदर्स. एक वो जो सेवा भाव होता है, चाहे वो बीमारों की सेवा कीजिए, चाहे ड्राउन ट्रॉटन की. एंड ऑफकोर्स टूडे वी आर रिमेम्बरिंग वन सच पर्सनैलिटी. टूडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा. शी वॉज गिवन द सेंटहुड ऑल्सो, सो मेनी ऑफकोर्स वी कॉल हर Saint Mother Teresa of Calcutta as well. She was an Albanian Indian Catholic nun, founder of the Missionaries of Charity and a Catholic saint. And on 4th September 2016, she was canonized by the Catholic Church as Saint Teresa of Calcutta. And the anniversary of her death, which falls on 5th September, is now observed as her feast day. So we are remembering Mother Teresa because over the decades, she actually served a lot of people. Those dying from HIV, AIDS, leprosy, TB, मतलब वो लोग जिनको समाज जो है पास में उनके जाना नहीं पसंद करता
1: जी, कि वो सेवा किया करती थी
0: जी उनके करीब
1: लगन के साथ.
0: Yes, और सिर्फ सेवा ही नहीं, when you actually embrace the person, उनको कितने सारे ऐसे वो गले लगाती थी, उनको तसल्ली देती थी, a kind of emotional bonding that she had with all those people. So here we are remembering her. And today we are also remembering Bimal Kaur today on his death anniversary, a writer and novelist who wrote predominantly in Bengali. He received the 1975 Sahitya Akademi Award presented by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters, for his novel A Samay. And Bimal Kaur had lived in various places in and around Bihar like Jabalpur, Hazaribagh, Gomo and Dhanbad. He passed away on this day in 2003.
1: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध विधिवेत्ता, शिक्षा प्रेमी, रचनाकार और बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उनकी गणना देश के उच्च कोटि के अधिवक्ताओं में की जाती थी. वे अवध वीकली नोट्स और बांग्ला मासिक उत्तरा के संपादक रहे थे और उनके रचित राष्ट्रप्रेम और भक्तिपरक गीतों को बांग्ला संगीत के क्षेत्र में बड़ा ही सम्मान मिला था. और इसके बाद हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी नारायण सुब्बाराव हार्डिकर को. उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में प्रसिद्ध हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना की. बंगाल विभाजन के विरोध में नारायण सुब्बाराव ने आर्य बाल सभा का गठन किया था. आजादी के बाद वर्ष 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और देश की प्रति निष्ठा और सेवा भावना को देखते हुए भारत सरकार ने नारायण सुब्बाराव को पद्म भूषण से सम्मानित किया था. इसके अलावा आज पुण्यतिथि है रामायण की कथा को खड़ी बोली पद्य के द्वारा कई खंडों में लिपिबद्ध करने वाले राधे श्याम कथावाचक की. ये रचना हिंदी क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गांवों में पिछले अनेक दशकों में अत्यंत लोकप्रिय रही है. राधे श्याम रामायण में वर्णित नैतिक मूल्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी.
0: Today is also the birthday of Madhur Bhandarkar. We all know that he's a director, screenwriter, producer. In 2016, Bhandarkar was honored with the Padma Shri by the Government of India. He's known for directing critically acclaimed crime drama films like Chandni Bar that won him the National Film Award for Best Film on Social Issues. And of course, films like Page 3, Traffic Signal and Fashion, again winning the National Film Award for Best Feature Film for the first time and the National Film Award for Best Direction for the second, while earning Filmfare Award nominations for Best Director and Best Screenplay as well. And he of course hum log ke paas agar hum log ne Fashion aur Page 3 jaisi filmon ka zikr kiya hai, to we have some songs from those films. Let's listen to it.

0: तरफ से 21 दिवसीय उत्तराखंड लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से द थिएटर में राजा फाउंडेशन की ओर से संगीतमय संध्या का आयोजन हो रहा है और इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही शाम 7 बजे से द स्टीन ऑडिटोरियम में नेशनल डांस और म्यूजिक फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली के कमानिया ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से श्रीराम भारती कला केंद्र की ओर से भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित बैले कृष्ण की प्रस्तुति भी की जाएगी। तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सायरा मुस्तफा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी FM गोल्ड। और अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: That's right. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning, listeners. Have a great day ahead and have a very happy Eid and happy Onam. Namaskar.
0: Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों

0: के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता।

0: कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट पेपर पर भी लागू होंगे, जिनमें से कुछ चीजों पर 50% तक ड्यूटी लगाई गई है। कनाडा के ये नए टैरिफ 8 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगे, जबकि अमरीकी टैरिफ हफ्ते के रोज से ही लागू हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या धमाके से तबाह कर दिया है। आबनाए हुर्मुज एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है, जिसे मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने बड़ी हद तक बंद कर रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान को खबरदार कर दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या कश्ती नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे फौरी तौर पर और मुनज्जम अंदाज में तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की जानिब से अभी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। आबनाए हुर्मुज को बंद करने के बायस आलमी बाजारों में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया है। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि इस इलाके पर अमरीका का कंट्रोल है, ताहम ईरान ने उन बहरी जहाजों पर फायरिंग भी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि जहाजों ने उसकी इजाजत के बगैर आबनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश की थी। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया गया है, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर मीलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन दुनिया भर में इत्तेहाद और खुशी को फरोग देगा। वजीर आजम ने तमन्ना की कि रहमदिली, मेहरबानी और मुआशरे की भलाई का जज्बा हमेशा हम वतनों की रहनुमाई करता रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि यह रंगारंग फेस्टिवल दुनिया भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि यह फेस्टिवल खुशी, इत्तेहाद और खुशहाली के जज्बे को मजीद फरोग दे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज पर्नम में पितरा देवी मार्टियस मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। ये यादगार गोवा की आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए एक खराज तहसीन है और इसका मकसद आज़ादी की तहरीक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को महफूज बनाना है। पेश एक रिपोर्ट।
1: वजीर आला डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि ये यादगार उन 31 सत्याग्रह करने वाले लोगों को खराज अकीदत है, जिन्हें 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने के मुतालबे के साथ दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुर्तगाली फौजियों ने शहीद कर दिया था। इस यादगार को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि हाजरीन गोवा की सत्याग्रह तहरीक की तारीख को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझ सकें। तवक्को है कि यह यादगारी मकाम मालूमात और मकामी फख्र का एक ऐसा मरकज बनेगा जो नई नस्ल को गोवा की तारीख से जोड़ने में मदद करेगा। पनाजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: दिल्ली सरकार ने कहा है कि कौमी राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई किल्लत नहीं है। दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में प्याज और चीनी की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। हुकूमत ने कहा है कि अगर कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो मरकजी हुकूमत के इदारे नैफेड से प्याज और चीनी खरीद कर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम के लिए दस्तियाब कराएगी। हुकूमत ने यह भी यकीन दिलाया कि ये अशिया उसी कीमत पर फरोख्त की जाएंगी जिस कीमत पर उन्हें नैफेड से खरीदा जाएगा, जबकि नकलो हमल और दिगर मुतालिका अखराजात दिल्ली सरकार बर्दाश्त करेगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से शिकस्त देकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा क्लासिकल मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी को आखिरी दिन 6 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी, जिस दिन कम दौरानिये के मैच खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में प्रगनंदा का मुकाबला अमरीका के फैबियानो कारवाना से होगा, जो इस इवेंट के दिफाई चैंपियन हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के दौरे चीन से मुतालिक खबरों को अपनी शेष सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, चीन के नायब सदर हान से मिले डोभाल, दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर की बातचीत। दिफाई खुदनसारी की जानिब भारत का बड़ा कदम, रिवायती मिजाइल निजाम की टेक्नोलॉजी भारतीय सनअतों को मुंतकिल करने की मंजूरी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है 8:46 और 4 सेकंड और आज इस सुरीली सफर पर मैं हूं आपके साथ बबीता। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की उम्मीद।

0: नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है और किस छत को भिगोना है। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। और आइए अब सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शॉपनिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग अहेड। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। हो चुका है शो का आगाज, नाम है जिसका म्यूजिकल दिल लगी और जहां लगेगी एक से बढ़कर एक खूबसूरत गानों की झड़ी। साथ में करेंगे ढेर सारी बातें भी जो होंगी आज के दिन से जुड़ी।

तो आई एम श्योर कि नींद से जाग गए होंगे आप और खिड़की के पर्दों को हटाकर आपने देख ही लिया होगा कि क्या कमाल की सुबह हुई है आज। तारीख है आज 26 अगस्त, जो क्यों है खास सिलसिलेवार तरीके से करेंगे बात, क्योंकि भाई आज का दिन कोई आम दिन तो बिल्कुल नहीं है। मौसम है सुहाना और हवाओं में है सेलिब्रेशन वाली महक, तो उठाइए अपनी चाय या कॉफी का कप मेरे साथ और एंजॉय कीजिए ये अगला ट्रैक।

और भाई कसम से मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करते हुए। और क्यों है आज का दिन गजब का, इस सवाल के तो कई सारे जवाब हैं मेरे पास, जिनमें से एक ये कि आज यानी 26 अगस्त को ही साल 1910 में जन्म हुआ था मानवता की प्रतिमूर्ति मानी जाने वाली मदर टेरेसा जी का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, अनाथों और बीमारों की सेवा में समर्पित कर दिया था। एग्नेस गोंझा बोया जीजू उनका पूरा और असली नाम था, और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्होंने मानव सेवा और धार्मिक जीवन को अपनाने का फैसला कर लिया था। 18 साल जब उनकी उम्र हुई तब सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में वो शामिल हुई, और फिर साल 1929 में भारत के कोलकाता में उनका आना हुआ, जो कि तब कलकत्ता हुआ करता था। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाचार और बीमार लोगों की मदद के लिए उन्होंने साल 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की, और कई आश्रय घर, अनाथालय, एम्बुलेंस सेवाएं और स्कूल उन्होंने खोले। साल 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार, और फिर अगले ही साल 1980 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। मदर टेरेसा का कहना था कि शांति की शुरुआत एक मुस्कान से होती है, तो आज घर से निकलते हुए याद रखनी है उनकी ये बात और एक प्यारी सी स्माइल के साथ घर से निकलना है। कौन जाने आपकी ये एक स्माइल किसी का पूरा दिन बना दे।

तो बन जाइए सिकंदर अपने मुकद्दर के और हंसते मुस्कुराते मेरे साथ यानी नाज के साथ यूं ही सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी। और अभी जानिए एक नहीं बल्कि दो और वजहें आज के दिन को सेलिब्रेट करने की। दक्षिण भारत में जहां नजर आ रही है थिरु ओणम की धूम, तो दूसरी तरफ मिलाद उन नबी की बरकत भी आज के दिन बरस रही है। पहले बात ओणम के त्योहार की, जिसके तहत आज केरल के हर घर में राजा महाबली का स्वागत हो रहा है। घरों के आंगन फूलों की रंगोली यानी पूक्लम से सजे हैं और केले के पत्तों पर शानदार साध्या यानी प्रसाद परोसा जा रहा है। मिलाद उन नबी क्यों है खास, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन इस अगले ट्रैक को सुनने के बाद।

मिलाद उन नबी, जिसे ईद मिलाद भी कहा जाता है और जो कि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और प्रमुख त्योहारों में से एक है, आज यानी 26 अगस्त को ही पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन का ये उत्सव है। माना जाता है कि आज ही के दिन 570 ईस्वी में अरब के पवित्र शहर मक्का में उनका जन्म हुआ था।

तो खुदा की बख्शीश यानी अल्लाह के रहमो करम या भगवान की कृपा से जो कुछ भी हमें मिला है, जितना भी मिला है, उसका शुक्राना जरूर अदा कीजिए। क्योंकि देखिए, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो मिल जाए वो बढ़िया, और जो ना मिले वो और भी बढ़िया। बिकॉज गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन आर ड्रीम्स। मानते हैं ना? तो मानिए मेरी एक और बात, रखिए खुद पर और उस ऊपर वाले पर भरोसा। साथ में सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी विद मी यानी

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

म्यूजिकल दिल्लगी सुन रहे हैं आप, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ। और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:44:20। और देखिए, वक्त चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, एक चीज है जिसके बिना कुछ मुमकिन नहीं है, ना हमारी सेहत, ना हमारे त्योहार और ना ही ये कायनात। और क्या है वो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पानी की, जिसकी कमी लगातार बढ़ती जा रही है और ये वाकई फिक्र का मसला है। पानी की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है और जरूरत है भारत सरकार की जल शक्ति योजना से जुड़ने की भी। योजना का मकसद सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना भी है। तरीके बहुत सारे हैं जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ भी हैं।

ब्रश करते वक्त नल को बंद रखना या गाड़ी धोने के लिए पाइप की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करना, ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ ही कैच द रेन यानी बारिश की बूंदें जहां गिरें जब गिरें उन्हें बचाकर सहेजा जा सकता है और पानी की बढ़ती कमी को कम करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। फिलहाल सुन सकते हैं आप मेरे साथ ये अगला ट्रैक, जिसके उस पार अभी बातें और भी हैं जो मुझे आपसे करनी हैं।

आज की तारीख यानी 26 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन साल 1914 में बंगाल के साहसी क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए कोलकाता, जो उस वक्त कलकत्ता हुआ करता था, यहीं के बंदरगाह पर रोडा कंपनी के हथियारों के बेड़े पर धावा बोल दिया था। क्रांतिकारियों ने यहां से भारी तादाद में पिस्तौलें और 46,000 के करीब कारतूस लूट लिए थे, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर आजादी की लड़ाई में हुआ। इसके साथ ही विश्व स्तर पर देखें तो भी कैलेंडर में आज की तारीख बहुत मायने रखती है। क्यों जानेंगे मगर इस अगले गाने को सुनने के बाद।

अब देखिए जनाब, मुश्किल चाहे बड़ी हो या छोटी, हल तो उसका ढूंढने से ही मिलेगा ना। और ऐसी ही एक बड़ी मुश्किल हल हुई थी आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में, जब साल 1920 में आज ही के दिन वहां के संविधान का 19वां संशोधन प्रभावी हुआ था। इस संशोधन ने वहां की महिलाओं को वोट देने का कानूनी अधिकार दिया और इसीलिए आज के दिन को वैश्विक स्तर पर महिला समानता दिवस यानी विमेन्स इक्वालिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस चलिएगा तो जानिएगा कि वहां की क्रांति के दौरान भी आज का दिन बड़ा खास रहा, क्योंकि साल 1789 में आज ही के दिन वहां की नेशनल असेंबली ने घोषणा की थी मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की। खास बात यह है कि इसी दस्तावेज को आधुनिक दुनिया में समानता और मानवाधिकारों की बुनियाद माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, म्यूजिकल दिल लगी की आज की समय सीमा यहीं पर होती है समाप्त। लेकिन हमारा साथ अभी और भी है। मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 पर, दिल का मेलबॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर। उससे पहले देश और दुनिया का हाल जानिएगा हिंदी और अंग्रेजी में, और उससे भी पहले यानी अभी सुनिए ये एक और जबरदस्त ट्रैक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव कल से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह 6ठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मुलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन्नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञान आनंद ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 4थे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेल रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चार दिन के कनाडा दौरे पर टोरंटो पहुंची। कनाडा की लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिका के सामानों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को लागू करने पर विचार किया। इसके साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य कर्मियों के आदान प्रदान और रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के विकल्पों पर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप सचिव रिचर्ड शिम्ट ने वार्ता की सह अध्यक्षता की। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार के प्रभारी राज्य मंत्री उमर हिजरा ने 7वीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चार दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत के महान वाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इस वार्ता में दोनों देश आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, निवेश और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अमरीका के लिए रवाना होंगे, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे।
2: अमेरिकी सामानों में स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान शामिल हैं। अमेरिका ने 22 अगस्त से इतनी ही कीमत के कनाडाई सामान पर 50% तक शुल्क लगाया।

0: तथा कनाडा ने कहा कि वह अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के बराबर ही जवाबी शुल्क लगाएगा। कनाडा ने व्यापार विवाद से प्रभावित कामगारों और कारोबारियों के लिए 7 अरब 50 करोड़ डॉलर के सहायता पैकेज की भी घोषणा की है। कनाडा के अनुसार अमेरिका की ओर से रखी गई नई व्यापार शर्तें उसके राष्ट्रीय हित में नहीं थी। इसी वजह से कनाडा ने अमेरिका के साथ जारी गहन व्यापार वार्ता को निलंबित कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अमेरिका के सीनेटर रिक स्कॉट ने चीन में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए अमरीकी संघीय स्वास्थ्य सेवा निधि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इंटरनेट से जुड़े उपकरण रोगियों की संवेदनशील जानकारी और अस्पताल प्रणालियों के लिए साइबर खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। श्री स्कॉट ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस को मेडिकेयर, मेडिकेटेड या अन्य संघीय निधि प्राप्त करने वाले अस्पतालों और क्लिनिक्स को चीनी कंपनियों में निर्मित उपकरण की खरीद करने से रोक देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वहीं ईरान से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल चीन ने अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध किया है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: मशहूर अमेरिकी कंट्री सिंगर और गीतकार डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। अपनी खास आवाज, बेहतरीन गीतों और अलग अंदाज के लिए वे दुनिया भर में मशहूर थी। उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे जिसमें जोलिन कोट ऑफ मेनी कलर्स जैसे क्लासिक गाने शामिल हैं जिनकी दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज अलग अलग स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को याद करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद ए मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ये अवसर दुनिया भर में एकता और खुशी को बढ़ावा देगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। उन्होंने रैपिड के दोनों मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई और ब्लिट्ज के पहले मुकाबले में भी जीत दर्ज की। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में हुए भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के 14वें चरण में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल ने 46.16 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने ओलंपियन मोहम्मद अजमल को पीछे छोड़ा जो 47.03 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की हैमर थ्रो में तान्या चौधरी ने 61.28 मीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनुष्का यादव 61.03 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रही। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में कविता वी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन के कनाडा दौरे पर टोरंटो पहुंची। कनाडा की लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिका के सामानों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमरीका की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया। और ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यहाँ स्याही से नहीं रूह से लिखे जाते हैं खत, दिल के मेलबॉक्स में छुपे होते हैं अनकहे से मत। थाम लीजिए अपना रेडियो और अपना दिल भी, कर लीजिए खुद को तैयार। आज फिर किसी अपने ने भेजा है अपना ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यानी नाज के साथ। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जहां आपका ढेर सारा प्यार प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही हम तक पहुंचना शुरू हो चुका है। और आपके सभी ईमेल्स और मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस मैं करूं प्रोग्राम में शामिल और हम करें आपकी फरमाइशें पूरी, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 9868687 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और ईमेल अगर आप करना चाहते हैं तो fmgoldair@gmail.com है हमारा पता, जिस पर आप लिख भेजिए जल्दी से अपना ईमेल, अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, साथ ही कोई अच्छी सी बात, कोई शेर, कोई शायरी, कुछ भी जो भी दिल में आ रहा है ना इस वक्त, जो आप कहना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, लिख डालिए जल्दी से। और चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़े, उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, रफी साहब ने जिस एनर्जी के साथ ये गाना गाया है ना, सच में कमाल ही है। थैंक यू सो मच सुखविंदर सिंह जोड़ा जी इस गाने की फरमाइश भेजने के लिए। सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबरॉय इनके साथ शामिल हैं, और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जी ने भेजा है ये ईमेल।

देखिए जी, पूर्ण विश्वास है हमें कि आप हमारे अनुरोध को जरूर पूरा करेंगे और आपका जीवन सुखद हो, शुभ हो, ये शुभकामनाएं हमें भेजी हैं। सुदर्शन मुखी जी ने, अनीता मुखी, सिमरन मुखी इनके साथ शामिल है। शांति नगर सोनीपत से आया है ये मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं भवरपुर बसना से, जो कि आया है चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन, नेहा, राजू, जगदीश देवांगन ने भेजा है ये मैसेज और चाहते हैं कि राखी का कोई गीत मैं इन्हें सुनाऊं। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं टीडी मल्होत्रा साहब का। ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप भी इसमें शामिल हैं। शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज शामिल हैं कालका से। और इससे पहले जो नाम मैंने लिए वो हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और अगला मैसेज आया है सीधा चंडीगढ़ से, लिखा है कि चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं। गौर फरमाइएगा, बड़ी अच्छी बात है। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारों, चलो जमीन पे ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भरा ये मैसेज हमें भेजा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी ने जाखोद राजस्थान से। पूजा खटक, बिमला देवी और शंभू दयाल खटक भी इस मैसेज में शामिल हैं। अगला मैसेज जो कि मुझे नजर आ रहा है हुसैन और मोहम्मद कैफ जी का, और कहां से लिखा है, सिवान बिहार से लिखा है इन्होंने मैसेज, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। अगला मैसेज मुझे नजर आ रहा है जॉन डिकेस्ट्रो साहब का। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो भी इसमें शामिल हैं। जनकपुरी सहारनपुर से आया है मैसेज और चाहते हैं कि किसी भी गीत में इन्हें शामिल कर लिया जाए। और जी मान लीजिए आप हर गीत में शामिल हैं हमारे साथ, किसी गीत में क्यों। तो अगला मैसेज नवाब अहमद भारती जी का मैंने खोल लिया है। बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय ठिंगिया, सलीम अख्तर, दिल्ली से भेजा है ये मैसेज और लिख रहे हैं कि हमारी पसंद का भी कोई गीत कभी चला दिया कीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। और अपना फेवरेट सॉन्ग इन्होंने लिखकर भेजा है जिसे हम प्ले करने की जरूर जरूर कोशिश करेंगे। एक और मैसेज शामिल करते हैं अगला गाना सुनने से पहले। तो लिखा है कि बारिश का जो मौसम होता है ना, मोहब्बत का मौसम होता है, अपनों का मौसम होता है और अपनों को याद करने का मौसम होता है। जहां पर मोहब्बत परवान चढ़ती है उनके लिए ऐसे पल एक जन्नत का जिक्र करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे और खूबसूरत बनाते हुए झूमते हुए मौसम में एक झूमता हुआ गीत सुनना चाहते हैं। नाम है इनका अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन।

रजक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश भी शामिल हैं इस मैसेज में। शिवानी चौक कटनी मध्य प्रदेश से आया है ये मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज है, थैंक यू सो मच। और चलिए अगला गाना सुनते हैं जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है सीधा सतना एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर ने भेजी है ये फरमाइश। चलिए सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ऐ काश कि मेरी राहों में बीते वो जमाने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ, मेरे दोस्त पुराने आ जाएं, जो छोड़ चले तन्हा मुझको, मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, किसी रोज वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाए। वो महफिलें अब भी याद है मुझे, जहां हंसते रोते सजते थे, जो रूठ गए बेबात कभी, वो शिकवा ही जताने आ जाए। विदित गोयल रोहिणी दिल्ली से लिखा है ये मैसेज।

और सत प्रकाश सनोठिया भी इनके साथ शामिल हैं और बड़ी ही गहरी बात लिखकर भेज दी भाई। मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है इस मैसेज से, जनाब दोस्तों को मिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ और सुना रहे हैं आपको बड़े ही खूबसूरत गाने आप ही की फरमाइश के। तो बने रहिए और कोशिश कीजिए उन दोस्तों से दोबारा जुड़ने की जिन्हें आप मिस कर रहे हैं या जिनके साथ थोड़ा सा गैप आ गया है। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं। कलानौर से आया है ये मैसेज। नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक ने लिखा है कि अच्छाई और सच्चाई दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है ना तो कहीं नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी के साथ अगला मैसेज जो कि मैं शामिल करने जा रही हूं, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आया है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु का ये मैसेज है। लिख रहे हैं कि सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार भी है, आने वाला है, भाई बहन की मीठी सी तकरार है और ऐसा ही प्यार और खुशियों का ये त्योहार है। और रक्षाबंधन का ही कोई गीत ये सुनना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ अगला मैसेज भी हम शामिल कर लेते हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से जो कि आया है, लिखा है कि मैडम जी हम भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, अभी तक नो रिप्लाई, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट फेयर। जी इतना कुछ लिखकर नहीं भेजा है, लेकिन हाँ नाराजगी जाहिर जरूर की है। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने लिखा है ये मैसेज। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का ये मैसेज देखिए मैंने शामिल कर लिया। पूरी उम्मीद है मुझे कि अब आप नाराज नहीं होंगे। चलिए अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं सुरेश गगनेजा जी का। पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा इसमें शामिल है। जलालाबाद वेस्ट से भेजा है ये मैसेज और नाम के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से लिख रहे हैं। जुबैर अली खान, सबीहा, अंजुमन खान और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भी कह रहे हैं। अगर इनका मैसेज शामिल होता है तो हमने आपका शुक्रिया कर लिया है कबूल। और कहां से लिखा है ये मैसेज ये भी मैं पढ़ देती हूँ। मारहरा दरवाजा एटा से लिखा है। और एक और मैसेज शामिल करेंगे उसके बाद सुनेंगे अगला गाना। तो ये लिखा है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने। लिख रहे हैं कि प्रोग्राम का आगाज बहुत ही उम्दा है और हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो आज एक गीत तो बनता है, वैसे आपकी मर्जी है, एफएम गोल्ड से तो हमें प्यार है ही। चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी के साथ जो अगला गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ ना, वो भी इस मौसम पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगा। फिल्म है चुपके चुपके, लता जी की मीठी और दिलकश आवाज़ है। इसकी फरमाइश हमें लिख कर भेजी थी अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश, नियति, बेनी पट्टी, मधुबनी, बिहार से।

गहरे सागर सा शांत सरल जो मन का मैल मिटाता है, भटके जब राह ये जीवन वो सही मार्ग दिखलाता है, जिसके सम्मुख हम खोल सकें अपने दिल की हर एक बात, वो नबी ही जीवन का संबल, वही विधाता की सौगात है। मिलाद उन नबी की शुभकामनाओं के साथ ये मैसेज हमें भेजा है प्रकाश गोगिया जी ने कड़कड़ डूमा दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हम कह रहे हैं इस मैसेज के बदले। चलिए अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं अनवर साबरी जी का। शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। दाऊद सराय सहारनपुर से भेजा है ये मैसेज और नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा है, ये मेरी इनसे शिकायत है। चलिए अगला मैसेज शामिल करेंगे किसका, राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया और चारू जी ने भेजा है दिल्ली नागलोई से। लिखा है कि लोगों को समझने में उम्र गुजर गई, फिर भी कुछ चेहरे समझ नहीं आए, अब अकेले चलना ही बेहतर लगता है, कम से कम रास्ते तो अपने हैं। बिल्कुल सटीक बात आपने कही। और इसी के साथ अगला मैसेज, धानोरा विटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुलडाणा, महाराष्ट्र से आया है मैसेज। भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल जी का भी, ये भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं हम सब के साथ। अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं सुधाकर राजे, जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, जगुताई राजे और कुमार संचित का। प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली भी इनके साथ शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है। कहां से? मुक्काम पोस्ट, कालेगांव, जाफराबाद, मराठवाड़ा से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज को भेजने के लिए। संदीप मक्कड़ जी का भी मैसेज आ गया है। ज्योति, मन्नत, भरत और धर्मवीर इस मैसेज में शामिल हैं। दिल्ली वाले हैं ये और पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से आया है मैसेज, लेकिन है दिल्ली वाले, ये इनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज को भेजने के लिए। अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं धर्मेंद्र छीपा जी का। लिख रहे हैं कि बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आखिर कितना इंतजार करें भाई, और कितने मैसेज भेजे? ये शिकायत है जिसे हमने दूर करने की कोशिश कर दी है। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने भेजा है ये मैसेज भोपालगढ़ राजस्थान से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अगला मैसेज जो मुझे नजर आ रहा है, देखिए जो नजर आ रहे हैं ना वो सब मैं शामिल कर चुकी हूँ और ये शिकायत मुझे आपसे करनी है कि एक ही बार भेजिए ना प्लीज। उससे क्या होता है ना, जो ईमानदारी से एक ही बार भेज रहे हैं उनके मैसेजेस खो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिल गया है मुझे एक मैसेज।

अभी तक शामिल नहीं हुआ है सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ ने भेजा है मैसेज महाराष्ट्र पुणे से और बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है। अफरोज शेख साहब का मैसेज मुझे नजर आ रहा है, कहां से है, नेमुआ सुपौल बिहार से आया है मैसेज और एक बड़े अलग से गीत की इन्होंने फरमाइश की है और बहुत ही खूबसूरत गीत है। चलिए साथ में सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। साथ ही आपको याद दिला दूं कि अब वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है तो क्यों ना कुछ और मैसेजेस भी शामिल कर लिए जाएं, उसके बाद इनकी फरमाइश पूरी कर दें। उम्मीद है नाराज नहीं होंगे क्योंकि एक दो मिनट हैं अभी हमारे पास। तो चलिए, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने भी भेज दिया है मैसेज भटिंडा रोड मंडी डबवाली से। अगला मैसेज पंजाब से आया है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा ने भेजा है वडिंग खेड़ा से। और इसी के साथ अगला मैसेज जो मुझे नजर आ रहा है, नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहिलकर, पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर का ये मैसेज है और कहाँ से आया है, मलकापुर महाराष्ट्र से आया है और इससे पहले जो नाम मैंने लिए वो थे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज को भेजने के लिए। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और कह रही हैं कि हर गीत खुशनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और शोभापुर मेरठ कैंट से भी एक मैसेज आया हुआ है दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का, एक नहीं कई गानों की फरमाइश लेकर भेजी है और फरमाइश के अलावा तो और कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। चले कोई बात नहीं, मैसेज आपका शामिल हो चुका है। और राजीश शर्मा जी का भी एक मैसेज आया हुआ है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, माफ कीजिएगा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान इसमें शामिल हैं। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, अगला गाना सुन लेते हैं। अफरोज शेख साहब की, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फरमाइश है, नेमुआ सुपौल बिहार से है, गाना बहुत अलग है, हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने नहीं भी सुना हो, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा गाना है और आवाज़ें हैं रफ़ी साहब की और सुमन कल्याणपुर जी की। चलिए सुनते हैं और अब आपसे मुलाकात कब होगी, हाँ आप जानते हैं 11:10 पर तस्वीर होगा प्रोग्राम और उससे पहले हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

0: रहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजना की समीक्षा की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना नीस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6वीं बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षो में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे को भरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से पराजित किया। वहीं फाइनल मैच में प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच मैच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati.

नमस्कार एंड वेलकम वंस अगेन। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे ट्यून किया हुआ है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं यानी नाज एक बार फिर हूं आपके साथ, लेकर हाजिर हूं तस्वीर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज है 26 अगस्त, जब गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान का अपना देश कहे जाने वाले केरल में मनाया जा रहा है यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्योहार ओणम। केरल जो कि अब केरलम हो गया है, वैसे अभी नहीं हुआ है, मलयाली भाषा में पहले से ही केरल को केरलम ही कहा जाता था, पर अभी ऑफिशियली इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। और इस नाम का मतलब क्या है ये भी सुनते जाइए। केरा मतलब नारियल और अलम मतलब भूमि, यानी नारियल की भूमि केरल पहुंच गए हैं आप। और केरल में कहां जाएंगे वो भी सुन लीजिए। बहुत शांत जगह है ये, हरे भरे और जादुई शहर के नाम से इसे जाना जाता है, और नाम है इसका कुमारकोम। शांत बैक वाटर्स, नारियल के झूमते पेड़ और नेचर की ऐसी खूबसूरत तस्वीर हम साथ में यहाँ देखेंगे, जो सीधा दिल में उतर जाएगी। तो चलिए अब बिना देरी के सुनते हैं तस्वीर की प्लेलिस्ट से ये पहला सॉन्ग, और उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे कुमारकोम के बारे में।

वेम्बानद झील के किनारे बसा कुमारकोम अपनी हरियाली और शांति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां पहुंचना भी बहुत आसान है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से सबसे नजदीक है। सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी आपको यहां से कुमारकोम के लिए तय करनी है। ट्रेन से आना है तो कोट्टायम रेलवे स्टेशन पहुंचिए, जो कुमारकोम से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। और फिर यहां से सड़क के रास्ते नारियल के पेड़ों के बीच से गुजरती हुई जो ठंडी हवा आपके चेहरे को छुएगी ना, वो आपकी सारी थकान मिटा देगी, इस बात की गारंटी आप मुझसे ले लीजिए। तो इस खूबसूरत सफर का मजा लीजिए मेरे यानी नाज के साथ, और साथ में एंजॉय कीजिए ये अगला बेहतरीन ट्रैक।

तो अगर आपकी भी है हार्ट ब्रेक वाली स्थिति तो फौरन चले आइए कुमारकुंभ, क्योंकि यहाँ की ताजी हवा, शांत जगहें और खूबसूरत रास्ते आपके हार्ट को फिर से गार्डन गार्डन कर देंगे। और चूंकि आज है ओणम का त्योहार और इस खास मौके पर कुमारकुंभ की रंगत कुछ और ही होती है, हर घर के आंगन में आपको फूलों की खूबसूरत रंगोली देखने को मिलेगी, जिसे यहाँ पूक्कलम कहा जाता है। महिलाएं पारंपरिक सफेद और सुनहरी बॉर्डर वाली कसावू साड़ी पहने नजर आती हैं और साथ ही कुमारकुंभ के बैक वाटर्स यानी शांत जलमार्गों के पानी में आपको एक अलग ही जोश महसूस होता है। और ऐसा है क्यों? अरे जनाब, क्योंकि यही तो वो समय है जब पूरे केरलम में नाव दौड़ यानी वल्लम कली का खुमार छाया होता है। तो चलिए खो जाते हैं इस खुमार में, साथ ही कुमारकुंभ की खूबसूरती में भी, विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां मैं यानी नाज करवा रही हूं आपको खूबसूरत कुमारकोम की सैर, जो सिर्फ बैक वाटर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां मौजूद कुमारकोम बर्ड सेंचुरी जो हम जैसे नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। 14 एकड़ में फैले इस इलाके में आपको साइबेरियन क्रेन, वाटरफॉल्स और हेरॉन जैसे ढेरों प्रवासी पक्षी देखने को मिल जाएंगे। और सुबह सुबह, मतलब तड़के सुबह, यहाँ नाव पर बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और साथ में

कुमार कोम आए हैं और हाउस बोट यानी केटुवल्लम का सफर करना अगर आप किसी भी वजह से भूल जाएं, तो यकीन मानिए कि बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप। वेम्बानद झील के शांत पानी पर तैरते हुए एक शानदार हाउस बोट में रात बिताना यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये बोट्स अंदर से किसी 5-स्टार होटल जैसी होती हैं। फिर पानी की हल्की छप छप और रात के वक्त तारों से भरा खूबसूरत आसमान, आपका हर स्ट्रेस यहां आकर छू मंतर हो जाएगा, ये बात तो पक्की है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: NCERTPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों

केरलम के खूबसूरत शहर कुमारकोम की सैर कर रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर। कुमारकोम ये जो शहर है ना, ये सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि आपके तन और मन को भी तरोताजा कर देता है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि केरलम अपने प्रामाणिक आयुर्वेदिक स्पा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के आयुर्वेदिक रिसॉर्ट्स में मिलने वाली ये खास थेरेपी आपकी रोजमर्रा की सारी टेंशन और स्ट्रेस और थकावट को कहाँ गायब कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर नेचर की गोद में कीजिए रिलैक्स विद दिस नेक्स्ट

बैक वाटर्स से अलग अगर कुछ हिल साइड डेस्टिनेशंस आप घूमना चाहते हैं तो भी कुमारकोम आपका स्वागत करता है। सीधा चले आइए अरुविक्कुजी वाटरफॉल, जो कुमारकोम से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है, जिसके चारों ओर आप पाएंगे रबर के घने बागान।

मॉनसून यानी अभी के समय वाटरफॉल अपने पीक पर होता है, मतलब कि सावधानी बेहद जरूरी है इस दौरान, और साथ में जरूरी है ये अगला ट्रैक सुनना और एंजॉय करना भी।

घूमना फिरना और आराम तो हो गया, लेकिन शॉपिंग के बिना तो हर सफर अधूरा है ना। तो लेडीज, टेंशन की कोई बात है नहीं, क्योंकि कुमार कुंभ में है बहुत कुछ ऐसा जिसे आप यहाँ की याद बनाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, साथ ही कॉयर जो असल में नारियल का छिलका या फिर रेशा भी आप इसे कह सकते हैं, इनसे बने खूबसूरत मैट्स, बैग्स और शो पीस आपको यहाँ भरपूर मिलेंगे। साथ ही एकदम शुद्ध आयुर्वेदिक तेल, ताजे मसाले जैसे इलायची, काली मिर्च और कथकली के छोटे छोटे मुखौटे यहाँ की सबसे अच्छी निशानियां हैं, जिन्हें आप अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं।

देखिए, भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता, 100% आपको याद रखना ही है कुमार कोम के लजीज पकवानों को और उन्हें टेस्ट करना भी, जिनका स्वाद लिए बिना कुमार कोम की सैर अधूरी है। चूंकि आज है ओणम का त्योहार, तो इस दौरान क्या कुछ खास आपको यहाँ पर मिलेगा, पहले इस पर बात करते हैं। जनाब, बड़े ही सलीके से केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली भव्य ओणम साध्या का आनंद आपको यहाँ पर मिलेगा इस दौरान, जिसमें 26 से भी ज्यादा शाकाहारी व्यंजन होते हैं, जैसे अवियल, पचड़ी और आखिर में लाजवाब पायसन। और अगर हैं आप सी फूड के शौकीन, तो यहाँ की मशहूर डिश करी मीन पोलिचथू, जो कि केले के पत्ते में भुनी हुई मछली है और अप्पम के साथ स्टू, जरूर ट्राई कीजिएगा।

वेम्बनाड झील का शांत पानी, हाउस बोट की सैर और ओणम का जानदार जश्न, ये सब कुमारकोम शहर की यकीनन एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे हम सब बार बार देखना चाहेंगे। लेकिन वक्त का भी है अपना पहरा, तो जनाब ओणम की इस मिठास और कुमारकोम के इन हसीन नजारों के साथ छोड़े जा रही हूं आपको। साथ में है ये वादा भी कि बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नए शहर की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय

खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके

0: और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
1: और मैं हूँ प्रतिभा।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
0: तो प्रतिभा, शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत विचार से। डर एक एहसास है, साहस एक निर्णय है। डर तो हम सभी को लगता है नई शुरुआत से, असफलता से, लोगों की राय से, जजमेंट से, लेकिन साहस का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि डर नहीं, आपके फैसले आपकी पहचान बनेंगे।
1: बिल्कुल। और देखो मंजुला, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछते हैं, है ना, और आज का भी हम सवाल पूछ लेते हैं अपने श्रोताओं से। और श्रोताओं देखो, आज है महिला समानता दिवस, और आज का जो हमारा प्रश्न है वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि आपके अनुसार सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान क्या है। जी हाँ, आपके अनुसार सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये है आज का सवाल। तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके जवाबों का इंतजार।
0: तो चलिए मुस्कुराइए, जुड़े रहिए, इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि अगले कुछ पल होने वाले हैं जानकारी, प्रेरणा और सुनहरे गानों से भरपूर।

0: आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी वक्त।
1: और प्रतिभा, आज का दिन बहुत ही खास है।
0: बिल्कुल, आज का दिन हमें याद दिलाता है उस महान व्यक्तित्व की जिनका जीवन दया, समर्पण और परोपकार की भावना से जुड़ा रहा। आज यानी 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था।
1: और हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को समर्पण की भावना से प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें 1979 में नोबल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज हम उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें नमन करते हैं।
0: और देखो मंजुला, आज का दिन तो और भी खास है ही, क्योंकि आज है मिलाद उन नबी, यानी वो दिन जब पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और इस दिन को ईद मिलाद उन नबी भी कहा जाता है। ये दिन उनके जन्म की खुशी और शिक्षाओं को याद करने का दिन है। इस दिन लोग उपवास करते हैं, दान करते हैं और अपने पैगंबर को याद करते हैं। तो आज के दिन की सभी श्रोताओं को ढेरों
1: शुभकामनाएं। और आज एक और खास दिन है, और कई मायनों में खास है। आज थिरुवोनम का त्योहार भी मनाया जा रहा है। यह ओणम की 10 दिवसीय त्योहार का 10वां और महत्वपूर्ण दिन है, जिसे भव्य सजावट, उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। थिरुवोनम और ओणम त्योहार केरल की संस्कृति को समेटे हुए हैं, जो एकता, समृद्धि और राजा महाबली की शाश्वत गाथा का उत्सव है।
0: बिल्कुल, देखो मंजुला, ओणम 10 दिनों तक तो मनाया जाता है, और इसका जो हर दिन होता है उसका अपना अलग महत्व और इसके रीति रिवाज होते हैं। ये त्योहार अथम से शुरू होता है और थिरुवोनम के साथ समाप्त होता है, जो इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।

0: प्यार का मौसम। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: हाँ, और प्रतिभा, आज एक और खास दिन है, महिला समानता दिवस। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि उस संघर्ष की याद है जिसने दुनिया को ये सिखाया कि महिलाओं की आवाज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी और की।
0: और देखो, महिला समानता दिवस सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया। इसकी शुरुआत उस ऐतिहासिक दिन की याद में जुड़ी है जब महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। लेकिन आज इसका अर्थ सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है बल्कि शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व, सम्मान और अपने फैसले स्वयं लेने की आजादी भी है।
1: बहुत अच्छी बात कही। और एक समय था जब लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं माना जाता था, आज वही बेटियां वैज्ञानिक बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, सेना की कमान संभाल रही हैं, कंपनियां चला रही हैं और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं।
0: बिल्कुल। और देखो, लेकिन क्या समानता का मतलब पुरुषों से आगे निकलना है? बिल्कुल नहीं। सच्ची समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले, ना किसी को सिर्फ इसलिए रोका जाए कि वह महिला है और ना ही किसी को सिर्फ इसलिए कम आंका जाए कि वह पुरुष है। जब अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ चलती हैं तभी समाज वास्तव में आगे बढ़ता है।
1: एक बात और प्रतिभा, की समानता की शुरुआत कानून से नहीं, सोच से होती है। जब घर में बेटा और बेटी दोनों को एक जैसी शिक्षा, एक जैसा सम्मान और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिलता है तभी एक मजबूत समाज की नींव पड़ती है।
0: बिल्कुल। श्रोताओं, याद रखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ उन्हें विशेष अधिकार देना नहीं बल्कि उनके अधिकारों को स्वीकार करना है। क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं।
1: तो इस महिला समानता दिवस पर आइए छोटा सा संकल्प लें, हम अपने घर, कार्यस्थल और समाज में किसी के साथ भी जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। प्रतिभा को पहचानेंगे, हमारी इस प्रतिभा को नहीं अपने टैलेंट को, सपनों को उड़ान देंगे और सम्मान को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाएंगे। तो सवाल आज का एक बार फिर से बता दें।
0: बिल्कुल। देखिए, आज का जो

हमारा सवाल है वो हमारे जो महिला के सशक्त होने से जुड़ा हुआ है कि जो हमारी महिलाएं हैं, है ना, आपके अनुसार आपको ये बताना था कि सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान क्या है, जिसके लिए आपको हमें जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी चोरी चोरी। और मंजुला
1: ईमेल
0: देखो,
1: सी मेल सी मेल सी जवाब आ गए,
0: जवाब आ गए हैं। और सबसे पहले जवाब आया है नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो। बहुत बढ़िया,
1: बहुत बढ़िया। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि एक सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान उसका स्वयं पर अटूट विश्वास, असली जिंदगी के फैसले, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता।
0: और देखिए आदित्य मुद्गल जी कह रहे हैं कि वह अपने फैसले खुद लेती है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखती है।
1: बिल्कुल। और अनन्या श्रेष्ठा जी लिखती हैं कि मेरे अनुसार एक सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान उसका खुद पर विश्वास है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है और मुश्किलों से लड़ना जानती है।
0: और देखिए अलमास हुसैन जी का मैसेज है महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं कि सशक्त महिला खुद से कमाती है, अपना जो भविष्य है उसका खुद से निर्माण करती है। देखो कितनी अच्छी बात कही,
1: बहुत ही अच्छी बात। और ऐना लिखती हैं कि मेरे अनुसार एक सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि वो कितनी ऊंची आवाज में बोलती है, बल्कि ये है कि बिना किसी शोर के भी अपनी जगह बनाना जानती है। वो हालातों के हिसाब से खुद को बदलने के बजाय हालातों को अपनी सोच के हिसाब से बदलने का साहस रखती है। बहुत ही खूबसूरत रिप्लाई
0: है ना। और देखिए हनी राय जी कह रहे हैं कि किसी भी महिला को पहचान की जरूरत नहीं है, उसकी अपने आप में एक जो वो एक शख्सियत है, उसकी एक अपने आप में वर्थ है और जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो उसका जो अस्तित्व है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है, वही उसकी पहचान को बनाता है क्योंकि वो शक्ति का रूप है।
1: बिल्कुल। और गौरी शंकर वर्मा जी का मेल आया है, वो उन्होंने लिखा है आप दोनों बेटियों को राम राम। मैं तो यही कहूंगा कि महिला में इतनी शक्ति है, अगर समझदार से काम ले तो बिगड़े हुए घर को भी सुधार देती है। माँ की याद आती है, उसी ने हमें दुनिया दिखाई, अच्छा करना या गलत करना वो हमारे हाथ में है, उसमें माँ का दोष नहीं है, वो तो हमें अच्छी शिक्षा देती है।
0: और देखिए डी राजेश्वर राव जी कहते हैं कि जो स्ट्रांग महिला है, जो सशक्त महिला है, वो अपना जो वर्थ है वो खुद से जानती है, वो चैलेंजेस को वो फेस करना जानती है, उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है। और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के पास फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, एबिलिटी, बहुत कुछ है अपने डिसीजन लेने के लिए।
1: बहुत ही अच्छे रिप्लाई, बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर आप लोगों के विचार। तो आप अभी भी मेल भेजते रहिए

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो छोर से, और प्रतिभा आधुनिक होना और आधुनिक दिखना, इन दोनों में बहुत फर्क है। हमें अक्सर लगता है कि आधुनिक कपड़े पहनकर हम आधुनिक बन जाएंगे, मॉडर्न बन जाएंगे, लेकिन आधुनिकता आपके पहनावे में नहीं, आपकी सोच में दिखाई देती है। आधुनिकता है अपनी पसंद पर विश्वास, अपनी पहचान को पूरे कॉन्फिडेंस से स्वीकार करना, स्वतंत्र सोच और अपने फैसले खुद लेने का साहस।
1: बिल्कुल, और देखो जब बात खूबसूरती की आती है ना, तो असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे या पहनावे में नहीं, आपके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व में होती है। अधिकार हमेशा गरिमा से आता है और शालीनता कभी फैशन से बाहर नहीं होती।
0: बिल्कुल, और एक सशक्त महिला अपने रूप और शालीनता दोनों से प्रभाव पैदा करती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो आत्मविश्वास, गरिमा और आत्मसम्मान, जिसके साथ वो खुद को दुनिया के सामने रखती है, प्रेजेंट करती है।
1: बिल्कुल, और देखो अब आप जो है, हमारी जो महिलाएं हैं, आप भी आधुनिक हो सकती हैं, स्टाइलिश भी, फैशनेबल भी और बेहद आकर्षक भी, बिना ये महसूस किए कि अपनी पसंद से ज्यादा कुछ दिखाना जरूरी है, क्योंकि ध्यान आकर्षित करना एक बात है, लेकिन सम्मान और प्रशंसा हासिल करना वो एक कला है।
0: क्या बात है, तो रूप से नजरें ठहरती हैं मगर व्यक्तित्व से दिल जुड़ते हैं। फैशन बदलता रहता है दौर के साथ, पर गरिमा और आत्मसम्मान हमेशा खूबसूरत रहते हैं।

0: सब। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तीन देवियाँ। और देखो मंजुला, एक संदेश और है हमारे पास। श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से लिख रहे हैं कि एक सशक्त महिला अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती, वो अपने सभी फैसले खुद लेती है और अपने लिए आवाज भी उठाती है
1: के खिलाफ। जी हाँ, तो चलिए बात अब सशक्त महिला की हो रही है तो ये बातचीत तो बनता है। 2026 की बेटियां वर्दी में शौर्य की नई तस्वीर। आज हम बात करेंगे उन बेटियों की जिन्होंने साल 2026 में अपनी मेहनत, साहस और कर्तव्य निष्ठा से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो चलो प्रतिभा, शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना से। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, 2026 में उन्होंने वायुसेना का अत्यंत कठिन लड़ाकू युद्ध नेतृत्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और भारत की पहली महिला टॉप गन बनी। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में अकेले MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला भी रही हैं।
0: यानी लड़ाकू विमान उड़ाने के साथ साथ युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का भी शानदार प्रदर्शन। अब चलते हैं देखो मंजुला भारतीय थल सेना की ओर। कैप्टन शिवानी सहरावत 2026 में थल सेना प्रमुख की पहली महिला सहायक अधिकारी बनी। ये जिम्मेदारी सेना के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है।
1: क्या बात है। और सहायक सेना नायक सिमरन बाला ने पहली बार पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है।
0: और फिर आती है समुद्र की चुनौती। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 9 महिला अधिकारियों ने समुद्र प्रदक्षिणा के अंतर्गत लगभग 25,500 समुद्री मील की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। 314 दिन, 4 महासागर और सामने प्रकृति की अनगिनत

0: चुनौतियाँ।
1: क्या बात है, लेकिन ये बेटियाँ रुकी नहीं और 2026 में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पहली महिला प्रशिक्षु टुकड़ी ने प्रशिक्षण पूरा कर देश की सेनाओं में नई जिम्मेदारियां संभाली। यानी अब बेटियां सिर्फ वर्दी पहनने का सपना नहीं देख रही, वे नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उठा रही।
0: बिल्कुल, और देखो श्रोताओं, इन कहानियों में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, मौका बराबर हो तो क्षमता अपना रास्ता खुद बना लेती है। भारत की बेटियां आगे बढ़ रही हैं और उनके साथ आगे बढ़ रहा है नया भारत।

0: महादेवन की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी लक्ष्य।
1: और प्रतिभा सोचो, अगर दुनिया के सारे रंग गायब हो जाएं तो क्या रह जाएगा, ना फूलों की खूबसूरती, ना त्योहारों की रौनक, ना कपड़ों की पहचान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया जिन रंगों पर सदियों से मोहित है, उनमें से कई रंग भारत की धरती ने दुनिया को दिए हैं। आज की इस रंगीन यात्रा की शुरुआत करते हैं नीले रंग से।
0: भाई दुनिया आज जिस इंडिगो ब्लू को डेनिम जीन्स का रंग मानती है, उसकी कहानी भारत से शुरू होती है। इंडिगो शब्द जो है वो ग्रीक और लैटिन के उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है भारत से आया। लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व से भारत से नील का निर्यात मिस्र तक होता था। यानी आज दुनिया में पहने जाने वाली लगभग हर इंडिगो रंग की जो भी चीज होती है, उसकी ऐतिहासिक जड़ें जो हैं वो भारत से जुड़ी हैं।
1: अब बात उस लाल रंग की जिसने पूरी दुनिया को आकर्षित किया, मंजिष्ठा। दुनिया जिस टर्किश रेड के नाम से इस रंग को जानती है, उसकी रंगाई तकनीक का विकास सबसे पहले भारत में हुआ। 17वीं शताब्दी में भारतीय कपड़ों के माध्यम से ये रंग यूरोप पहुंचा और वहां से फैशन का हिस्सा बन गया।
0: और देखो, लाल रंग की ही एक और अनमोल विरासत है लाख। लाख के कीटों से प्राप्त प्राकृतिक गहरा लाल रंग सदियों से कांचीपुरम जैसी रेशम साड़ियों की रंगाई में उपयोग होता आया है। और अब चलते हैं कश्मीर की ओर।
1: चलो चलो।
0: कश्मीर की जो कारीगरी जो है वो सदियों पहले अखरोट के छिलकों से गहरा चॉकलेटी भूरा रंग तैयार करते थे वहां के कारीगर, और इसी रंग से पश्मीना और ऊनी शॉलों को रंगा जाता था जब दुनिया में कृत्रिम भूरे रंग का अस्तित्व भी नहीं था। तब कश्मीर ये कला सीख चुका था। और सबसे सुंदर बात ये कि ये परंपरा आज भी जीवित है।
1: और अब बात उस रंग की जिसे भारत में केवल रंग नहीं, आस्था का प्रतीक माना जाता है, केसरिया। प्राकृतिक केसर रंग के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता तक मिलते हैं। यही रंग आगे चलकर भारतीय संस्कृति, त्याग, साहस और हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। और हाँ, हल्दी का सुनहरा पीला रंग भी भारत की अनमोल देन है।

0: अभी आपने ये गीत सुना आन मिलो सजना फिल्म से, आवाज थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और मंजुला देखो मेल आई है, हम फटाफट से पढ़ देते हैं। मेल है उग्रसेन यादव जी की, वो कह रहे हैं कि हर महिला अपने आप में सशक्त होती है, सिर्फ उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया।
1: और सुदर्शन मुखी जी ने लिखा है कि वुमन हैव ऑलवेज बिन अहेड ऑफ मेन इन एजुकेशन एंड राइटिंग। बहुत ही खूबसूरत बात, और समय इशारा कर रहा है।

0: और देखो मंजुला कार्यक्रम का तो वक्त हो गया, लेकिन सबसे पहले बता दें जो गाना सुन रहे हैं श्रोता, वो सुन रहे हैं नया दौर फिल्म से आवाज है आशा भोसले और शमशाद बेगम की।
1: और इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को देते हैं यहीं विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला
0: और प्रतिभा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत यह कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट

0: 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. India has rejected the references in the report of UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, terming them politically motivated and highly malicious. In response to media queries on the committee's report following India's 11th periodic review under the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, ICERD, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said,

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हुआ है ठीक 1:11:05 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक बासु चटर्जी की बातें आज साझा होंगी आपके साथ कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। बासु चटर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बासु भट्टाचार्य के सहायक के तौर पर की थी। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा को बासु चटर्जी ने कई ऐसी यादगार

चार फिल्में दी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई आयामों को ही बदल दिया। बासु चटर्जी की ज्यादातर फिल्में हल्की फुल्की सामाजिक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियां हुआ करती थी। शादी और प्रेम संबंधों पर भी उनका फोकस रहता था। बस इसी दमदार जबरदस्त डायरेक्टर लेखक बासु चटर्जी की बातें करते हुए पूरा करेंगे और साथ ही सुनेंगे उनकी फिल्मों के मधुर गीत संगीत का साथ भी रहेगा। कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड। अंजलि है आपके साथ।

प्रसिद्ध निर्देशक और लेखक बासु चटर्जी जन्म इनका हुआ राजस्थान के अजमेर में 10 जनवरी 1927 को। पिता इनके रेलवे में कार्यरत थे और घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि वो फिल्मी दुनिया में आने को प्रेरित होते। एक साधारण से परिवार से उनका संबंध रहा। निर्देशन और फिल्म मेकिंग से जुड़ा कोई कोर्स भी बासु चटर्जी ने नहीं किया था, लेकिन फन और कला छुपाए नहीं छुपते, उन्हें उजागर होना ही था। शुरुआत में उन्होंने ब्लिट्स पत्रिका में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर काम किया था। कैसे फिल्मी दुनिया से इनका जुड़ना हुआ, इस पर भी बात करेंगे। सुनते रहें 100.1 आकाशवाणी गोल्ड।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 जाने माने निर्देशक और पटकथा लेखक बासु चटर्जी का जिक्र हो रहा है इस वक्त। कैसे फिल्मी दुनिया से उनका जुड़ना हुआ, ये हम बात करने वाले हैं। पिता क्योंकि रेलवे में थे, उनका ट्रांसफर होता रहता था। मथुरा में उन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें फिल्में देखने का शौक रहा, यानी कि फिल्मी दुनिया से जुड़ने का जो सपना था ना, वो बचपन से ही पनप रहा था बासु चटर्जी के दिमाग में और उनके मन में। उनके अपने बड़े भाई के साथ वो अक्सर फिल्म देखने जाया करते थे। मथुरा में ही एक थिएटर हुआ करता था और जितनी भी फिल्म्स वहां लगती थी ना, लगभग सभी फिल्में वो देख लिया करते थे। फिल्में देखना और खेलना उन्हें बहुत प्रिय रहा। हालांकि पढ़ाई में भी वो ठीक ठाक रहे। 6 भाई बहनों के परिवार में माता पिता ने कभी भी पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह का दबाव बच्चों पर नहीं डाला। और इस वक्त बासु चटर्जी जाने माने लेखक और डायरेक्टर, जिनकी बातें हम कर रहे हैं, तो जब दबाव पढ़ने का या किसी काम को करने का तो नहीं पड़ा, लेकिन खुद बासु चटर्जी बताते हैं कि उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात जाहिर की है कि मुंबई आने के बाद ही उनके मन में जो थी ना निर्देशन के प्रति जो रुचि थी वो उजागर हुई, वो पनपी। दरअसल यहां आकर बासु चटर्जी फिल्म सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़ गए, जहां पर दुनिया की अलग अलग भाषाओं की सिलेक्टेड मूवीज दिखाई जाती थी। यहां उन्हें अब बहुत सारी, जैसे बोलते हैं ना, विदेशी भाषाओं की फिल्में देखने का मौका मिला और जिसके बाद फिल्मों की तरफ उनका जो रुझान था वो और भी बढ़ गया।

बासु चटर्जी फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए वो बन गए बासुदा। बासुदा के मुताबिक उन दिनों एक फिल्म आई थी बाइसिकल थीफ। उसकी शूटिंग में ना किसी स्टूडियो में की गई थी उसकी शूटिंग और ना ही कोई मंचे हुए कलाकार रहे थे फिल्म में, और बस सब कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके वो फिल्म बना ली गई थी। लेकिन इसके बाद भी सब उसे देखकर चौंक गए थे। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। इसके कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई थी पांथेर पांचाली। इससे पहले जो भी अच्छी चीज हुआ करती थी वो या तो इटालियन होगी या जर्मन और फ्रेंच। जब पांथेर पांचाली बनाई गई तो हमारी भी आंखें खुली और हम लोग भी ये कर सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर हौसला आया, ऐसी हमारी मंशा हुई। और इसी तरह फिल्म डायरेक्शन की तरफ उनका झुकाव जो था ना बढ़ गया और बस उन्होंने ठान लिया कि फिल्में निर्देशित करनी है।

बासु चटर्जी मथुरा से ग्रेजुएशन करने के बाद बासुदा मुंबई आ गए। वो बताते हैं कि उस वक्त पुणे और कोलकाता में कोई फिल्म इंस्टीट्यूट था ही नहीं, बस जितने भी भारतीय निर्माता निर्देशक रहे सबने अपने आप पढ़कर और असिस्टेंट बनकर ये विधा हासिल की। खुद बासुदा ने भी जितनी भी फिल्म मेकिंग से जुड़ी किताबें उपलब्ध हो सकी उन्हें पढ़ डाला ताकि वो फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीख सकें और साथ ही कई दिग्गजों के साथ असिस्टेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया।

पहला ब्रेक मिला बासु चटर्जी को फिल्म तीसरी कसम से, जिसमें उन्होंने चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य को असिस्ट किया था। कैसे मिली ये फिल्म, इसी की बात कर लेते हैं। दरअसल जो कवि शैलेंद्र हैं, वो तीसरी कसम शुरू करने जा रहे थे। स्कूल में शैलेंद्र जो थे बासुदा के सीनियर रहे थे। बस बासुदा उनसे मिले और शैलेंद्र ने उन्हें बासु भट्टाचार्य जो कि फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे उनसे मिलवा दिया और इस तरह बासु चटर्जी यानी कि बासुदा का यहां पर काम बन गया।

बतौर स्वतंत्र निर्देशक सारा आकाश बासुदा की पहली फिल्म रही। अपनी इस फिल्म के लिए एक जाने माने निर्देशक ने उन्हें कहा था कि हम तो दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं, लेकिन आपने तो हमारे लिए ही फिल्म बना डाली। इससे काफी कुछ सीखने को मिला। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राजश्री को भी ये फिल्म काफी पसंद आई। इसके बाद बासुदा को जो दूसरी फिल्म मिली वो थी पिया का घर। राजश्री की ये जो फिल्म थी वो उन्हें ऑफर हुई थी पिया का घर।

बासु चटर्जी जाने माने पटकथा लेखक निर्देशक, उनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। पिया का घर, उस पार, चित्तचोर, स्वामी, खट्टा मीठा, प्रियतमा, चक्रव्यूह, जीना यहाँ, बातों बातों में, अपने पराए, शौकीन, सफेद झूठ जैसी फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया। उनकी ढेर सारी सदाबहार फिल्में आज भी ताजा हैं और देखने वालों का मनोरंजन करती हैं। टीवी के लिए भी 80 के दशक में वो एक क्रांति लेकर आए जब उन्होंने महिला प्रधान सीरियल रजनी दर्शकों को सौंपा। 1993 में आया उनका सीरियल ब्योमकेश बख्शी भी काफी पॉपुलर रहा। बासु चटर्जी को उनके अतुलनीय कामों के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। अगर इन सम्मानों की बात करें तो 1975 में फिल्म रजनीगंधा के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1978 में फिल्म स्वामी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार उन्हें मिला। 1980 में फिल्म जीना यहां के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से वो सम्मानित हुए। 1978 में ही फिल्म स्वामी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। और 1991 में जो उनकी फिल्म थी कमला की मौत, इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा यानी कि स्क्रीन प्ले के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1992 में फिल्म दुर्गा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें दिया गया और 2007 में आईफा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और मुझे लगता है बासु चटर्जी जैसे जो दिग्गज प्रतिभाशाली और हुनरमंद व्यक्तित्व होते हैं, जो ऐसी शख्सियत होते हैं, वो सम्मानों से कहीं ऊपर होते हैं और हमेशा हमेशा उनका जो काम है ना, हमारी यादों में, हमारी बातों में ऐसे ही झलकता रहेगा और हम उनका आनंद लेते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे अपने उनके कामों से जो हमें सौंपा है, जो उन्होंने, और इसी तरह अपने दिल में, अपने जहन में उन्हें बसा कर रखेंगे। और चलते चलते बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा गाना फिल्म खट्टा मीठा से किशोर कुमार और उषा मंगेशकर साथियों की आवाज़ में आप तक पहुँच रहा है।

इसी के साथ अंजलि आपसे फिलहाल इजाजत ले रही है, लेकिन 2:30 पर आपके साथ एक बार फिर से रहूंगी संगीत.com लेकर। कुछ ही देर में आप सुनिएगा उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाति शहरों के तेजी से फरोग और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आमा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओनम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा दो रोज के दौरान मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली एक अहम मईशत है और मुल्क में लगातार तरक्की, नौजवान आबादी, खपत में बढ़ोतरी और तेजी से फरोग पाते हुए सरमाया बाजार मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज टोरंटो में भारत के कारोबारी तबके के सरकर्ता अरकान से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत में शहरों के तेजी से फरोग, मुतवस्सित तबके की तरक्की और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे के नतीजे में यकसर कायापलट हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से मईशत के लगभग हर तबके के लिए नित नए मौके पैदा हो रहे हैं। भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकतदारी की अहमियत को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि कनाडा में मौजूद भारतीय बाशिंदे दोनों मुल्कों के दरमियान एक कलीदी पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मजकूरा प्रोग्राम को खेलों के कौमी दिन 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर मेरा युवा भारत माई भारत की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के हर एक जिले में दो कॉलेजों में नौजवानों की शमूलियत के साथ मुल्क भर में मुनक्किद किया जाएगा। इसमें खेलों, नौजवान लीडरशिप, समाजी जिम्मेदारी, रजाकाराना खिदमात, फिटनेस और मुल्क की तामीर को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाएगा, जिससे नौजवानों को मुल्क की खेलों से मुतालिक उमंगों में अमली तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों के ख्यालात और नुक्ताए नजर को भारत के नौजवानों और खेलों से मुतालिक इको निज़ाम के ताल्लुक से जारी बातचीत का एक हिस्सा बनाया जा सके। प्रोग्राम में नौजवान, माई भारत रजाकार, मकामी खिलाड़ी और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस पहल के नुमाया हिस्से के तौर पर खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान सरकर्दा भारतीय खिलाड़ियों और तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम की एक मरकजी खसूसियत युवा संवाद होगा, जिसमें नौजवान शुरका को उनके ख्याल, नुकताए नजर और उमंगों पर बात करने के लिए मदू किया जाएगा। ये बातचीत 5 मौजूदात पर होगी, जिनमें खेल, ओलंपिक से मुतालिक उमंगें, नौजवान कयादत, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद नौजवानों की कयादत में एक मजबूत विकसित भारत की खातिर अपनी उमंगें और नजरियात का इश्तराक करते हुए मुल्क के खेलों के सफर में नौजवानों को शामिल करना है। इसका इनेकाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक फिट, मुनज्जम और जब्त पर मबनी और खेलों को फरोग देने वाले मुल्क के नजरिए से मुताबिकत रखता है, जिससे नौजवानों की उमंगों को कौमी तरक्की के एजेंडा में मरकजी हैसियत हासिल हो सके। भारत ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की फौरी तरजीह इंसानियत को दरपेश मसाइल को दूर करने के इकदामात होने चाहिए, जिसका उन्हें लड़ाई की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने सलामती काउंसिल में इस सिलसिले में एक खुली बहस में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिला रुकावट इंसानी रसाई, महफूज और लड़ाई झगड़ों से पाक मुअस्सर इंतजामात की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके इकदामात में ऐसी पाबंदियां शामिल होनी चाहिए जिनसे इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में दानिस्ता तौर पर रुकावट न पड़े और जायज जरई तिजारत और खुराक की फराहमी जारी रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
भारत की मेडिकल एसोसिएशन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के बारे में होशियार और चौकस रहें। उसने ये भी कहा है कि मौसम की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है और इससे मुतासर ज्यादातर लोगों में ये एक हद तक रहता है और ये मामूली किस्म का होता है। उसने लोगों को मशवरा दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि ये H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स से इसके जरासीम खत्म नहीं होते। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जब कोई अहल मेडिकल पेशेवर शख्स तजवीज करे तभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में केरलम के बाशिंदे तिरु ओनम मना रहे हैं, जो ओनम का सबसे पवित्र दिन है। हमारे नामानिकार ने खबर दी है कि तिरु ओनम तकरीबात का आगाज ओना पुक्कलम से हुआ, जो बादशाह महाबली के खैर मकदम के लिए फूलों का एक रिवायती कालीन है। फसल की कटाई का ये त्यौहार केरलम के लोग जात और मजहब से कतई नजर मना रहे हैं। मंदिरों में खसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें सबरीमला, अरनमुला और गुरुवयूर शामिल हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी भी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद महफिलों और सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की हयात तैयबा को उजागर किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर

0: पी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम और ईद मिलाद उन नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अगले दो रोज के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान दिल्ली के हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कल बहुत हल्की से हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। ओडिशा में महानदी में तुगयानी आने के बाद सैलाब से मुतालिक तशवीश में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बैतरणी में भी पानी की सतह बढ़ गई है, जबकि भद्रक जिले में चांदबाली में भी सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है और मुख्तलिफ गांव सेरे आब आ गए हैं। नस्ली भेदभाव को खत्म करने से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए हवालों को भारत ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये इंतहाई शरंगेज हैं, नीज इनके पीछे सियासी मकासद कार फरमा है। नस्ली तासब को खत्म करने से मुतालिक बैनुल अक्वामी कन्वेंशन के 11वें जायजे की आलमी इदारे की इस रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस कमेटी की मीटिंग में तामीरी जज्बे से शिरकत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1960 में इस कमेटी का मुसविदा बनाने और इसकी तैयारी में भारत ने कायदाना रोल अदा किया था और भारत नस्ली भेदभाव और तासुब के खिलाफ जद्दोजहद में गैर मुतजलजल यकीन रखता है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देने पर भारत और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शुक्रिया अदा किया है। सदर मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें यौम आज़ादी के मौके पर वहां के आवाम को मुबारकबाद दी थी। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में अब से कुछ देर पहले श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। भारत ने पहले इनिंग्स में श्रीलंका को 290 रन पर ऑल आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया था। आखिरी दिन के खेल से पहले श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलना शुरू किया और महज 25 रन स्कोर किए। श्रीलंका के ऑलराउंडर सोनल दिनुषा ने लगातार अपनी दूसरी सेंचुरी बनाते हुए 103 रन बनाए। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाति शहरों के तेजी से फरोख और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आम्मा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओनम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा दो रोज के दौरान मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad Eid Milad Unnabi been celebrated in various parts of the country. Heavy rainfall to prevail over eastern and northeastern states for the next 2 days. And in cricket, India asks host Sri Lanka to follow on in the Colombo Test match. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
2: India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's transformation is structural, rapid

0: Gabriel is a tribute to Goa's freedom struggle and seeks to preserve the memory of the sacrifices made during the liberation movement. The memorial will honor the 31 Satyagrahis who were killed by Portuguese soldiers in 1955 while trying to enter Goa with demand for inclusion in India. The India Meteorological Department, IMD, has said that subdued rainfall activity is likely to continue over peninsular India during the next week. Heavy rainfall will prevail over Bihar, Chhattisgarh, eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and northeastern states during the next 2 days. The Met Department has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 6,70,000 cubic of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the hosts managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. And Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun-Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: India today stands as the fastest.
4: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।

0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: India Canada bilateral relations have seen
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
3: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत, माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान

0: जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर, एआईईईए पीजी और एआईसीई पीएचडी 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह

अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz संगीत.com। इस वक्त 2:31:05 गीतों और फिल्मों से जुड़ी कुछ रोचक बातें, किस्से, दास्तां, इस सफर पर संगीत.com के सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड। अंजलि है आपके साथ। दोस्तों, कभी कभी गीत बनने के बाद भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाते, ऐसा आप भी जानते होंगे, सुना भी होगा आपने। जैसे फिल्मों के साथ होता है, आधी शूटिंग के बाद या कुछ हिस्से की शूटिंग के बाद फिल्म डिब्बा बंद हो जाती है, कारण कुछ भी रहा हो। बहुत सारी फिल्म्स हैं जो पूरी बन गई हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पाती पूरी होने के बाद भी। ऐसा ही गीतों के साथ भी रहता है। कई बार किसी गीतकार के द्वारा कई गीत बनाए और सुनाए जाते हैं पर उनमें से सभी गीतों को फिल्म में जगह नहीं मिल पाती। ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर फ्यूचर में उन गीतों को किसी और फिल्म में शामिल करने के लिए रख लेते हैं। है ना मजेदार।

बाद जिस फिल्म के लिए उन्हें लिखा गया वहां ना जगह पाकर किसी और फिल्म में उनका इस्तेमाल हो जाता है। और ऐसे गीतों की भी कमी नहीं जिन्होंने इतिहास रचा। तो कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही अजीज, दिलकश, दिल को छू जाने वाला गीत रेशमा और शेरा फिल्म से, लता जी की आवाज, नीरज की बोल, जयदेव का संगीत।

रेशमा और शेरा फिल्म से लता जी की आवाज में ये मधुर सा गीत आप तक पहुंचा। और ये गीत जब भी सुनो ना, सचमुच सुनते सुनते जैसे किसी और ही दुनिया में हम खो जाते हैं। खैर, गीतकार के अपने मूड और परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है गीत का लिखना। बहुत बार पर्सनल सिचुएशंस पॉजिटिव भी रहती हैं और आपका गीत रचने का एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर देती हैं कि आपकी प्रतिभा, आपकी लेखनी का जो जादू है ना, वो निखर कर सामने आता है। इससे अलग दिग्गज कलाकार भी गीत लिखने में मजबूरी का सामना महसूस करते हैं और जब उनके हालात एक अच्छा पॉजिटिव माहौल उन्हें प्रोवाइड नहीं करते। गाइड फिल्म की एडिटिंग के टाइम भी कई गीतों को फिल्म से हटाया गया जिनकी की फिल्म मेकिंग के दौरान रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। खैर, हालांकि जो भी

गीत फिल्म में रखे गए वो भी फिल्म संगीत के क्लासिक बन गए। फिल्म गाइड से गीत सुन लेते हैं लता जी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत की धुनों से इस गीत को सजाया है एसडी बर्मन साहब ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल संगीत.com का ये सुरमई सफर यहाँ पर पूरा कर रहे हैं हम। कुछ गीत फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं तो कुछ गीतों को फिल्म से हटा दिया जाता है लास्ट मोमेंट में। 1971 की फिल्म आनंद याद होगी आपको, बेहतरीन मूवी, गीत संगीत कहानी अदाकारी सब कुछ लाजवाब। बार बार देखें तब भी मन नहीं भरता इस फिल्म से। फिल्म की कहानी को सटीक करता गीत जिंदगी कैसी है पहली, जानते हैं इस गीत को बाद में जोड़ा गया था फिल्म में। फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी चाहते थे कि फिल्म में जीवन के रहस्य को दर्शाने वाला कोई गीत हो। बस तैयार हो गया, गीतकार योगेश संगीतकार सलील चौधरी ने मिलकर ये बहुत ही मधुर सा और जिंदगी को समझाता गीत तैयार किया और मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज से इसमें जान डाल दी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: किशोर दा, किशोर कुमार, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में देव साहब के लिए आवाज दी, फिल्म रही जिद्दी, गाना भी हिट और फिल्म भी, और बस फिर तो देव साहब के ज्यादा से ज्यादा गानों के लिए उन्होंने ही प्लेबैक सिंगिंग की। मस्त मौला अंदाज के गायक रहे किशोरदा, उनकी गायकी के अलावा उनसे जुड़े किस्सों के लिए भी वो मशहूर रहे। कहा जाता है कि जब तक उनकी पेमेंट फाइनल नहीं हो जाती थी, वो या तो स्टूडियो पहुंचते नहीं थे या फिर स्टूडियो में बार बार गला ही साफ करते रहते थे। पर बेमिसाल आवाज के धनी रहे किशोरदा, उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। ऐसा भी बताया जाता है कि किशोरदा ने अपने घर के बाहर साइन बोर्ड पर लिखवा रखा था, किशोर कुमार से सावधान। अपने उसूलों पर जिंदगी जीने वाले शख्स रहे किशोर कुमार, उनका अतरंगी और बेबाक अंदाज भी लोगों को बेहद पसंद आया।

सुबह पे जिस तरह

अपने अलग ही उसूलों और रुआब में रहे किशोर कुमार, एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर उनके गानों को किसी कारण से बैन कर दिया गया था। एक बार किसी प्रोड्यूसर ने उनकी पेमेंट रोक दी तो बस रोज उन प्रोड्यूसर साहब के घर पहुंच जाया करते थे किशोरदा, और अपने ही स्टाइल में अपनी पेमेंट मांगा करते थे। जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। दरअसल प्रोड्यूसर आरसी तलवार ही थे जिन्होंने किशोर कुमार की कुछ पेमेंट रोक ली थी। तो ऐसे रहे हरफन मौला बेमिसाल गायक किशोर दा यानी किशोर कुमार। तो चलते चलते कटी पतंग फिल्म से उनकी आवाज में आनंद बख्शी के बोल, आरडी मर्मन का संगीत और ये प्यारा सा लाजवाब गीत आप सभी के लिए।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। आकाशवाणी गोल्ड का यह सफर जारी रहेगा और आपके साथ रहेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कनाडा के बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और नियामकों के साथ न केवल भुगतान के क्षेत्र में बल्कि अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को आकार देने में भी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम सहित 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत में कहानी

रहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभा का एक असाधारण भंडार है, जिसका उपयोग सामग्री निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए

0: इसके लिए पंजीकरण कराया है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरु ओणम का पर्व मना रहे हैं। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरल वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। केरलम में आज आधिकारिक आयोजनों सहित बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी भी आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हाँ, 3:11 और ठीक 1 सेकंड मन भावन लेकर देविका हाजिर है। और मन भावन की ईमेल आईडी fmgoldaird@gmail.com है, जहाँ आप अपनी मेल्स हम तक पहुँचा सकते हैं। और वैसे तो बहुत सारी मेल्स हम तक पहुँच ही चुकी हैं, लेकिन मन भावन का आगाज़ हम कर रहे हैं एक ऐसे गीत के साथ जो श्रोताओं की पसंद है और जो मेरी भी पसंद है।

जी हाँ, मन भावन का आगाज़ हमने किया फिल्म आरोप के गीत से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और पहली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, धर्मवीर, दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक से और जालंधर पंजाब से लिखते हैं। और इन्होंने फिल्म शोर के सबसे बेहतरीन गीत की फरमाइश की है।

जी हाँ, शोर का गीत आपने सुना लता जी और मुकेश जी की आवाज़ में। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है दिल्ली से, और कहते हैं पति पत्नी हैं, रश्मि सहगल हैं, राजीव सहगल हैं, और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है अराउंड द वर्ल्ड, और गीत है ये

जी नहीं, फिलहाल ना मैं कहीं जा रही हूँ ना आप कहीं जा रहे हैं। बहुत सारी मेल्स आप लोगों की हम तक पहुँची हैं। फिलहाल आपने गाना सुना था मुकेश और शारदा जी की आवाज़ में, और मेल जो हम तक पहुँची है बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने बहुत सारी फरमाइश हमें की है। कुछ नाम है जो हम लेने जाएंगे। हम तक पहुँचा है सनाबाद से शेख मूसा मोहसिन, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना, और सुदाना नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, सेक्टर मोहाली चंडीगढ़ से, और टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, और भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, और पेटियाला दुर्ग से ये हमें भेजा है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू ने, साथ ही साथ अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, और साथ है रामेकर परिवार। सुन रहे हैं आप मन भावन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

3:32 और ठीक 44 सेकेंड मन भवन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और मन भवन लेकर देविका है आपके साथ और ईमेल आईडी है fmgoldaidelhi@gmail.com जहां आप अपनी मेल हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगली मेल जो हम ले रहे हैं वो हमें भेजी है अपर कोट मोहल्ला चुकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य और साथ ही साथ हमें ईद की मुबारकबाद भी दी है आपको भी। और हम तक जो इन्होंने फरमाइश भेजी है वो भेजी है फिल्म संजोग का ये गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज़। और अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो हमें भेजी है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुक्कू भाविक सिक्का। और इन्होंने तेरी मेहरबानियाँ फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है।

अनुराधा पौडवाल और शबीर कुमार की आवाज़ दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। फिल्म तेरी मेहरबानियाँ का गीत आपने सुना। और अगली फरमाइश लेने से पहले कुछ श्रोता हैं जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। हम तक एसएम जावेद का पहुंचा है, शगुफ्ता अंजुम है साथ में, और झारखंड से लिखते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहाँ आज़ाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से, उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार खयाला से, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन है और कविता गौड़ हैं, शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, और गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी अव्याना कंचव, और इसके साथ अफरोज शेख पता नेमुआ सोपाल बिहार, ये कहते हैं कि ना आप हमारी पसंद का गाना बजाते हैं ना आप हमारा नाम लेते हैं। लीजिए, एक काम तो हमने पूरा कर दिया, आपका नाम ले लिया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, कृष्ण वजनानी, नीलम स्वाति और किंशु नीलम स्वाति, किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार, और होली चौक उत्तर नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। और अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो हमें भेजी है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष, और इन्होंने कहा है ओनम पर्व की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको भी। और हम तक जो फरमाइश आपने भेजी है वो फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये सबसे खूबसूरत गीत।

यार रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आपने सुना मेरे हमदम मेरे दोस्त से। और कुछ श्रोता हैं हमारे, देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे श्रोता हैं जो हमें मेल्स भेजते हैं और एक घंटे के प्रोग्राम में सभी श्रोताओं को शामिल करना तो मुमकिन नहीं होता। और कुछ ऐसे श्रोता हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, जो हमें ये लिख देते हैं कि आपकी कोई नाराज़गी है या हमसे कोई नाराज़गी है, तो खुद सोचिए नाराज़गी क्यों होगी। और कोशिश हम करते हैं कि आप सभी की मेल्स हम शामिल कर पाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ नाम हैं जो अब भी हम शामिल करना चाहेंगे। चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा, विमला अनेजा हैं, और मधुबनी से विजय, प्रियंका, दिविशा, पल्लवी, एकता, और ये थैंक्स हमें लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला नानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। और अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो हमें भेजी है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। और इस गीत की फरमाइश की है, फिल्म है हसीना मान जाएगी।

जी हाँ, फिल्म हसीना मान जाए का गीत आपने सुना और आखिरी फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं भूतराज खोरवाल, कमला लानी और भानु प्रकाश की उत्तम नगर दिल्ली से लिखते हैं और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण।

जी हाँ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ फिल्म रामपुर का लक्ष्मण और मन भावन में आज बस इतना ही। देविका आपसे विदा लेती है, लेकिन आपको बता दी जाती हूँ ठीक 4 बजे होंगे समाचार और 80 और 90 के दशक के गीतों का लुत्फ उठाना है तो 5:10 पे गाते गुनगुनाते जरूर सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार से मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत और तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के अपार अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कनाडा के बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और नियामकों के साथ न केवल भुगतान के क्षेत्र में बल्कि अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को आकार देने में भी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका विषय पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने

जी हाँ, फिल्म सौतन का गीत आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अगला गीत फिल्म 12 o'clock से मोहम्मद रफी और गीता दत्त जी की आवाज़।

0: देख इधर ऐ हसीना, जून का है महीना।
1: हमको बता दें कि थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार, और उसके बाद 4:30 पे पैक्रमा होगा। मैं आपसे मिलूंगी 5:10 पे काते गंगा नाते लेकर।

0: Meal for Group A post in Super Speciality Medical Officers. Second in Command, Level 12, Specialist Medical Officer, Deputy Commandant, Level 11, and Medical Officers, Assistant Commandant, Level 10, in the Central Armed Police Forces, BSF, CRPF, ITBP, SSB, and Assam Rifles. A total of 282 vacancies for Medical Officers, 55 for Specialist Medical Officers, and 25 for Super Specialist Medical Officers are available, with category-wise reservations, including post for ex-servicemen. Application fee is ₹400 for male candidates from UR-OBC-EWS. Female SC-ST and ex-servicemen are exempted. Applications must be submitted online only. You may go on to the website for detailed eligibility instructions and application forms. Candidates must upload a photograph, signature, MBBS, degree and specialized qualification certificates and medical registration certificates while applying. The last date for applications is 8 September 2026. For details, kindly look up the website at www.recruitment.itbppolice.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रशासनिक तकनीकी पुस्तकालय, प्रणाली विश्लेषक, निर्माण विभाग, राजभाषा एवं खेल संवर्ग के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.iitbhu.ac.in तथा iitbhu.ac.in/recruitment। नव मंगलुरु पत्तन प्राधिकरण इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप मुख्य अभियंता सिविल, वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.newmangaloreport.gov.in। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत जानकारी और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.hnbgu.ac.in। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, प्रोजेक्ट क्लर्क ए तथा प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.tifr.res.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। नैदानिक मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद, वरिष्ठ चिकित्सा भौतिक विज्ञानी तथा परफ्यूजनिस्ट। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsmangalagiri.edu.in। सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, पीटीआई सह मैट्रन, बैंड मास्टर संगीत शिक्षक तथा वार्ड बॉय। आवेदन पत्र, भर्ती प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainikschoolambikapur.org.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट को आवश्यकता है चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षण।

0: अभियंता, रजिस्ट्रार, कार्यकारी अभियंता सिविल, कार्यकारी अभियंता विद्युत और वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सभी पदों पर एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड और आवश्यक जानकारी के लिए आप देखिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsrajkot.edu.in। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dtu.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, दोपहर के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ साथ आज हम बात करेंगे केरल के प्रमुख त्योहार ओणम की परंपराओं, संस्कृति और इसके खास रंगों की। यह त्योहार प्रेम, भाईचारे, समानता और खुशियों का संदेश देता है। फूलों की रंगोली, पारंपरिक पकवान और उत्सव का उल्लास इस पर्व को और भी खास बना देते हैं। इसके साथ ही इस पर और बात करेंगे, लेकिन चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या खास रिपोर्ट है। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी को एंकर अनुजा कुमार। आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ ब्लिसफुल एंड ब्लेस्ड ओनम टू यू एंड टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू टुडेज आफ्टरनून मैगजीन। ओनम इज द वाइब्रेंट स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला, सेलिब्रेटिंग द एनुअल होमकमिंग ऑफ द लेजेंडरी बेनेवोलेंट किंग महाबली एंड मार्किंग द जॉयफुल हार्वेस्ट सीजन। फेस्टिवल्स यूनाइट पीपल अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट्स एंड जनरेशंस, एक्टिंग एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ इक्वालिटी and community harmony. Families, friends and neighbors gather to share the festivity, embodying togetherness. Do you believe in this, Karishma? Bilkul, isn't it? Bilkul. We always wait for festivals to come so that we can go and celebrate it with our relatives, with our friends and everyone.
0: Bilkul.
1: Welcoming the tradition, households collaborate to lay intricate, colorful floral carpets at their doorsteps every day of the 10-day festival to lovingly welcome King Mahabali back to his people. And Karishma, it is also Eid Milad Unnabi today, the birthday of Prophet Muhammad, signifying the commemoration of the Prophet's teaching. There is a collective celebration, communities born through synchronized teamwork during the thrilling snake boat races from Onam, as well as we unite the Eid people when they are celebrating Eid, they unite with making of different kind of delicacies at their home and meeting their relatives. In fact, I was invited for an Onam Sadhya also today, but I couldn't go because I had to come to the studio and be with our listeners with a fresh new episode of Parikrama. So ready for it, Karishma, now?
0: Bilkul.
1: Let's start with the news headlines.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटली बुनियादी ढांचे से प्रेरित है।
1: चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता लॉन्चेस दिल्ली लक्ष्मी

0: Yojana hands over approval letters to 2,500 beneficiaries.
1: भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर बल.
0: फेस्टिवल ऑफ ओणम बीइंग सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशनल फर्वर.
1: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.
0: हैवी रेनफॉल टू प्रिवेल ओवर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर नेक्स्ट टू डेज.
1: और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा.
0: And Karishma, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Sarnath's path to the world. Karishma, India has been one of the world's oldest and most diverse cultural heritage, shaped by millennia of history, spiritual evolution, and a blend of numerous traditions. India is a land where the past and present blend in beautiful harmony, from majestic palaces to sacred temples, vibrant festivals to ancient ruins. India's cultural heritage is one of the richest in the world, and that is why we need to preserve them. So heritage is more than a reminder of the past. It shapes the present and guides the future. It reflects the stories, traditions and values that communities preserve and pass on to many generations across. Cultural and natural heritage are irreplaceable sources of identity, knowledge and inspiration. And on the evening of 25th of July 2026, at the 48th session of the World Heritage Committee in Busan, South Korea, the ancient Buddhist site of Sarnath was inscribed on the UNESCO World Heritage List. And with this inscription, India now has 45 World Heritage properties recognized by UNESCO. His recognition is more than a new entry on the World Heritage List. It celebrates India's rich cultural legacy, shaped by diverse traditions, remarkable architecture, and a long history. It also reinforces the spirit of the World Heritage Convention, which seeks to protect places of outstanding universal value for the benefit of present and future generations across 196 states parties.
1: बिल्कुल आपने सही कहा अनुजा, और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है जो दुनिया भर की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान, सुरक्षा और उनका संरक्षण करता है. 1972 के विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तहत मानवता के लिए अहम स्थलों की रक्षा करता है जो मानवता के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं, और विश्व धरोहर स्थल पूरी मानवता के लिए सार्वभौमिक महत्व भी रखते हैं और राष्ट्रीय सीमाओं से ये परे हैं, एक साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनकी देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर सभी पीढ़ियों के लिए सामूहिक रूप से तय की जाती है.
0: एंड टॉकिंग अबाउट सारनाथ, इट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. लोकेटेड इन वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, इट इज वन ऑफ द फोर की साइट्स ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन कवर्स टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स, द चौखंडी स्तूप and the archaeological remains of Sarnath. The archaeological complex includes the Dhamik Stoop, Dharmajika Stoop, Mughla Dhakuti Vihar, the Ashokan Pillar, and the several other ancient remains. And together, they preserve the historic landscape of this ancient site. And known in the Buddhist tradition as Rishipatan, Ishipatan, and Mrigadav, Sarnath is the place where Gautam Buddha delivered his first sermon in the 6th century BC. This sermon, known as Dharma Chakra Pravartan, or the turning of the wheel of the law, marked the beginning of the Buddhist Sangha and the establishment of the principles of noble Eightfold path.
1: और इतना ही नहीं, सदियों के दौरान सारनाथ का विकास शाही, मठवासी और आम लोगों के संरक्षण से हुआ. सारनाथ बौद्ध धर्म का एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था. यहां कई स्तूप, मंदिर और विहार बनाए गए हैं. सारनाथ में बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप, मंदिर और विहार लगभग 16 शताब्दियों तक लगातार विकसित होते रहे और यहाँ के स्मारक तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बताए जाते हैं। 12वीं शताब्दी में आक्रमण और तबाही के कारण इस महान बौद्ध केंद्र का पतन हो गया था और यह स्थल गुमनामी में चला गया था। इसके बाद 18वीं सदी

0: में दोबारा खोजे जाने तक ये गुमनाम ही रहा.
1: And the proposal for its inscription was submitted for consideration by the World Heritage Committee in January 2025. This was followed by an 18-month-long process involving technical meetings with UNESCO's advisory bodies and an evaluation mission to review the worthiness of the proposed property. I mean, this evaluation mission was acting as one of the advisory bodies of the UNESCO, which provides evaluation of cultural and mixed properties proposed for inscription. The process culminated in the historic decision taken at the 48th session of the World Heritage Committee in Busan, South Korea.
0: सारनाथ की प्राचीन बौद्ध जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्राइटेरिया 3 और 4 के आधार पर शामिल किया गया था. क्राइटेरिया 3 सारनाथ के उस स्थायी आध्यात्मिक महत्व को मान्यता देता है जो बौद्ध तीर्थ यात्रा के 4 मुख्य स्थलों में से एक होने के नाते है. यह बात सदियों से इस जगह पर बनी और दोबारा बनाई गई कई धार्मिक इमारतों और स्मारकों से भी झलकती है. क्राइटेरिया अगर हम 4 की बात करें तो सारनाथ के उस सीधे और ठोस संबंध को मान्यता भी देता है जो बुद्ध के जीवन की उन घटनाओं से जुड़ा है जिनका बौद्ध समुदाय के लिए बहुत महत्व माना जाता है. इनमें उनका पहला उपदेश और बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले शिष्यों से उनकी मुलाकात शामिल है और सदियों से सारनाथ में बनी कई संरचनाएं इन घटनाओं, बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्न की अवधारणा के निरंतर महत्व को भी दर्शाती हैं. यह नामांकन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के व्यापक उपदेश को भी दर्शाता है.
1: In fact, Sarnath is far more than an archaeological site. It remains a global pilgrimage destination for Buddhists from Japan, Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, South Korea, Cambodia, Mongolia, and many other countries. As one of the world's most revered Buddhist pilgrimage centers, it reinforces India's identity as the birthplace of Buddhism and serves as a bridge for cultural ties and international engagement with Buddhist nations.
0: सारनाथ के शामिल होने के साथ बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 मुख्य बौद्ध तीर्थ स्थलों में से 3 अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं. ये हैं नेपाल में लुम्बिनी, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर और उत्तर प्रदेश में सारनाथ. ये अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हो गए हैं जिनमें भारत में सांची, नालंदा और अजंता, श्रीलंका में अनुराधापुरा, बांग्लादेश में पहाड़पुर और आज के पाकिस्तान में तक्षशिला और तख्त ए बाही शामिल हैं.
1: And the recognition also reaffirms India's commitment to protect Sarnath's outstanding universal value. The government will manage tourism sustainably and prevent unplanned development within the buffer zone to preserve the site's authenticity and integrity for future generations. Our heritage is not just built of stones, scripts or ruins. It lives in every whisper of a temple wall, every carving on ancient forts, and every folk song passed down through generations. It tells us the story of India's civilization and reflects the country's rich cultural and natural legacy. So say that Indian cultural heritage is vibrant and can astonish travelers from other countries. India is one of the ancient civilizations in the world, as I said earlier, but people belong to diverse communities having different beliefs and cultures and celebrate various festivals. It is the responsibility of every person to contribute to the conservation of such heritage sites.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष रिपोर्ट्स हैं।
1: And to start with, we take you all to Kolkata, where Akashvani Kolkata today stepped into its centenary year, marking a historic milestone in the history of broadcasting in Bengal. The station began its first official Bengali broadcast on the 26th of August 1927, and over the past 100 years has become an integral part of Bengal's cultural and social life. We have more on this from a correspondent from Kolkata.
2: Akashvani Kolkata today stepped into its centenary year, marking a historic milestone in the history of broadcasting in Bengal. The station began its first official Bengali broadcast on 26th August 1927, and over the past 100 years has become an integral part of Bengal's cultural and social life. Through news, music, literature, drama, education and public service programs, it has connected generations of listeners and contributed significantly to public discourse. Its role during the Bangladesh Liberation War remains an important chapter in its history. Known for its rich

और इसके साथ ही आज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री की जयंती है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक घटनाओं और भारतीय संस्कृति को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। उनके लेखन में इतिहास, समाज, धर्म और मानवीय संवेदनाओं की गहरी झलक मिलती थी। उन्होंने उपन्यास के साथ साथ कहानियों और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से जुड़े

0: और इसके साथ ही आज भारत के मशहूर निशानेबाज जीतू राय का जन्मदिन है। उन्होंने निशानेबाजी में अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। और जीतू राय ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में कई बड़ी प्रतियोगिताएं जीती थी, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया और उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अनुजा कुमार को।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और ट्रैवल एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। इधर बिहार में नेपाल में आई अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ के कारण हुई जानहानि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत और तेजी से विकसित हो रही पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के अपार अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती सीतारमण ने ये बात कही।
2: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
2: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना

अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:11 और ठीक 2 सेकंड देविका हाजिर है लेकर गाते गुनगुनाते शाम का ये खूबसूरत वक्त, जब दिन की भाग दौड़ थमने लगती है, हवाओं में ठंडक घुलने लगती है और दिल थोड़ा सा सुकून ढूंढने लगता है ना। कभी किसी की याद मुस्कुरा देती है, कभी कोई पुराना गीत दिल को छू जाता है और कभी यूं ही बिना किसी वजह के दिल में दिल लगी सी होने लगती है। तो आज की इस प्यारी शाम को बनाते हैं थोड़ा सा और खास, कुछ मीठी बातें, कुछ किस्से, कुछ खूबसूरत नगमे और ढेर सारी दिल लगी। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि ये शाम अभी बाकी है और किस्से भी बहुत बाकी हैं।

जी हाँ, फिल्म दिल लगी का गीत आपने सुना, जावेद अख्तर साहब के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, और इस गीत को बहुत सारे दिग्गज गायक और गायिकाओं ने गाया था। अभिजीत, अलका याग्निक, जसपिंदर नरूला, कविता कृष्णमूर्ति, महालक्ष्मी अय्यर, शान, शंकर महादेवन, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और उदित नारायण ने। सुन रहे हैं आप गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, हम अक्सर अपने जीवन में बड़ी खुशियों की तलाश करते हैं, बड़ी सफलता, बड़ा घर, बड़ा पहचान, और लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की असली खुशबू कहाँ छिपी होती है? वो छिपी होती है एक मुस्कान में, किसी के दुख में उसके साथ खड़े होने में, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने में, और सबसे बढ़कर दूसरों के जीवन में थोड़ी सी खुशी बांटने में, है ना? एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज अपने घर के बाहर पानी का घड़ा रखता था। राहगीर आते, पानी पीते और आगे बढ़ जाते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि बाबा, आपको इससे क्या मिलता है, आप रोज इतना पानी क्यों भरते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्यासे को पानी देने के बाद उसके चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है, वही मेरे जीवन की खुशबू है। कितनी सरल बात है, लेकिन शायद जीवन का सबसे बड़ा सच ये भी है। हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और अर्थपूर्ण होगी ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। किसी को हिम्मत दीजिए, किसी की बात ध्यान से सुनिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, और अगर संभव हो तो किसी के जीवन के वह व्यक्ति बन जाइए जिसे याद करके

0: जी हाँ, प्रोग्राम गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप, और गाते गुनगुनाते की जो नगमे है उसकी खुशबू आप तक पहुंच रही है, पता है हमें। फिलहाल किसी से ना कहना का गीत आपने सुना, योगेश गौड़ के बोल, बपी लहरी का संगीत और आवाज आशा भोसले जी की।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड और प्रोग्राम है गाते गुनगुनाते और देविका है आपके साथ। श्रोताओं, एक बार गीतकार गुलशन बावरा कश्मीर के निजी दौरे पर गए और वहां उन्होंने दो कश्मीरियों को आपस में बात करते सुना। एक कह रहा था वार इशू, दूसरे ने जवाब में कहा खैर इशू, और इसी वार्तालाप को एक गाने का जन्म दिया और ये गाना था 1981 की फिल्म हर जाय का। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इस नगमे को गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

5:23 और ठीक 1 सेकेंड। जी हाँ, गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना परेशान कर देती है कि हम जीना नहीं बस दिन काटना सीख जाते हैं। सुबह होती है, काम शुरू होता है, शाम आती है और फिर वही सवाल, आखिर इन सब में खुशी कहाँ है। लेकिन ज़िंदगी शायद उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम उसे समझ लेते हैं। कभी किसी अपने की मुस्कान में, कभी चाय की पहली चुस्की में, कभी बारिश की बूंदों में और कभी अकेले बैठकर खुद से की गई छोटी सी बातचीत में भी ज़िंदगी छुपी होती है। हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं, बड़ी सफलता, बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, और इसी इंतज़ार में छोटी छोटी खुशियों को जीना भूल जाते हैं। ज़िंदगी से प्यार करने के लिए ज़िंदगी का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो बस इतना कि हम उसकी कमियों के बीच भी खूबसूरती ढूंढना सीखें। जो खो गया उसे हमेशा वापस नहीं पाया जा सकता, लेकिन जो आज हमारे पास है उसे महसूस ज़रूर किया जा सकता है। तो आज कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को किनारे रखिए, खुद को एक मौका दीजिए, खिड़की खोलिए, चाहे गाड़ी की हो, चाहे आपके घर की हो, खुली हवा में सांस लीजिए और खुद से कहिए, हाँ मेरी ज़िंदगी जैसी भी है मेरी है और मैं इसे पूरे दिल से जीऊँगा।

0: फिल्म सातवां आसमान का गीत आपने सुना, सूरज सनीम साहब के बोल राल लक्ष्मण का संगीत और आवाज लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: श्रोताओं, सुप्रसिद्ध नाटककार हबीब तनवर आज भी अपने नाटकों के लिए जाने

जाते हैं, जिसमें आगरा बाजार, चरणदास चोर आदि शामिल हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तनवीर साहब ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जिसमें 1991 की फिल्म प्रहार शामिल है। इसी फिल्म का एक दिलकश नगमा हम आपको सुना रहे हैं। जी हाँ, और इस नगमे की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इस नगमे को सुरेश वाडकर के साथ। एक और विशेषता है इस नगमे की, किसके छायांकन में जिसने वॉयलिन बजाया है वो है संगीत निर्देशक आदेश श्रीवास्तव।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, गाते गुनगुनाते और देविका है आपके साथ। श्रोताओं, कहते हैं प्यार आंखों से शुरू होता है, लेकिन क्या प्यार सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे से होता है? कभी किसी चेहरे की मुस्कान आपको सुकून देती है, कभी किसी की आंखों में अपना सा अपनापन दिखाई देता है, और कभी कोई साधारण सा चेहरा वक्त के साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा बन जाता है। क्योंकि प्यार में चेहरा नहीं बदलता, चेहरे को देखने का नजरिया बदल जाता है। शायद इसलिए जब हमें किसी से सच्चा प्यार होता है तो उसकी छोटी सी मुस्कान भी खास लगने लगती है, उसकी आवाज में भी मिठास सुनाई देती है और उसके चेहरे की हर कमी हमें खूबसूरत लगने लगती है। तो अगली बार जब आईने में खुद को देखें तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, उस चेहरे के पीछे छिपी अपनी कहानी भी देखिए।

0: जी हाँ, फिल्म प्यार के काबिल का गीत आपने सुना। इंदिवर साहब के बोल, बप्पी लहरी का संगीत और आवाज थी किशोर कुमार साहब की।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव।

0: पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: के 54 मिनट और ठीक 45 सेकेंड। जी हाँ, गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और पता ही नहीं चला श्रोताओं कि खूबसूरत सफ़र कब गुजर गया, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मुस्कान की वजह है, तो उसे अपनी ज़िंदगी में होने का एहसास ज़रूर कराइए, क्योंकि प्यार का सबसे खूबसूरत हिस्सा सिर्फ प्यार करना नहीं बल्कि प्यार का एहसास दिलाना भी है। और अगर आपकी मोहब्बत अधूरी है तो उदास भी मत होइए। कुछ कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर याद रहने के लिए होती हैं। जी हाँ, देविका आपसे इजाज़त लेती है, लेकिन मैं आपको छोड़े जा रही हूँ एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म मैंने प्यार किया का गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779709107500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026

0: End this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज के कार्यक्रम का विषय है ई श्रम पोर्टल के 5 वर्ष, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार। भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल हैं। इन श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। आज 26 अगस्त 2026 को ई श्रम पोर्टल अपने 5 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 5 वर्षों में ये केवल श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने वाला पोर्टल नहीं रहा, बल्कि रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। अब तक ई श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें 54.28% महिलाएं और 45.72% पुरुष हैं। तो ई श्रम पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी, इसने असंगठित श्रमिकों के लिए क्या बदलाव किए हैं और आने वाले समय में ये सामाजिक सुरक्षा के पूरे तंत्र को किस तरह मजबूत कर सकता है, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
3: भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है और उनका काम भी अलग अलग तरह का है। कोई कृषि मजदूर है, कोई निर्माण कार्य करता है, कोई घरेलू कामगार है तो कोई सड़क किनारे सामान बेचता है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर भी इस व्यापक श्रेणी का हिस्सा है। इन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और उनके बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा विकसित ई श्रम पोर्टल ने देश का पहला आधार प्रमाणित नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया। पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले प्रत्येक श्रमिक को 1/12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN दिया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है अलग मंत्रालयों और विभागों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ना और पात्र श्रमिकों तक उनका लाभ पहुंचाना। इसका मतलब है कि श्रमिक जब एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाता है तो उसके सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है। ई श्रम पोर्टल का विस्तार केवल रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहा। 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। वन स्टॉप सॉल्यूशन पर 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाएं शामिल हैं। ई श्रम रजिस्ट्रेंट पोर्टल के माध्यम से PMSBY और PMJJBY में भी नामांकन कर सकते हैं। PMSBY के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए और अधिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलता है। वहीं PMJJBY के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। ई श्रम पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस यानी NCS से भी जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच मिलती है। माई स्कीम के जरिए श्रमिक अपने लिए पात्र सरकारी योजनाओं की पहचान भी कर सकते हैं। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ई श्रम पोर्टल के 5 वर्षों में इसकी पहुंच लगातार बढ़ी है। 18 अगस्त 2026 तक पोर्टल पर 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 54.28% है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 45.72% है। उम्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो 55.21% रजिस्टर्ड श्रमिक 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं। वहीं 24.18% 40 से 50 वर्ष और 20.5 53%, 50 वर्ष से अधिक

0: यू के हैं। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी 0.08% है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
1: 31 करोड़ 89 लाख रजिस्ट्रेशन, देश के असंगठित श्रमिकों तक बढ़ती पहुंच, ई श्रम पोर्टल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है इसका व्यापक कवरेज। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रमिकों में सबसे अधिक संख्या कृषि, घरेलू और हाउस होल्ड वर्क, निर्माण तथा परिधान से जुड़े श्रमिकों की है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के तरीके में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सबसे प्रमुख माध्यम रहे हैं। इसके बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्थान है। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते वो इनकम टैक्स पेयर ना हो और EPFO या ESIC का सदस्य ना हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना बेहतर है। श्रमिक खुद ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या स्टेट सेवा केंद्र से भी मदद ली जा सकती है। राज्य सरकार के फील्ड अधिकारी भी जिला और उप जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन में सहायता करते हैं। ये डेटा भविष्य में इन श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय तैयार करने तथा लागू करने में मदद कर सकता है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी पोर्टल में परिवार की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। वहीं निर्माण श्रमिकों का डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने की सुविधा है। इससे उन्हें संबंधित बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी BOCW बोर्ड्स में रजिस्टर करने में मदद मिल सकती है। इस तरह ई श्रम का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि कितने श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार, कौशल, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना भी है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: ई श्रम पोर्टल ने 5 वर्षों में एक बड़े राष्ट्रीय डेटाबेस का रूप ले लिया है। 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं। लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता केवल उसके आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वो लोगों को वास्तविक सेवाओं और लाभों से कितनी आसानी से जोड़ पाता है। ई श्रम को इसी दिशा में एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
2: 5 वर्ष पूरे होने के साथ ई श्रम पोर्टल भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के डिजिटल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सेवाओं और योजनाओं को जोड़ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके साथ रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन की सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। इसका उद्देश्य यह है कि श्रमिक को अलग अलग सरकारी पोर्टल पर जाने की जरूरत कम हो और वह एक ही स्थान से अपने उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर श्रमिक अपनी उपलब्ध योजनाओं की जानकारी देख सकते हैं और पहले से प्राप्त लाभों को भी देख सकते हैं। पेंशन के लिए पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना से जुड़ सकते हैं, जिसमें पात्रता के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। ई श्रम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रवासी श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के लिए बेहतर समन्वय। ई श्रम का उद्देश्य इसी तरह एक ऐसे डिजिटल सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान हो, उनकी जरूरतों को समझा जा सके और उन्हें उपलब्ध सरकारी सहायता तक आसानी से पहुँचाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ई श्रम ने एक श्रमिक रजिस्ट्री से आगे बढ़कर वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन का रूप लिया है, जहां सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन से जुड़ी सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया है। आने वाले समय में रजिस्टर्ड श्रमिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना, नए नए श्रमिकों को जोड़ना, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसी नई श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना और डेटा के आधार पर बेहतर नीतियां बनाना महत्वपूर्ण होगा। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए एक समावेशी और तकनीक आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,250। Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स लगभग 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 24,250 से नीचे बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा में भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का कायाकल्प ढांचागत है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी।
0: An important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 183 अंक यानी 0.24% गिरकर 77,473 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 127 अंक यानी 0.52% लुढ़ककर 24,208 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में मामूली बदलाव से 0.1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.8% का उछाल देखा गया। इससे पहले बाजार की शुरुआत मिली जुली रही और शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे चला बिकवाली का दबाव बढ़ता गया, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट में आ गए। सत्र के उत्तरार्ध में तेज गिरावट से सूचकांक में और भी नुकसान देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 183 points or 0.24% to close at 77,473. The Nifty lost 127 points or 0.52% to settle at 24,208. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index dipped 0.1%, while the Small-Cap 100 index rose 0.8%. Earlier, the markets opened on a mixed note and traded with modest gains. However, as the session progressed, selling pressure intensified, dragging both benchmark indices into negative territory. The decline gathered momentum during the latter part of the session, with the indices extending their losses and eventually closing to their respective day's low levels.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल 1.9%, लार्सन एंड टूब्रो में 1.8% और पावर ग्रिड 1.5% नीचे आया। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.9% और एक्सिस बैंक में 1.3% की तेजी दर्ज हुई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 16 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, telecommunication lost 1.3%, IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. In contrast, metal as well as commodities rose 1.4%, PSU bank increased 0.8% and financial services added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,330 companies advanced, shares of 1,990 companies declined, whereas shares of 220 companies remained unchanged.
1: ईद-ए-मिलाद के अवकाश के कारण आज भारतीय मुद्रा

0: बाजार बंद रहा। पिछले सत्र में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 95.41 रुपए पर बंद हुआ। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकाश जी, इस पूरे महीने अगर अभी तक का सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार देखें तो हम देख सकते हैं कि गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। क्या कारण रहे जो इसे महज मुनाफा वसूली माना जाए या FIS या DIS ने हाथ खींच लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादा गिर सकता था लेकिन DIS ने कई मौकों पर हाथ लगाया है, संभाला है मार्केट को?
1: चलो बात करते हैं आज की, आज से शुरुआत करते हैं।
0: जी,
1: आज के जो हेडलाइन नंबर्स हैं, जो इंडाइसिस हैं, नीचे गिरे हुए हैं
0: जी।
1: लेकिन आपने अपने दोनों ने रीड आउट्स में पढ़ा कि जो ब्रॉडर मार्केट है उन दोनों में, फॉर इंस्टेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम डेटा देखें तो उसमें 1966 शेयर्स एडवांस हुए हैं और उसके मुकाबले में 1548 शेयर्स डिक्लाइन हुए
0: जी।
1: तो क्या क्या एक माहौल है। और जबकि आपका NSE जो इंडेक्स है, NSE निफ्टी 50, वो डाउन हुआ है 127 पॉइंट से
0: जी।
1: और ब्रॉडर मार्केट आपको ग्रीन दिखा रही है
0: जी।
1: तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, बड़ा रुचि वाला फेज है। और जो बड़े शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप्स शेयर्स हैं, जो निफ्टी 50 में आते हैं या सेंसेक्स में आते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई होगी। लेकिन जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, कुछ सेक्टोरल हैं, उनमें ये जाहिर हो रही है आज की बात कि अब बात करते हैं जो आपने पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करी। ये बात बिल्कुल सच है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने यहाँ से बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थोड़ी थमी है, अभी हल्का फुल्का ग्रीन ग्रीन कभी दिखता है उनका, और ये बात सच है। उसके कई ग्लोबल रीजंस हैं, हमारी वैल्यूएशन भी उनको महंगी लगती है, और कुछ AI का प्ले जिसको बोलते हैं कि हमारे जो IT स्टॉक्स हैं, AI इस टाइम उसमें चलन में है, पूरे संसार में AI में चलन है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है। और उसकी जो AI की वैल्यू चेन है, जिसमें जिनको एक बोलते हैं हाइपर स्केलर्स, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कमिट किए हुए हैं, फिर उन उसी वैल्यू चेन में आता है चिप मेकर्स, फिर उसी वैल्यू चेन में आगे प्राइवेट इक्विटी। तो ये सारा AI का जो प्ले है, उस प्ले को कहीं ना कहीं हमारे इंडियन IT सिस्टम के अपोजिट में रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा इंप्रेशन किया जा रहा है हमारा इंडियन IT सिस्टम उसका एज इफ पार्ट नहीं है
0: जी।
1: तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन अब क्या है कि कंसर्न्स आ रही हैं AI के इन्वेस्टमेंट को लेके, वहाँ का जो शेयर होल्डर्स है बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी उनको क्वेश्चन, उनके दिमाग में एक तरह का डाउट आ रहा है कि जो इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी उसमें कमिट कर रही हैं, उसका रिटर्न हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक तरह का भय का वो माहौल बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि AI कोई ख़त्म हो जाए, AI इज़ हेयर टू स्टे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक सा फेज है, वी हैव टू लिव विद इट।
0: आपने वैल्यूएशन की बात की, तो क्या भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय है?
1: चिंता की बात नहीं है, एक चीज महंगी सस्ती की बात होती है। मान लीजिए हमारा एक मोमेंटम है, हमारे शेयर्स अभी भी, हमारे शेयर्स कई ऐसे हैं जो 100 PE पे मिल रहे हैं
0: जी।
1: अब कोई आदमी 100 PE पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक तो होता भाव में जब आप चलते हैं, मोमेंटम इतना बढ़ जाता है तो उसमें भाव में जब आप फंस जाते हैं,
0: भावनाओं में बहना,
1: हाँ, तो ये अच्छा नहीं होता। तो वो अपना एक उनका एक प्रूडेंशियल सिस्टम है, तो उसमें नहीं बैठते तो नहीं बैठते, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
2: प्रकाश जी, वी हैव सीन दैट द मार्केट्स हैव बीन रिएक्टिंग अ लॉट टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, स्पेशली टू द यू नो द मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट international crude oil prices have eased to a certain extent, we still see that the markets did not react to that. Markets, you know, normally when that happens, markets react a little positively to the sliding, you know, to the decline in the international crude oil prices. But that's not happened right now. Do you think that's also because to do with the fact that investors and markets overall are still a little wary of the situation between US and Iran, or the continuing stalemate between the two sides, and therefore the decline in or the slide in international crude oil prices is not really reflecting in a positive movement in the markets?
1: Well, definitely there's the situation in the Middle East continues to remain volatile, and you talked about the crude oil prices. Crude oil prices also continue

0: remained volatile. It's right. Only today that you see a slight dip in the crude oil price in the benchmark below 90, and then immediately you see the result in the market, especially our market. And whenever you have this situation where crude oil prices soften, rupee improves against dollar for logical reasons.
1: Yes,
0: right. So the situation in the Middle East continues to remain highly unpredictable, volatile, and then leading to other geopolitical and geoeconomic. You have this tariff wall war, and the tariff wall. Somebody wants to erect a tariff wall, the other wants to break it.
1: Yes.
0: So you have this situation which is not very conducive for the investment climate, so to speak.
1: Yeah. So if you look at these sectoral indices on the BSE today, we see that IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. Again, I'll come back to geopolitical situation. We have the US for now has paused, you know, put a pause on the release release of the visa. They have the US has now paused the visas across all sections. And for Indian markets or for India, you know, all those IT sector is a big earner. So do you think that the slide that we're seeing in the IT sector today, if we talk about the sectoral indices, is to do with the fact that the US has right now put a pause on visa appointments?
0: Isle, when it comes to IT, IT sector anyways had remained under pressure.
1: Okay.
0: Yeah. For various reasons, right? And several of the IT stocks are available even today at a very attractive price to earning ratio. Sometime you might say mouth watering kind of valuation. But when it comes to today's movement of IT stocks, I think it's I'll agree with you. It's a knee-jerk reaction to this very stringent kind of measures being initiated by the US, because after all our entire IT paradigm is based on H-1B visas and, you know, movement of people, movement of, so naturally it's a knee-jerk reaction. It remains to be seen how it plays out. Hopefully things should clear out in a few days.
2: और प्रकाश जी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है, आपको क्या लगता है कि ये मार्केट को मजबूती दे रहे हैं ऐसे समय में जब तमाम बैंकिंग की जो प्रणालियां हैं उन पर भरोसा करें या ना करें, ये भी बात आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो हम अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने जितना बैंकिंग में एस्टेब्लिशमेंट किया है वो सपोर्ट कर रहा है?
0: देखिए, हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है बहुत अच्छी सिचुएशन में है, उनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी है। और जहाँ तक ये सवाल है कि डे टू डे मूवमेंट का, हमारी जो इंडियन बैंकिंग है पूरा, नॉट ओनली बैंकिंग द एंटायर फाइनेंशियल
2: इंस्टीट्यूशन
0: सिस्टम, एनबीएफसीज कंपनीज जो हैं, कुछ अच्छी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज बड़ा अच्छा कर रही हैं। और जहाँ तक डे टू डे मूवमेंट का सवाल है, जैसे अनुभा जी ने जिक्र किया कि क्रूड ऑयल का, जैसे ही क्रूड ऑयल में मूवमेंट आती है इवन बैंकिंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात होती है तो बैंकिंग में उसका असर पड़ता है। तो ये है, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हमारा बड़ी अच्छी हेल्थ में है। हमारा जो एनपीए सिचुएशन है, जो नॉन परफॉर्मिंग, बड़ी वेल विद इन कंट्रोल है। और अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, मझोले बैंक्स हों, छोटे बैंक्स हों, कोई दिक्कत नहीं है। वही एक सेक्टर है विच इज़ वेरी गुड।
2: आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन अभी बन रही है, ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ये कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं?
0: ये चीज़ें माने,
2: मतलब कहने का कि हमारी जो जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं क्रूड ऑयल से लेकर के, क्रूड ऑयल की
0: हमारी इकोनॉमी के लिए कितना,
2: जी हाँ, क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जो भी चीजें हम देख रहे हैं इनको अगर आप थोड़ा सा मिक्स करें तो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सॉफ्टन हुए हैं, अभी भी 90 के आसपास हैं, हमारे लिए वो अच्छी चीज नहीं है। हम चाहेंगे ये 80 के नीचे आए, 80 के नीचे आए, 75 पे आए, तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे को हमारी एनर्जी पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है ना,
2: राइट।

0: yesterday, supported by a rally in chip stocks and easing bond yields. The Nasdaq Composite rose 0.7%, while the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average gained 0.3% each. Meanwhile, markets await tonight's personal consumption expenditures report, which is expected to provide further clarity on inflationary trends. Prakashji, later in the day, there are a few things that are going to happen in the U.S. You know, they're expecting the personal consumption expenditures report, which is the U.S. Fed's preferred, reading for gauging
1: our equivalent of CPI.
0: Yes. And then there is a very important, very major chip making company, which is going to come out with its quarter two results. And also the Jackson Hole, there's a U.S. Fed symposium, which is going to begin from tomorrow. So all eyes are, you know, the investors, I think, are now looking at these three things to figure out what is going to happen, how the U.S. economy is going to go forward, and what are the signals and messages that are going to come out of Jackson Hole.
1: Let's start with Jackson Hole.
0: Okay.
1: So Jackson Hole, Kevin Warsh's speech is going to take place on Friday.
0: Yes.
1: And no policy announcement is expected. Yes. Doesn't happen that way.
0: But people still look for signals and messages.
1: Yes. Signals. Since it is, I think, it's his first Jackson Hole meeting after he took over as the Fed chair. Knowing so far his nature, people don't expect that he'll come out so clear. Mm. Even in the markets would like him to come clear, in a clear communication as to what is going to be his policy, whether he's going to go for a rate hike.
0: Yeah.
1: And that's very important. Because market wants to know whether you are going to go for a rate hike or not.
0: Right.
1: And the rate hike would also depend on the inflation data, which you referred to right away, that it's going to come out anytime soon. And the third thing you talked about, Nvidia's results, isn't it? Now, Nvidia is a huge company, and either way, it's going to be interesting for Indian stock market.
0: Right. Let's move on to another story. Canada has imposed counter tariffs of up to 50% on U.S. goods worth $27.6 billion after suspending trade negotiations with Washington. The counter tariffs will take effect on September 8th and cover steel, dairy products, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, electronics and other goods. The Canadian tariffs will be set at 15%, 25% and 50%, matching the corresponding U.S. rate for each product, targeted under American Section 338 and Section 232 tariffs. Ottawa has also unveiled a $7.5 billion support package for workers and businesses affected by the escalating trade dispute. A very quick comment from you, Prakashji, on this. Although this is, like we were discussing earlier, the trade war is essentially between the U.S. and Canada. And Canada is the biggest trading partner. Canada's biggest trading partner is the U.S. But do you see this trade war affecting the rest of the economies and spilling over some spillover effect?
1: Well, it sends signals. The way Canada is handling this situation, and it also then you have also with the kind of next month Xi and Trump are going to meet again. So it sends signals as to what kind of economic scenario is unfolding before us, and then accordingly countries after countries need to put up their strategies together.
2: ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने होर्मुज जल डमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों के यातायात के प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की. ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद भी ये जलमार्ग बाधित है. एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे का प्रावधान और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक स्थायी जहाजरानी गलियारे की शुरुआत और होर्मुज के प्रशासनिक भविष्य के लिए किसी समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से तकनीकी मुद्दों के साथ वार्ता जारी रखेंगे. इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबावादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं. ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और ओमान अगले 30 से 60 दिन तक एक नए स्थायी और टिकाऊ जलमार्ग पर सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे. होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा शुरू करने के अमेरिका के प्रयासों के ओमान के हस्तक्षेप की स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओमान पर बम गिराने की धमकी देने के बाद यह बैठक हुई है. इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी?
1: जैसे मैंने अनुभा जी से जिक्र किया, सिचुएशन अभी को क्लियर नहीं है मिडल ईस्ट में, और क्लियर नहीं है तो ये एंग्जायटी का कारण तो है ही सही. तेल आज 90 के आसपास थोड़ा सॉफन हुआ, कल कैसे होगा किसी को मालूम नहीं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये डील हो जाए। ओमान, ईरान और अमेरिका देख रहा है इसको आपस में, ताकि हमारा जो पूरे विश्व को इससे फ़ायदा है और थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बढ़ाना कुछ ख़राब सा हो रखा है पिछले कई महीनों से, जब से ये
2: ऑलमोस्ट छः महीने
1: हो गए। तो इसलिए लेट्स होप कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, और ये सब के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आ रही है, ये मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री सफ़र कर रहे हैं, हमारे भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और तेल का भाव जब बढ़ता है तो जाहिर है दिक्कत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से निकले।
2: जी
0: Prakash, you are saying that of course everybody expects some kind of a positive outcome from this meeting, but again, as we were discussing, it's still a very fluid situation what is happening in West Asia for everyone. But do you think that's kind of this fact that Iran and Oman have decided to have some kind of a phased approach and discussions on the opening of Strait of Hormuz, it's I would say a silver lining, would you call it that?
1: Well, I would tend to agree with you to some extent, because Iran and Oman cannot do anything independent of the US.
0: Okay.
1: US, there's a huge pressure on the US administration or the US government, Trump government, because of the midterm elections there.
0: Uh-huh.
1: People are suffering.
0: Yes.
1: Because of inflation. Interest rates are really shooting through the roof. The bond yields, which represent the cost of borrowing, is crossing two decades high.
0: Yes.
1: So those economic pressures, I hope, would force the countries in the conflict to see sense, so that an amicable solution is hammered out of the Hormuz.
0: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell to a 2-week low as renewed talks between Iran and Oman raised hopes that the Strait of Hormuz could be reopened. Brent crude was trading 2.7% down at $86.20 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% lower at $80.18 per barrel when reports last came in.
2: सराफा बाजार में सोना 0.4% गिरकर 161,337 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी आधा प्रतिशत बढ़कर 242,959 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। प्रकाश जी, एक रुख हम देख रहे हैं, कभी गोल्ड का दाम बढ़ता है तो सिल्वर का नीचे आता है, सिल्वर अगर नीचे आता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अगर नीचे आता है सिल्वर ऊपर जाता है, ये ट्रेंड देख रहे हो। साथ में एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आने वाली जो आरबीआई की मौद्रिक नीति की जो भी बैठक होगी, उसमें क्या आरबीआई के लिए चिंता का विषय हो सकता है तमाम चीजें वैश्विक घटनाक्रम को, और जो देख रहे हैं कि कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ जिनमें शुगर वगैरह भी शामिल हैं?
1: आरबीआई की मीटिंग तो अभी दूर है
2: जी,
1: लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 10 दिन में बड़ा पॉजिटिव है
2: जी,
1: और पूरे वर्ल्ड में दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हो गया है। और जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, एनर्जी यूसेज उसका काफ़ी रहता है, तो गोल्ड का जो है पॉजिटिव है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अभी और काफ़ी रन बाकी है, और भी थोड़ा सा मजबूती आ सकती है। तो ये तो हुआ गोल्ड का, और जहाँ तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई हर चीज़ का जायज़ा लेता है, क्योंकि जो वैश्विक कारण है वो तो बड़े इम्पोर्टेंट हो चले हैं ना, हम जो आजकल चल रहा है उसको तो इग्नोर करके आप चल ही नहीं सकते ना, ये दिक्कत।
2: तो प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया।
0: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,250। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एड्रेसेस लीडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इन कनाडा, सेज इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चरल ड्रिवन बाय रैपिड अर्बनाइजेशन एंड वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सटेंड डाउनवर्ड स्लाइड। And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है।

0: सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 6 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा शामिल थी। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों से जुड़ी हैं और 9 राज्यों में चल रही हैं। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस बैठक के महत्व, नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े अन्य मुद्दों को समझेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते
1: प्रफुल्ल जी। कल की बैठक में चर्चा जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर हुई, उन पर बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म असल में है क्या और इसका क्या महत्व है।
2: एक अनूठा प्रयास है कि जो भी विकास की परियोजनाएं बनती है, बहुत बार ऐसा होता है कि विकास की परियोजनाएं बनती तो जरूर है, लेकिन उसका यदि ठीक से रिव्यू नहीं हुआ, उसका फॉलोअप नहीं हुआ, तो बहुत बार योजना अच्छी होने के बाद भी उसका प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दिखता है। इसलिए प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये प्लेटफॉर्म, आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया था। ये मल्टी मॉडल सिस्टम है, एक साथ बहुत सारे चीजों को आप दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। और खास करके जो डिलेड प्रोजेक्ट्स थे उस समय के, उसमें बहुत सारा उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया गया और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, डैम से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, जो लिंगरिंग ऑन थे अनेक वर्षों से, दशकों से, उनको इस माध्यम से। तो ये बेसिकली डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इन सब का एक तरीके से इंटीग्रेशन है। इसमें स्टेट के सेक्रेटरी, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संबंधित अधिकारी, ये सब उसमें जुड़ सकते हैं। तो समन्वय की एक भूमिका और समय समय पर विकास की परियोजनाओं को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए प्रगति, प्रोग्रेस, जिसको अंग्रेजी में इस एब्रिविएशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उस प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने में अक्सर एक आम शिकायत उनके पूरा होने में देरी की रही है, और जब हम प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो कभी कभी उनमें गुणवत्ता से समझौता हो जाता है। और शायद यही वजह है कि कल जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि रफ्तार और गुणवत्ता दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं?
2: हमने सरदार सरोवर डैम से लेकर बहुत सारी परियोजनाओं में देखा, प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का इसमें अनुभव है, कि अनेक कारणों से इस तरीके का डिले हो जाता है और वो डिले उस योजना के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में देरी होती है। केवल उतना नहीं, उसकी कॉस्ट भी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और वो अल्टीमेटली तो लोगों पर, क्योंकि सरकार उस योजना के लिए पैसे जो खर्च करती है वो तो टैक्स कलेक्शन से ही आते हैं। और जब हमको ये दिखता है कि कोई योजना जो एक्स अमाउंट में हो रही थी, उसके सडनली 3x या कभी कभी तो 10x तक उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतनी डिले हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, प्लानिंग के समय ही उसके आगे के जो सीढ़िया है उनको निश्चित करना, उसके गुणवत्ता के भी मानक निश्चित करना, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसका स्पीड और उसके गुणवत्ता के आधार पर जो पैमाने हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए भी प्रगति प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत उपयुक्त साबित होता है इसी कारण से।
1: समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनको अलग अलग हिस्सों या पैकेजेस की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक एकीकृत इकाई के तौर पर देखना चाहिए और उसी तरह से उनकी निगरानी की जानी चाहिए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये क्यों जरूरी है?
2: देखिए, बहुत सारी योजनाएं बनते हुए क्लियरेंसेस के इश्यूज होते हैं और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का भी रोल होता है। मतलब योजना रेलवे की है लेकिन उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का भी क्लियरेंस है, कभी NHAI का भी, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी ये आता है। यदि हम इस सारी योजना को प्लानिंग के स्टेज पर ही इंटीग्रेटेड अप्रोच में एकात्म दृष्टि से देखें तो क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, आर्थिक और जो तकनीकी दोनों विषयों पर, उस फिजिबिलिटी को हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन से वर्कआउट कर पाएंगे। दूसरा, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि मान लीजिए रोड का काम हो गया और रोड का काम होने के बाद ध्यान में आता है, अरे यहाँ से तो बाद में कोई मेजर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होना था या ड्रेनेज का काम होना था, फिर वो रोड जो है वो उसका नुकसान होता है। यदि इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्लानिंग रही और उसका एग्जीक्यूशन रहा तो अपने आप ही उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और लोगों को उसका उस योजना का पूरा लाभ भी मिल सकता है। तो एक तरफ टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का एस्पेक्ट है, दूसरा इसकी टाइम पर डिलीवरी और उस योजना के संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए ये एकात्म दृष्टि बहुत आवश्यक है।
1: हम जब इस एकीकृत इकाई की तरह देखने की बात करते हैं तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जब एकीकृत पहल अपनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग मंत्रालयों का, विभागों का और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल होना भी चाहिए। ये तालमेल कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
2: मुश्किल जरूर होता है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो स्वाभाविक रूप से लोगों को दिखता है वो राजनीतिक कारण होता है, किसी राज्य स्तर पर किसी एक की सरकार है, दूसरी तरफ दूसरी। लेकिन समान राजनीतिक दल की सरकार होने के बाद भी या केंद्र सरकार के भी विभिन्न, मुझे शुरू में याद है जब फास्ट ट्रैक पर रेलवे के प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई थी तो उसमें बहुत सारे जमीन के मामले जो है वो एनवायरमेंट के विषय में फंस जाते थे
1: जी,
2: और वो क्लियरेंस मिलते मिलते देर हो जाती थी, इसमें रेलवे की कॉस्ट बढ़ जाती थी। ये दूसरा विषय होता है। तीसरा, हर डिपार्टमेंट का अपना एक वर्क कल्चर और एक अपनी काम करने की पद्धति विकसित होती है, उसके बारे में वो प्रेसिडेंस के आधार पर चलता है। गवर्नमेंट की अपनी एक मेमोरी होती है, वो डिपार्टमेंट की मेमोरी होती है, उसमें वो बहुत बड़ा बदलाव करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें नियमों में और इसमें भी कहीं उनको बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है। चौथा कारण ये होता है कि अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इंटरवीन करते हैं, तो कभी एनवायरमेंट के नाम पर, कभी सोशल जस्टिस के नाम पर, कभी और अनेक विषयों के नाम पर। एक्टिविज्म जब शुरू होता है या लीगल प्रोसेसेस में उसमें हस्तक्षेप किया जाता है तो ये समन्वय और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लीगैलिटीज भी फिर इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा देती है। तो इस कारण से ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है और ये जो एकीकृत अप्रोच है किसी भी परियोजना के प्लानिंग में ही उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखने का, उसके कारण मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा विषय सेक्रेटरीज के लेवल पर वहीं पे एड्रेस हो जाता है और उसको फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लेवल पर बहुत सारे वो विषय स्मूदनिंग वे में हैंडल हो सकते हैं जो पहले शायद प्लानिंग के लेवल पर नहीं आते थे, एग्जीक्यूशन के लेवल पर आ जाते थे।
1: जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपने जैसा कहा कि जब भी ये परियोजनाएं बनती हैं या जब ये लागू होती हैं तो देरी होने की वजह से इसकी जो कीमत होती है, इसकी जो लागत होती है वो काफी बढ़ जाती है। जो इसका असर होता है वो अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि हम एंड यूजर जिनको कहते हैं, आम आदमी, व्यवसायों और आखिरकार अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म की कितनी अहम भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमको एंड टू एंड अप्रोच इसमें लेना चाहिए और जो क्रिटिकल गैप्स है उनको फिलअप करने के लिए हमको कमीशनिंग के समय और डिलीवरी के समय हम किन उद्देश्यों से इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे हैं और वो प्रोजेक्ट, वो उद्देश्य हम सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो गुणवत्ता का एक पैरामीटर तो ये भी है ना कि जिनके लिए बना रहे हैं उन तक वो योजना पहुंच रही है नहीं, या उसके कारण उनका, जैसे ईज ऑफ लिविंग की बात आजकल आती है, तो उनका सही में उसके कारण जीवन मान जो है वो सहज हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि प्रगति जैसे टेक्नोलॉजी, मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इंटर डिपार्टमेंटल डायलॉग का उपयोग करते हुए इन योजनाओं के बारे में पहले नियोजन और फिर कार्यान्वयन होना, उसका एक तरीके से अनुवर्तन होना, फॉलोअप होना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने सहज की है और उसका निश्चित इस संदर्भ में उपयोग है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कही इस बैठक में कि उन्होंने कहा कि बड़े परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्लानिंग करते वक्त ढांचागत सेवाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर की संभावना तलाशनी चाहिए। तो ये यूटिलिटी कॉरिडोर्स जिनकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे वो लागत कम करने और लागू करने में, जो भी परियोजनाएं हैं उनको लागू करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं और कितने जरूरी हैं?
2: बिल्कुल जरूरी है। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए कि फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है और रेलवे ने इस पर बहुत बड़ा प्रगति की है, तो क्या ऐसी संभावना ही नहीं हो सकती कि जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए भी उस कॉरिडोर का कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल रेलवे के माध्यम से नहीं पहुंचाए जाते। तो कॉस्ट जो किसी भी चीज की जो बढ़ती है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है। हम कॉरिडोर क्रिएट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए जहां पे भी संभव हो, तो हम इसमें ना केवल कॉस्ट इफेक्टिव इन सारे ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी को कर पाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा फिजिबल हो जाएंगे। तीसरा, हम बहुत सारे संसाधनों का कॉमन यूटिलाइजेशन अलग अलग मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स में कर पाएंगे, और उसके कारण जो कम स्थान पर अधिक यूटिलाइजेशन उस प्रोजेक्ट का हो सकता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एविएशन सेक्टर के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में कुछ फैसिलिटी, अभी तो मैं केवल कार्गो के संदर्भ में बोल रहा हूँ, रेलवे के लिए अलग है, लेकिन वो है एक ही स्थान से।
1: बिल्कुल,
2: तो वो अलग अलग अलग अलग जगह पर क्यों हो, फिर वो कॉमन हो सकती है, उसमें स्पेस शेयरिंग हो सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री वैसे करती है, तो ये गवर्नमेंट इसमें भी हो सकता है।
1: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक और कृषि डेटा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। किसानों के लिए कितना जरूरी देखते हैं आप?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एग्री स्टैक के माध्यम से एक बार किसान इसमें इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सारा ही एग्रीकल्चर डेटा कि किस तरीके की फसल आने की संभावना है, किस तरीके का उसको रिटर्न मिलने की संभावना है, उसकी सरकार खरीद करेगी तो उसके लिए उसको क्या मिलने की संभावना है, ये तीनों चीजों का इंटीग्रेशन ही एग्री स्टैक के माध्यम से संभव होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत ग्राउंड पर अभी आ रही है, क्योंकि भारत का किसान इस तकनीक के बारे में बहुत ज्यादा उसको ट्रेन नहीं किया गया है, तो अभी कुछ स्थानों पर इसका, जिसको हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन या प्रशिक्षण, तो मुझे लगता है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में ये जो किसानों के अलग अलग कोऑपरेटिव्स बने हैं, संगठन बने हैं, इस प्रशिक्षण योजना में उपयोग होता है, तो एग्री स्टैक ये लॉन्ग टर्म में हमारी फूड सिक्योरिटी और उसके साथ साथ हमारा जो असेसमेंट है सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसके प्रोसेसिंग का, उसके परचेसिंग का, इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।
1: प्रगति, हम जैसे बात कर रहे थे इसको शुरू हुए एक दशक से ज्यादा हो चुका है, तो भारत में गवर्नेंस को ज्यादा बेहतर बनाने और जवाबदेह बनाने में अब तक ये किस तरह की भूमिका निभा चुका और आगे आप इसके लिए क्या देखते हैं, आने वाले सालों में ये कितनी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
2: देखिए, हम पिछले 10-12 साल में, खास करके प्रगति का ये आने के बाद, जिस तरीके का हम सारा ये देख रहे हैं कि कितने गति से प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो बिफोर टाइम डिलीवर हुए हैं। प्रधानमंत्री अपने खास करके राजनीतिक भाषणों में हमेशा कहते हैं कि जिसका हम भूमि पूजन करते हैं उसी का फीता हम ही काटते हैं, तो ये एक सेंटेंस ये दिखाता है कि इसके कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी की कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो कॉस्ट एस्केलेशन होता था उसमें कटौती हुई है, इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन इसमें बढ़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण इस सारे काम में टेक्नोलॉजी का यूज इंटीग्रेशन में वो बढ़ा है, और मुझे लगता है इसके कारण ईज ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हमने एंड टू एंड डिलीवरी में बहुत बड़ी छलांग लगाई है, हमारी बहुत सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की इसके कारण घटी है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट गवर्नेंस के डिलीवरी के संबंध में हमने प्राप्त किया है।
1: प्रफुल्ल केतकर जी, आपने आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रगति, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsZone AIR और यूट्यूब चैनल NewsZone AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. सांस चले में स्वागत है आपका. नमस्कार. शाम की इस खूबसूरत नर्म सी फिजा में जब दिन धीरे धीरे ढलता है और आसमान पर यादों के रंग उतरने लगते हैं तो अक्सर किसी अपने का ख्याल चुपके से दिल में दस्तक दे जाता है और ऐसे ही एहसास को आवाज़ देता है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का बहुत ही खूबसूरत गीत हुई शाम उनका ख्याल आ गया. आइए सुनते हैं यही गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये गीत आपने सुना साल 1963 की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से रफ़ी साहब की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल और रवि का संगीत। और अब इस ढलती हुई रोशनी में घोलते हैं यादों की मिठास और सुनते हैं फिल्म मौसम का वो नगमा जो बीते दिनों की याद और सुकून की तलाश को बयां करता है। यूं तो इस गीत की शुरुआती पंक्ति मशहूर शायर मिर्जा गालिब के शेर से प्रेरित है, मगर गुलजार साहब ने इसे विस्तार देकर एक खूबसूरत गीत के रूप में गढ़ा, जिसे संगीतबद्ध किया मदन मोहन साहब ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें से 2500 स्वीकृति पत्र एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए गए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उन्हें उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह मासिक सहायता महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा, रोजमर्रा के निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।
1: वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई है। पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दिए जाएंगे, जबकि 1500 रुपये की राशि फिक्स डिपॉजिट में जमा की जाएगी। इस पर मिलने वाले ब्याज का वहन सरकार करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए करीब 9,13,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 6,52,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं।
2: दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: दिल्ली सरकार ने कहा है कि महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना को मिली प्रतिक्रिया दिल्ली की महिलाओं के इस पहल में विश्वास को दर्शाती है और राजधानी में अवसर तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के सरकार के संकल्प को और मजबूत करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
0: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लक्ष्मी योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
3: लक्ष्मी योजना के जरिए 2500 रुपए की राशि सभी महिलाओं को दी जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। और इस ये वादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण का, उसकी ओर एक बड़ा कदम है दिल्ली सरकार का।
0: दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
4: दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने बताया कि H1N1 आमतौर पर अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। दिल्ली चिकित्सा संघ के अनुसार दिल्ली सरकार ने इन्फ्लुएंजा के मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अस्पतालों में आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं, ताकि H1N1 के किसी मरीज के आने पर उसे आपात स्थिति में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
5: आइसोलेशन बेड बनाया गया है, उस आइसोलेशन बेड को इस रखा है कि कोई H1N1 का पेशेंट आए तो उसके लिए एक इमरजेंसी के रूप में पे उसकी हर चीज सुविधा रहे, फ्लूइड्स रहे, ऑक्सीजन रहे, मेडिसिन रहे अवेलेबल, डॉक्टर्स उसमें रहे। अगर पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखते हैं कि हाई ग्रेड फीवर के साथ आया और उस एक्सरे में कुछ पैच वर्क दिखा तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए हमने आइसोलेशन फॉर द इमरजेंसी रखा गया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने जल जमाव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस स्थिति को एक आपदा माना जाए और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विभागों और एजेंसियों को अलग अलग काम करने के बजाय पूरी तरह से तालमेल के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से मौजूद रहने और मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का तुरंत समाधान करने को कहा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि इस बार बारिश उम्मीद से कुछ अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि परिषद लंबे समय की योजना के तहत जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर तेजी से काम कर रही है। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने बताया कि परिषद ने नालियों से गाद हटाने के साथ साथ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया है।
1: हमारे यहाँ कुछ ड्रेनेज ऐसी हैं जो ब्रिटिश काल से की भी है, जो ब्रिक बैरल्स हैं, उसको बाकी सब चीजें जिनको हमने काफी कुछ ठीक भी किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एनडीएमसी की जनता को 100% वाटर लॉगिंग फ्री एरिया दें, तो उसको लेके हम हमेशा तत्पर रहते हैं।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एम्स ने जानकारी दी कि इसके लिए इनवेसिव बायोप्सी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मोटापे और फैटी लीवर वाले 189 मरीजों पर किए गए एक शोध में लीवर की शक्ति, एक खास ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट काउंट से लीवर की सेहत का पता चला। एम्स ने बताया कि शुरुआती पहचान और आसान डायग्नोसिस से लीवर की बेहतर सेहत में मदद मिल सकती है। दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस उपायुक्त को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संबंध में कांग्रेस पार्टी और अन्य के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही एक झूठी तथा भ्रामक पोस्ट को लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा। सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि यह दुखद है कि राजनीतिक रूप से भाजपा का मुकाबला करने में अक्षम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे अन्य दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भाजपा और उसके नेताओं पर आक्षेप लगा कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले पर उसका कुप्रचार कभी सफल नहीं हो सका। नगर निगम ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत पश्चिम और सेंट्रल नॉर्थ जोन की पशु चिकित्सा सेवा टीमों ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से विभिन्न इलाकों में आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान पीतमपुरा, हर्ष विहार, रानीबाग, ओम विहार और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 16 आवारा मवेशियों को पकड़कर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। निगम ने कहा कि सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी से होने वाली घटनाओं और यातायात संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर मजबूत बनाने पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर, एआईईईए पीजी और एआईसीई पीएचडी 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि वेलकम, खजूरी खास, सोनिया विहार और नंद नगरी पुलिस स्टेशन की टीमों ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। 5 अलग अलग मामलों में 2 महिला शराब तस्करों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह फर्जी QR कोड के माध्यम से विक्रेताओं के साथ पैसों के लेन देन में हेरा फेरी करते थे। मीडिया से बातचीत में उत्तरी जिले की पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि अब तक इससे जुड़े 8 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए फर्जी अकाउंट्स को भी बंद किया गया है।
2: इस अभियुक्त का नाम निखिल है, जो 22 साल का है और सब्जी मंडी का रहने वाला है, और इसके 8 केसेस सामने आए हैं अभी तक। इसके 8 केसेस में 2 केसेस बॉम्बे के हैं, मुंबई के हैं, और 6 केसेस दिल्ली के हैं। के जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बाउंड डाउन किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओणम के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि समृद्धि और एकजुटता का यह त्यौहार हर घर में शांति, खुशहाली और खुशियां लाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज से देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन ईमानदारी, विश्वसनीयता, करुणा, धैर्य और क्षमा का शाश्वत संदेश देता है। उन्होंने बाड़ा हिंदू राव में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। इस कार्यक्रम में बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र से विधायक इमरान हुसैन और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमरान उमर अहमद इलियासी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यह निशुल्क यात्रा सुविधा कल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावित रहेगी। इन महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले 15 वर्ष तक के बच्चे भी बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा दिल्ली और चंडीगढ़ सहित किसी भी स्थान की यात्रा के लिए मान्य होगी। उत्तर रेलवे के लिए 8 प्रतिभाशाली खिलाड़ी एशियन खेल 2026 में भारतीय टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन कबड्डी, हॉकी और मुक्केबाजी के लिए किया गया है। उत्तर रेलवे में खेलों के इस निरंतर प्रगति के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के पदाधिकारियों का सहयोग है। राजधानी दिल्ली में आज भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों के लिए लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। बाढ़ के कारण अब तक 46 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुआकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977-9851-316-807 और 977-9709-107500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचली इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं। रावलकोट और POJK क्षेत्र के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कथित रूप से लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि पट्टन क्षेत्र में जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. In Nepal, more than 100 Indians are among nearly 500 people reported missing in

किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये वक्त है मधुरिमा का और आज मधुरिमा में आपके साथ है विभा। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग का अपना समय और अपना भाव होता है और आज की मधुरिमा समर्पित है उन रागों पर आधारित गीतों पर जिन्हें गाने का समय होता है मुख्य रूप से संध्या काल। तो शुरुआत करते हैं राग भोपाली पर आधारित गीत से जिसे हमने लिया है फिल्म भाभी की चूड़ियां से, आवाज लता दी की।

हमारा अगला गीत है साल 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र से राग चारुकेशी पर आधारित, जिसमें संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे इंदीवर साहब ने। आवाज एक बार फिर लता दी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

राग झिंझोटी पर आधारित ये गीत आपने सुना फिल्म चिराग से रफी साहब की आवाज में। और चलते चलते अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो जीवन के दोराहे और रिश्तों की नाजुक भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। आर डी बर्मन, जो पाश्चात्य संगीत के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत पर भी समान प्रभुत्व रखते हैं और शायद इसीलिए उनके कई गीत आधुनिक होते हुए भी रागों की आत्मा को संजोए रखते हैं, तो सुनते हैं एक ऐसा ही गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, राग यमन पर आधारित।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के इस एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट शक्ति प्रताप सिंह।
1: और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शक्ति, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बनाए। भारत मजबूत स्थिति में।
1: आईसीसी ने आज टेस्ट क्रिकेटरों की रैंकिंग जारी की। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क शीर्ष पर पहुंचे।

0: मुंबई में चल रही एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ में खिलाड़ियों और युवाओं के साथ करेंगे संवाद।
0: वीर चोटरानी हंगरी में खेले जा रहे पीएसए कॉपर टूर्नामेंट बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
1: और एशियाई खेल 19 सितंबर से जापान में शुरू इस बार शामिल किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले 17 सितंबर और पुरुषों के 24 तारीख से शुरू।
0: जी हां, और सबसे पहले खेल खबरों की शुरुआत करते हैं इस समय क्रिकेट से। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं शक्ति।
1: और सिद्धार्थ, इसके साथ ही श्रीलंका ने आखिरकार इस मैच में पहली बार बढ़त बनाई है, हालांकि 16 रन की बढ़त है। इससे पहले आज सुबह श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट हो गई। सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
2: भारतीय टीम कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बेहद करीब पहुंच गई है। चौथे दिन की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं। ऐसे में टीम इंडिया मुकाबले के अंतिम दिन श्रीलंका की पारी को जल्द समेटकर जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलना शुरू किया। सारांश जैन ने जल्द ही लाहिरू कुमारा और सोनल दिनुषा को पवेलियन भेजते हुए श्रीलंका की पूरी पारी को 290 रन के स्कोर पर समेट दिया। दिनुषा ने 103 रन की शतकीय पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 और सारांश जैन ने 2 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को एक एक सफलता मिली। इसके बाद भारत ने मेजबान टीम को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया। पसिंदु सूर्या बंदारा ने कामिल मिशारा और कामिंडू मेंडिस के साथ मध्य क्रम में कुछ साझेदारियां बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वे श्रीलंका को बड़ी बढ़त नहीं दिला सके। पसिंदु 92 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मिशारा ने 32 और मेंडिस ने 55 रन बनाए। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्द समाप्त करना पड़ा। भारत के लिए मानव सुथार ने 2 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, सारांश जैन और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिला। देखना दिलचस्प होगा कि कल भारतीय टीम कितनी जल्दी ये मुकाबला और श्रृंखला अपने नाम करती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: बिल्कुल शक्ति, अगर हम देखें तो जिस तरह से फॉलो ऑन के बाद पसिंदु ने 92 रन की पारी खेली, कामिंडू मेंडिस ने 55 रन बनाए, लेकिन फिलहाल बढ़त इतनी कम है और ज़्यादा स्कोप नहीं है श्रीलंका के पास। 6 विकेट पर 229 रन बने हैं, बढ़त जैसा कि आपने कहा कि कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती लग रही है, और अब भारतीय जो टीम है उसने पूरी तरह से अपना शिकंजा वो कस लिया है, और कल का दिन किस तरह का रहने वाला है।
1: कल के दिन की अगर बात की जाए सिद्धार्थ, तो ये शायद वर्ष के उन गिने चुने दिनों में होगा जब लोग दुआ करते हैं कि आज बारिश ना हो, क्योंकि मैच को लगातार परेशान किया है, खलल आया है। और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होंगे सोनल दिनुषा, जो पहली पारी में शतक बना चुके हैं 103 रन और अभी नाबाद हैं। तो भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी समेटा जाए इस पारी को, और जितनी भी बल्लेबाजी करनी है जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को हासिल करके एक बेहतरीन क्लीन स्वीप भारत का इंतजार कर रही है यहाँ पर।
0: बिल्कुल, और सारांश जैन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, और कल सबकी नजर, जैसा कि आपने कहा कि सोनल दिनुषा इस समय नाबाद हैं, 7 रन उन्होंने बनाए हैं, उनका साथ दे रहे हैं केशा नुबंदा जिन्होंने 3 रन बनाए हैं, ये दोनों क्रीज पर हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का मौसम चल रहा है, भारतीय गेंदबाज जिस तरह का दबदबा और प्रेशर बना रहे हैं श्रीलंकाई बल्लेबाजों के ऊपर, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा है।
1: जी बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि आप देखिए कि आपने सारांश की बात की, मानव सुथार हैं जो लगातार विकेट ले रहे हैं, अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं और आज उन्होंने तकरीबन 22 विकेट पूरे कर ली हैं 3 मैचों में। और ऐसा नहीं कि कोई एक या दो खिलाड़ी आपके लिए विकेट ले रहे हैं, जो भी गेंदबाज आता है वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, मोहम्मद सिराज हो, रविंद्र जडेजा हो, तो कह सकते हैं कि आखिर श्रीलंकाई बल्लेबाज किस किस खिलाड़ी से बचें।
0: जी बिल्कुल, और आज फॉलो ऑन के बाद जिस तरह से मानव सुधार ने गेंदबाजी करी और 2 विकेट लिए, 4.50 का उनकी इकोनॉमी थी, तो एक बेहतरीन हम कहेंगे कि गेंदबाजी उन्होंने उसका प्रदर्शन किया, और अब सबकी नज़रें लगी हुई हैं जैसा कि कल क्या कुछ रहता है। और फिलहाल भारत एक, जैसे कि ये पूरी श्रृंखला को जो है हम कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। और आपने गेंदबाजी की बात की तो आज आईसीसी के हवाले से एक और गेंदबाजों को लेकर खबर आई, जहां ताज़ा जारी आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जिनका कहर देखने को मिला बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर, दो मैचों में 12 विकेट मिचेल स्टार्क जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं सिद्धार्थ।
0: जी बिल्कुल। और स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ मकाई टेस्ट में 12 रन देकर 6 विकेट और दूसरी पारी में 39 रन देकर 4 विकेट लिए, तो एक शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि पहली बार वो अपने करियर में शीर्ष स्थान पर काबिज होने में सफल रहे हैं। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे, वो पीछे हो गए हैं, फिलहाल शीर्ष पर नहीं है, दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी तीसरे स्थान पर हैं।
1: वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डाली जाए तो कोई खास बदलाव नहीं है। शीर्ष पांच में इंग्लैंड की हैरी ब्रुक पहले, जो रूट दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर हैं, तो यहां पर कोई ज्यादा बड़ा बदलाव अभी देखने को नहीं मिला है सिद्धार्थ।
0: बिल्कुल, हैरी ब्रूक पहले स्थान पर हैं, उन्होंने लॉर्ड्स में 91 रन की शानदार पारी खेली थी। बल्लेबाजी में ऋषभ पंत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो 6 स्थान के फायदे के साथ दोबारा यहां पर शीर्ष 10 पर पहुंच गए हैं। वो 6 स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर हैं। और श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से गोल में पंत ने 39 और 66 रन की पारी खेली थी वो काफी अच्छे फॉर्म में है। और कामिनी मेंडिस और यशस्वी जायसवाल टॉप 10 से फिलहाल बाहर हो गए हैं।
1: जी तो और इसके साथ साथ अगर सिद्धार्थ बात कर ली जाए कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी, तो क्या खबर है आपके पास?
0: बिल्कुल, नॉर्थ जोन ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली वेस्ट जोन को 52 रन से हरा दिया है।
1: वहीं चौथी पारी में वेस्ट जोन को जीतने के लिए 287 रन की आवश्यकता थी, लेकिन वेस्ट जोन की पारी 234 रन पर सिमट गई और 52 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन पहले ही अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर चुका
0: है। अगर हम सेमीफाइनलिस्ट की बात करें तो अब दलीप ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल सेंट्रल जोन वर्सेज ईस्ट जोन होगा, दूसरा सेमीफाइनल साउथ जोन वर्सेज नॉर्थ जोन खेला जाएगा। आपको बता दें कि दोनों सेमीफाइनल मैच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रविवार 30 अगस्त से खेले जाएंगे। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एशियाई खेल 19 सितंबर से जापान में शुरू होने जा रहा है। इस बार शामिल किए गए क्रिकेट की मुकाबलों की तारीखें सामने आ गई हैं। टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले 17 सितंबर और पुरुषों के 24 सितंबर से शुरू होंगे।
1: जी बिल्कुल। और सबकी नज़र भारतीय टीम पे होगी, पिछले बार की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो भारतीय पुरुष टीम 28 सितंबर को खेलेगी, जो कि ग्रुप ए का जो विजेता होगा, जो कि भारत को एक तरीके से कहने क्रिकेट में कम सुनने को मिलता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है यहाँ पर सीधा क्वार्टर फाइनल में।
0: और क्वार्टर फाइनल की आपने बात की है तो भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी वाइल्ड एंट्री, जो आपने बोला है, सीधे क्वार्टर फाइनल में उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए यहां पर प्रवेश मिला है। और पिछले एशियाई खेलों में जिस तरह का भारत का प्रदर्शन था, अगर हम देखें तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में हमने हांगझो में गोल्ड मेडल जीता था, तो निश्चित तौर पर इस बार भी हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही माकूल है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो ये अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर को जापान के खिलाफ करेगी, जबकि 20 सितंबर को टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेगी। 22 सितंबर को ब्रॉन्ज और फाइनल मुकाबला खेला जाना है। तो अब सबकी नजरें इस पर होंगी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल देश भर में एक विशाल कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस पहल के द्वारा देश भर में 1,500 से अधिक स्थानों पर सिद्धार्थ युवा खिलाड़ी और शिक्षण संस्थान एक साथ आएंगे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: ये कार्यक्रम खेल प्रेमी युवाओं और भारत के नीति निर्माताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रयास है, जिससे युवाओं को अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा करने का अवसर मिलेगा। युवा खेल और युवाओं से जुड़े चार मुख्य विषयों पर अपने विचार, सुझाव और नए आइडिया साझा करेंगे। पहला, बेहतर सुविधाएं, कोचिंग और मौके जमीनी स्तर तक पहुंचाकर खेल इकोसिस्टम को मजबूत करना। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से टैलेंट की पहचान और एथलीट के विकास पर ध्यान देते हुए 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट को तैयार करना, तीसरा युवा नेतृत्व को मजबूत करना और शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, चौथा विकसित भारत के लिए युवाओं का सशक्तिकरण जिसमें भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स, वॉलंटियरिंग और राष्ट्र निर्माण के मौके शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा लीडर संवाद क्विज आयोजित की जाएगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: और दोस्तों अब नजर डालते हैं स्क्वाश के ऊपर। वीर चोटरानी हंगरी में खेले जा रहे पीएसए कॉपर टूर्नामेंट बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनो को 14-12, 12-14, 11-6 और 11-8 से हराया, तो अब एक सेमीफाइनलिस्ट पक्का हुआ है। और शक्ति आप ये बताइए, विल्वन सेंथिल कुमार के मैच पर आप नजर बनाए हुए थे, क्या कुछ रहा मैच में?
1: जब तक हम ये खबर पढ़ना शुरू किए थे शायद एक या दो पॉइंट्स बचे थे, लेकिन सेंथिल कुमार ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने मलेशिया के एन यो एनजी को 3-0 से हराया, यानी कि 11-2, 11-9 और 11-8 से 53 मिनट मुकाबला चला और भारत के दोनों खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में थे सेमीफाइनल में अपना स्पॉट फिक्स कर चुके हैं। सिद्धार्थ
0: बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी खबर आ रही है हमारे पास स्क्वाश से, और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं शतरंज की। मुंबई में चल रही एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त मयंक ने 9 राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रूस के आर्टेम पेंगिन ने 7 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि भारत के दक्ष गोयल ने 6.5 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यानी मयंक चक्रवर्ती जो ओपन प्रतियोगिता है जिसमें किसी भी आयु के या किसी भी जेंडर के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, तो काफी अच्छा प्रदर्शन है मयंक चक्रवर्ती का।
1: जी बिल्कुल, और जब भी शतरंज की बात होती है और भारतीय खिलाड़ी अगर खिताब ना जीते या फिर शीर्ष में नजर ना आए, ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। जिस तरह से भारत ने बीते कुछ वर्षों में, हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं कि जो एक विश्वनाथन आनंद से एक जो लजसी चली आ रही है, यहाँ तक रोज हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई ग्रैंड मास्टर भारत का उसमें शुमार होता है। आज ये युवा खिलाड़ी मयंक, जिस तरह का खेल, आप सोचिए कि पोडियम फिनिश इसको चेस में नहीं होता है, लेकिन टॉप 3 में 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं सिद्धार्थ।
0: जी बिल्कुल, और शक्ति बता दें कि प्रतीति ने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल कर लड़कियों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दोहरी सफलता दिलाई। कजाकिस्तान की मारिया खोल्यावको ने रजत पदक और निवेदिता वीसी ने कांस्य पदक जीता। ओपन चैंपियन मयंक ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एक और ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया। कांस्य पदक विजेता दक्ष गोयल फिडे मास्टर बने, इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म भी हासिल किया।
1: जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी नजर रखे रहे कि यूएस में ग्रैंड चेस टूर चल रहा है, जहां पर प्रज्ञान नंदा इस समय अपना फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं क्लासिक दौर में। हालांकि उनको थोड़ा सा पीछे रहना पड़ा था, लेकिन अभी ब्लिट्स राउंड होगा, इसके बाद रैपिड राउंड होगा, जहां पे कह सकते हैं कि वापसी और खिताब शायद प्रज्ञान नंदा का इंतजार कर रहे होंगे अभी।
0: बिल्कुल, तो सबकी नजर उस इवेंट पर लगी हुई है कि किस तरीके से प्रज्ञान नंदा प्रदर्शन करते हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ।
1: और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें हमारी स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और सिद्धार्थ को अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने

0: वन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल

0: दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति कल रायपुर में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति M. पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरणम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे

0: द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है, या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचौक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डी एक्सेलेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
1: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं। उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। हाँ, मोटे तौर पे ये कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। यह चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उसे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक

0: कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं।
1: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप?
2: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो ही कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में एलएसी में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है उसको पॉजिटिवली डील किया जाए, लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटिजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटिजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, रॉन्गी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी।
1: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग

0: प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
1: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था। चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया, और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है, और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है, और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें, और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना, ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में वो विश्वास की कमी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके चीन ने पूरा सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं, और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही है डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है, और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुटिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते, इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पिटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए। बॉर्डर रिजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
0: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं, तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत, चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को, डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र अभी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पोलिटिकल समिट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इंप्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड है लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस्ड आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
0: मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
1: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं, और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पांस टाइम के बेसिस पे हो, क्योंकि दोनों तरफ के

0: ट्रेन डिफरेंट है। तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था। और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया। बट अभी भी तीन कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजिला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बेटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यह भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहां बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है, और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
2: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ और चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई

0: रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है तो चीन साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो
1: जी
0: मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जियोपॉलिटिक्स।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धदिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इस असर नुवाकोट और चितनवन तक पहुंच गया। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क किया जा सकता है। दूतावास ने बताया कि वे बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जानमान की हानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक आई बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बात की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनयिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टरों की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands. Nepal Prime Minister Balendra Shah reviewed the situation and rescue and relief efforts with officials and federal parliamentarians from affected districts, including Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha and Chitwan. Meanwhile, India has expressed solidarity with the people of the Himalayan nation. In a social media post, President Draupadi Murmu conveyed sympathies to her Nepalese counterpart, Ramchandra Podel, and the people of Nepal. Vice President C.P. Radhakrishnan also expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart, Balendra Shah, and conveyed his

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना। मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के फुटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है।

0: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों और मृतकों के परिजनों के साथ हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 977-985-1316-807 और 977-970-910-7500 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: बाढ़ के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने बिहार में 9 और उत्तर प्रदेश में 11 टीमें तैनात की हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में NDRF के कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ के कारण गंडक नदी में संभावित बाढ़ को देखते हुए NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने नेपाल घूमने गए तमिलनाडु के पर्यटकों के लिए एक सहायता केंद्र की घोषणा की है। सरकार ने सहायता केंद्र और विदेश मामलों के राज्य विभाग से संपर्क करने की अपील की है। नई दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सर संघचालक मोहन भागवत न्यूयॉर्क में शनिवार को आयोजित होने वाले हिंदू समुदाय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का प्रमुख आधार भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंब होगा, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। कार्यक्रम का संचालन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम द्वारा किया जा रहा है। इसमें अमेरिका के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सामुदायिक संगठन शामिल हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया।
4: चीन के विशेष प्रतिनिधि CPC केंद्रीय

0: ये समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए कि जमीनी स्तर पर उत्पन्न किसी भी स्थिति के समाधान के लिए निर्धारित व्यवस्था, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और अन्य सहमत तंत्रों सहित मौजूदा राजनयिक और सैन्य माध्यमों से शीघ्रता से किया जाएगा। अनुपम और आनंद की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल में स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में कहा कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। प्रशासन ने बताया कि बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। भारतीय टीम श्रीलंका में श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एशियाई खेल 19 सितंबर से जापान में शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच क्रिकेट मुकाबलों की तारीखें सामने आ गई हैं। टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले 17 सितंबर और पुरुषों के 24 सितंबर से शुरू होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए, मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Neena Oracle with the World News. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in Himalayan nation. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. In Pakistan, 14 infants killed after a fire broke out in gynecology ward of a hospital in Islamabad. And in men's cricket, India tightened grip on Colombo test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bote Koshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
3: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for World News.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर जिसका नाम है हर सिंगार लेकर माधुरी है, आज आप सभी के साथ स्वागत है इस कार्यक्रम में। मुसाफिर तुम्हारे लिए ही ये रास्ते बिछे हैं, तुम्ही पर नजर धूप रखे हुए है, तुम्हें ही थकन बन के रहजन कोई ढूंढती फिर रही है तुम्हारे लिए ही। और हम सारे शहर में किसे ढूंढ रहे हैं, सुनिए ये गीत फिल्म बैराग से।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

मोहब्बत कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, इसका जादू ही कुछ और होता है। देख के तुमको सोच रहा हूँ, अब तक जो देखे थे मैंने, क्या वो मंजर झूठे थे? क्या मेरी बीनाई अब तक कोरी थी? मेरे जहन के एल्बम की क्या पहली तस्वीर हो तुम? और इसके साथ ही गीत सुनेंगे आप फिल्म कुदरत से लता जी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: दीवार से गीत सुना आपने किशोर और आशा जी की आवाज में आरडी बर्मन के संगीत से सजा।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये सफर है हर सिंगार का, जिसमें आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। उड़कर जाती एक बदली सी, घुटनों के बल बैठ के पर्वत ने न जाने क्या पूछ लिया। डरे हुए थे सब देखने वाले, दिल जोरों से धड़क रहा था, और सोचिए ना क्या पूछा होगा। उसने यही पूछा जो इस गीत में पूछा जा रहा है, और ये गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म मर्द से आशा जी की आवाज़ में।

इस खूबसूरत से गीत के बाद बारी तो अगले खूबसूरत गीत की है, लेकिन उस बीच में हम भी कुछ कह लेते हैं आपसे। अब देखिए ना, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जब दिल मिल जाते हैं तो फिर वो कुछ और नहीं चाहता, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती।

और इसी के साथ दीजिए माधुरी को इजाजत, क्योंकि हर सिंगार का ये सफर यहीं तक। फिलहाल कुछ ही देर में प्रसारित होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय

0: देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनियाभर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, "India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal." Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 and

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,250। Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स लगभग 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 24,250 से नीचे बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा में भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का कायाकल्प ढांचागत है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी।
0: An important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 183 अंक यानी 0.24% गिरकर 77,473 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 127 अंक यानी 0.52% लुढ़ककर 24,208 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में मामूली बदलाव से 0.1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.8% का

0: उछाल देखा गया। इससे पहले बाजार की शुरुआत मिली जुली रही और शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे चला बिकवाली का दबाव बढ़ता गया, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट में आ गए। सत्र के उत्तरार्ध में तेज गिरावट से सूचकांक में और भी नुकसान देखा गया।
1: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 183 points or 0.24% to close at 77,473. The Nifty lost 127 points or 0.52% to settle at 24,208. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index dipped 0.1%, while the Small-Cap 100 index rose 0.8%. Earlier, the markets opened on a mixed note and traded with modest gains. However, as the session progressed, selling pressure intensified, dragging both benchmark indices into negative territory. The decline gathered momentum during the latter part of the session, with the indices extending their losses and eventually closing to their respective day's low levels.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल 1.9%, लार्सन एंड टूब्रो में 1.8% और पावर ग्रिड 1.5% नीचे आया। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.9% और एक्सिस बैंक में 1.3% की तेजी दर्ज हुई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 16 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, telecommunication lost 1.3%, IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. In contrast, metal as well as commodities rose 1.4%, PSU bank increased 0.8% and financial services added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,330 companies advanced. Shares of 1,990 companies declined, whereas shares of 220 companies remained unchanged.
0: ईद ए मिलाद के अवकाश के कारण आज भारतीय मुद्रा बाजार बंद रहा। पिछले सत्र में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 95.41 रुपए पर बंद हुआ। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकाश जी, इस पूरे महीने अगर अभी तक का सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार देखें तो हम देख सकते हैं कि गिरावट का रुख देखने को हमें मिल रहा है। क्या कारण रहे जो इसे महज मुनाफा वसूली माना जाए या FIS या DIS ने हाथ खींच लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादा गिर सकता था लेकिन DIS ने कई मौकों पर हाथ लगाया है, संभाला है मार्केट को?
2: चलो बात करते हैं आज से शुरुआत करते हैं।
0: जी,
2: आज के जो हेडलाइन नंबर्स हैं, जो इंडाइसिस हैं, नीचे गिरे हुए हैं।
0: जी,
2: लेकिन आपने अपने दोनों ने रीड आउट्स में पढ़ा कि जो ब्रॉडर मार्केट है उन दोनों में, फॉर इंस्टेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम डेटा देखें तो उसमें 1966 शेयर्स एडवांस हुए हैं और उसके मुकाबले में 1548 शेयर्स डिक्लाइन हुए हैं।
0: जी,
2: तो क्या एक माहौल है। और जबकि आपका NSE जो इंडेक्स है, NSE निफ्टी 50, वो डाउन हुआ है 127 पॉइंट से, और ब्रॉडर मार्केट आपको ग्रीन दिखा रही है।
0: जी,
2: तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, बड़ा रुचि वाला फेज है। और जो बड़े शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप शेयर्स हैं, जो निफ्टी 50 में आते हैं या सेंसेक्स में आते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई होगी। लेकिन जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, कुछ सेक्टोरल हैं, उनमें ये जाहिर हो रही है आज की बात कि अब बात करते हैं जो आपने पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करी। ये बात बिल्कुल सच है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने यहाँ से बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थोड़ी थमी है, अभी हल्का फुल्का ग्रीन कभी दिखता है उनका। और ये बात सच है, उसके कई ग्लोबल रीजंस हैं। हमारी वैल्यूएशन भी उनको महंगी लगती है, और कुछ AI का प्ले जिसको बोलते हैं कि हमारे जो IT स्टॉक्स हैं, AI इस टाइम उसमें चलन में है, पूरे संसार में AI में चलन है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है। और उसकी जो AI की वैल्यू चेन है, जिसमें जिनको एक बोलते हैं हाइपर स्केलर्स, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कमिट किए हुए हैं, फिर उसी वैल्यू चेन में आते हैं चिप मेकर्स, फिर उसी वैल्यू चेन में आगे प्राइवेट इक्विटी। तो ये सारा AI का जो प्ले है, उस प्ले को कहीं ना कहीं हमारे इंडियन IT सिस्टम के अपोजिट में रखा जा रहा है, ठीक है। ऐसा इंप्रेशन किया जा रहा है हमारा इंडियन IT सिस्टम उसका एज इफ पार्ट नहीं है।
0: जी,

0: तमाम बैंकिंग की जो प्रणालियां हैं उन पर भरोसा करें या ना करें, ये भी बात आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो हम अगर देखते हैं, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने जितना बैंकिंग में एस्टेब्लिशमेंट किया है वो सपोर्ट कर रहा है?
1: देखिए, हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है बहुत अच्छी सिचुएशन में है, उनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी है। और जहाँ तक ये सवाल है कि डे टू डे मूवमेंट का, हमारी जो इंडियन बैंकिंग है पूरा, नॉट ओनली बैंकिंग द एंटायर फाइनेंशियल
0: इंस्टीट्यूशंस की बात करें,
1: सिस्टम, NBFCs कंपनीज जो हैं, कुछ अच्छी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज बड़ा अच्छा कर रही हैं। और जहाँ तक डे टू डे मूवमेंट का सवाल है, जैसे अनुभा जी ने जिक्र किया कि क्रूड ऑयल का, जैसे ही क्रूड ऑयल में मूवमेंट आती है बैंकिंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात होती है तो बैंकिंग में उसका असर पड़ता है। तो ये है, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हमारा बड़ी अच्छी हेल्थ में है। हमारा जो NPA सिचुएशन है, जो नॉन परफॉर्मिंग, बड़ी वेल विद इन कंट्रोल है। और अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, मझोले बैंक्स हों, छोटे बैंक्स हों, कोई दिक्कत नहीं है। वही एक सेक्टर है विच इज़ वेरी गुड।
0: आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन अभी बन रही है, ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ये कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं?
1: ये चीज़ें माने
0: मतलब कहने का कि हमारी जो जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं क्रूड ऑयल से लेकर के, क्रूड ऑयल के दाम
1: हमारी
0: गिर रहे
1: इकोनॉमी
0: हैं,
1: के लिए कितना
0: जी
1: मान रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: क्रूड ऑयल
1: हाँ
0: के दाम गिर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं इनको
1: हाँ
0: अगर आप थोड़ा सा मिक्स करें तो।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सॉफन हुए हैं, अभी भी 90 के आसपास हैं। हमारे लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम चाहेंगे ये 80 के नीचे आए, 80 के नीचे आए, 75 पे आए, तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे को, हमारी एनर्जी बहुत डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो ये जो निखिल जी जो है ना, हमारी जो आपको गैप नज़र आता है, $90 हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। जो क्रूड का रेट है $90 पर बैरल इज़ नॉट ए कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर, वी वुड लाइक इट टू कम डाउन। दैट्स व्हाई वी वुड लाइक अ नॉर्मलसी इन दी हॉर्मोन्स, एंड बड़ा ज़रूरी है होना हमारे लिए।
2: We do have a story later on in the program that we will talk about what is happening across the Strait of Hormuz. But before that, let's move on to the next story. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption, and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto, Ms. Sitharaman said, India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies, and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. Prakashi, how would you look at this? This comment that has come out, the statement that the finance minister has made, that India is, of course, we all know that it is the fastest growing, one of the fastest growing major economies in the world, but also that the offers that we have, that what we offer to the world in terms of sustained growth, a young population, expanding consumption, how much of and a rapidly growing middle class, along with digital world-class digital infrastructure, how attractive is that? Does it make it for does it make us, for the remaining world, for the other economies, to come and invest and come and do business with us?
1: Well, I would find something very interesting in this visit of Finance Minister Nirmala Sitharaman to Canada. When is this visit taking place? At a time when the tariff to tariff, dollar for dollar, trade kind of a war is full scale on
2: between the
1: US, between the US and
2: and
1: Canada. And we also have been engage with the US to try and striking a deal. So far, it hasn't really happened. So, from strategic point of view, I would rather take this visit of strategic importance.
2: Right.
1: And mind you, this visit is taking place

0: coincidentally or along with Mr. Piyush Goyal's visit to Japan.
1: Yes.
0: And our very important strategic engagement with China and Russia.
1: Yes.
0: Imagine, see the kind of strategic movement that we are making. Mm-hmm. Because of the geopolitical and the geoeconomic unraveling, right. Whatever is happening, we got to be cognizant of that.
1: Yes.
0: So, countries after countries, including Europe and China, are realizing that they need to look beyond the US.
1: Yes.
0: Because, you know, after all, at the end of the day, trade should be a win-win two-way situation. It cannot be one party dominating the other. Even if you are dealing with a small neighboring country, you got to respect a win-win kind of a situation. And if it's not happening in a particular way, then the countries need to look beyond one dominant partner. That's what is you see around.
1: Right.
2: भारत और मोरक्को ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने और निवेश तथा औद्योगिक सहयोग को विस्तार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दोनों देशों की साझेदारी को पहले से अधिक सुदृढ़ करते हुए गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसकी सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद तथा मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार के प्रमुख उमर हिजरा ने की। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया कोस्पी आज 1% की बढ़त और जापान का निक्केई 225 0.6% ऊपर आकर बंद हुआ।
1: लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टोरी। कनाडा हैज इंपोज्ड काउंटर टैरिफ्स ऑफ अप टू 50% on US goods worth $27.6 billion after suspending trade negotiations with Washington. The counter tariffs will take effect on September 8th and cover steel, dairy products, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, electronics and other goods. The Canadian tariffs will be set at 15%, 25% and 50%, matching the corresponding US rate for each product targeted under American Section 338 and Section 232 tariffs. Ottawa has also unveiled a $7.5 billion support package for workers and businesses affected by the escalating trade dispute. A very quick comment from you, Prakashji, on this. Although this is, like we were discussing earlier, the trade war is essentially between the US and Canada. And Canada is the biggest trading partner. Canada's biggest trading partner is the US. But do you see this trade war affecting the rest of the economies and spilling over some spillover effect?
0: Well, it sends signals. The way Canada is handling this situation, and it also then you have also with the kind of next month Xi and Trump are going to meet again, so it sends signals as to what kind of economic scenario is unfolding before us, and then accordingly countries after countries need to put up their strategies together.
1: Right.
2: ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने होर्मुज जल डमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों के यातायात के प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की। ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद भी ये जलमार्ग बाधित है। एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे का प्रावधान और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक स्थायी जहाजरानी गलियारे की शुरुआत और होर्मुज के प्रशासनिक भविष्य के लिए किसी समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से तकनीकी मुद्दों के साथ वार्ता जारी रखेंगे। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबावादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और ओमान अगले 30 से 60 दिन तक एक नए स्थायी और टिकाऊ जलमार्ग पर सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा शुरू करने के अमेरिका के प्रयासों के ओमान के हस्तक्षेप की स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओमान पर बम गिराने की धमकी देने के बाद यह बैठक हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी?
0: जैसे मैंने अनुभा जी से जिक्र किया, सिचुएशन अभी को क्लियर नहीं है मिडल ईस्ट में, और क्लियर नहीं है तो ये एंग्जाइटी का कारण तो है ही सही। तेल आज 90 के आसपास थोड़ा सॉफ्टन हुआ, कल कैसे होगा किसी को मालूम नहीं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये डील हो जाए। ओमान, ईरान और अमेरिका देख रहा है इसको आपस में, ताकि हमारा जो पूरे विश्व को इससे फ़ायदा है और थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रेड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बढ़ाना

0: कुछ ख़राब सा हो रखा है पिछले कई महीनों से, जब से ये
1: ऑलमोस्ट 6 महीने,
0: 6 महीने हो गए।
2: जी
0: तो इसलिए लेट्स होप कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, और ये सब के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आ रही है, ये मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री सफ़र कर रहे हैं, हमारे भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और तेल का भाव जब बढ़ता है तो जाहिर है दिक्कत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से निकले।
1: जी
2: Prakash, you are saying that of course everybody expects some kind of a positive outcome from this meeting, but again, as we were discussing, it's still a very fluid situation what is happening in West Asia for everyone. But do you think that's kind of this fact that Iran and Oman have decided to have some kind of a phased approach and discussions on the opening of Strait of Hormuz, it's I would say a silver lining, would you call it that?
0: Well, I would tend to agree with you to some extent, because Iran and Oman cannot do anything independent of the US.
2: Okay.
0: US, there's a huge pressure on the US administration, on the US government, Trump government, because of the midterm elections there.
2: Uh-huh.
0: People are suffering.
2: Yes.
0: Because of inflation. Interest rates are really shooting through the roof. The bond yields, which represent the cost of borrowing, is crossing 2 decades high.
2: Yes.
0: So those economic pressures, I hope, would force the countries in the conflict to see sense, so that an amicable solution is hammered out of the Hormuz.
2: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell to a 2-week low as renewed talks between Iran and Oman raised hopes that the Strait of Hormuz could be reopened. Brent crude was trading 2.7% down at $86.20 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% lower at $80.18 per barrel when reports last came in.
1: सराफा बाजार में सोना 0.4% गिरकर 161,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी आधा प्रतिशत बढ़कर 242,959 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। प्रकाश जी, एक रुख हम देख रहे हैं, कभी गोल्ड का दाम बढ़ता है तो सिल्वर का नीचे आता है, सिल्वर अगर नीचे आता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अगर नीचे आता है सिल्वर ऊपर जाता है, ये ट्रेंड देख रहे हो। साथ में एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आने वाली जो आरबीआई की मौद्रिक नीति की जो भी बैठक होगी, उसमें क्या आरबीआई के लिए चिंता का विषय हो सकता है तमाम चीजें वैश्विक घटना को, और जो देख रहे हैं कि कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ जिनमें शुगर वगैरह भी शामिल हैं?
0: आरबीआई की मीटिंग तो अभी दूर है
1: जी,
0: लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 10 दिन में बड़ा पॉजिटिव है
1: जी,
0: और पूरे वर्ल्ड में दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हो गया है। और जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, एनर्जी यूसेज उसका काफ़ी रहता है, तो गोल्ड का जो है पॉजिटिव है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अभी और काफ़ी रन बाकी है, और भी थोड़ा सा मजबूती आ सकती है। तो ये तो हुआ गोल्ड का। और जहाँ तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई हर चीज़ का जायज़ा लेता है, क्योंकि जो वैश्विक कारण है वो तो बड़े इम्पोर्टेंट हो चले हैं ना, हम जो आजकल चल रहा है उसको तो इग्नोर करके आप चल ही नहीं सकते ना, ये दिक्कत है।
1: तो प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,250। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एड्रेसेस लीडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इन कैनेडा, सेज इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चरल ड्रिवन बाय रैपिड अर्बनाइजेशन एंड वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सटेंड डाउनवर्ड स्लाइड। And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके साथ माधुरी और ये सफर होने वाला है गीत मेरे मन मीत का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं सदाबहार गीत अपनी हिंदी फिल्म से और खूबसूरत गीतों का खजाना आप सुनिएगा बिना रुके।
1: बात नहीं कर रहे

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है। विदा दीजिए माधुरी को, अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086185142849054905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086139899001212 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779709107500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार जताते हुए श्री बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि एकजुटता की यह भावना दोनों देशों के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। तिब्बत से आरंभ हुई भीषण बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लापता हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भीषण बाढ़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले और सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने C-130J विमान से आपातकालीन सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विदेश प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said, "India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal." The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in 6 districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा का ये सफर लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और आज बात करेंगे उन संभाले हुए सामानों की जिन्हें हमने पूछ के किसी किनारे कर दिया है। पुराना सामान संभल कर रखा है मैंने, पुराना सामान संभाल कर रखा है मैंने, आज भी उसमें कुछ हिस्से मेरे बचपन के भी शामिल हैं, उसमें कुछ यादें मेरी जवानी की शामिल हैं, उसमें कुछ खिलौने मेरे बचपन के दोस्तों के हैं, उसमें कुछ यादें मेरे पुराने रिश्तों के हैं। तो हम सभी जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर अपने घर में संभाल के रखते हैं जो वक्त के साथ पुराना तो हो जाता है, कभी कभी बिना इस्तेमाल का भी हो जाता है, लेकिन हम उन्हें चाह कर भी उठा के फेंक नहीं पाते हैं। ऐसी ही चर्चा आज की रात निशिगंधा के बहाने करेंगे हम और आप।

हमारे घरों में अक्सर कुछ ऐसी जगह होती हैं, जैसे कि बेसमेंट हो गया, स्टोर रूम हो गया, फिर अलमारी का वो ऊपर वाला हिस्सा, या फिर पलंग के नीचे वाला बॉक्स, जहां सालों से कुछ सामान चुपचाप पड़ा रहता है। धूल के पर्दों से ढके ये सामान सिर्फ कबाड़ नहीं होते, बल्कि हमारे बीते हुए कल के जीवंत गवाह होते हैं। अच्छा, उनमें से कोई भी चीज़ हमारा फेंकने को मन नहीं करता। जब भी हम उसमें से कुछ निकालने जाते हैं, लगता अच्छा ये तो उस दिन की याद से जुड़ी थी, और ये खिलौना जिसे मैं बहुत प्यार करता था, ज़रूर आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर भी हम ये सोच के रख देते हैं कि शायद कल कोई इससे खेले। धूल जमी है जिन किताबों और खिलौनों पर, उन पर हमारे कभी गहरे निशान हुआ करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी हमारी कहानियाँ इन पुराने सामानों पर मिल जाया करती हैं।

चेन्नई फिल्म से गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, और हम निशिगंधा के बहाने कर रहे हैं बात पुराने सामानों की। इन पुराने सामानों में कई तरह की चीज़ें होती हैं। इनमें हमारे बचपन के वो टूटे खिलौने भी होते हैं, स्कूल की पुरानी कॉपियां देखते हैं और देखते कि अरे तब हमारी हैंडराइटिंग ऐसी थी और आज कैसी हो गई है। फिर फटे पुराने स्कूल के बैग भी होते हैं और उनमें कोई पुराना पर्चा भी निकल आता है। जंग लगी साइकिल जिसे लगता है शायद अब भी हम चलाएंगे। शादी ब्याह के पुराने कार्ड देखते हैं तो लगता है फलां की शादी तब हुई थी, देखो ना उसकी शादी तो उस तारीख को और उस साल में हुई थी। कोई दादाजी की पुरानी घड़ी या फिर दादी की पीतल की कढ़ाई जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे घर में कुछ इस तरह की चीज़ें, आपके घर में भी ऐसी ही जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। कई बार ये भी लगता है कि इन्हें फेंक दें या फिर कबाड़ वाले को बेच दें, लेकिन एक अजीब सा लगाव हमें ऐसा करने से रोक देता है। ये लगाव उस वस्तु से ज़्यादा उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं और जो यादें हैं उससे होता है, और फिर लगता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी फिर उसी मोड़ पर आ गई है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के

0: इस तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह सफर है निशिगंधा का, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ माधुरी।

फिल्म आंख मिचौली से आशा जी की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप। और आज निशिगंधा के बहाने हम बात कर रहे हैं उन सामानों की जिसे यूं तो हमने पीछे रख छोड़ा है, लेकिन जब भी कभी उनसे धूल हटाते हैं हम भी खुद ब खुद पीछे चले जाते हैं। जब कभी घर की सफाई के दौरान ये चीज़ें अचानक हमारे सामने आ जाती हैं तो मानो समय का पहिया पीछे घूम जाता है। किसी पुरानी डायरी के पन्ने पलटते ही हमें वो अपना बीता हुआ दौर याद आ जाता है।

जब हमारी जो प्राथमिकताएं थीं और जो खुशियां बेहद छोटी और मासूम हुआ करती थीं, आज कैसी अलग सी हो गई हैं। धूल खा रही वो पुरानी साइकिल हमें बचपन के उन्हीं रास्तों पर ले जाती है जहां हम बेफिक्र होकर घूमा करते थे, और लगता है समय बड़ी तेजी से बीत रहा है। काश कि हम फिर से समय के पहिए को पीछे ले जाते और वहीं फिर से साइकिल चलाते और कह पाते कि ऐ समय तू धीरे धीरे

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म कर्म से। विज्ञान की नज़र से अगर हम इन पुराने सामानों को देखें तो भले ही ये क्लटर लगे, यानी घर में बिखराव या फालतू सा सामान लग सकता है, लेकिन अगर मानसिक और अपने भावनात्मक रूप से हम इन्हें देखें तो ये हमारी पहचान का एक हिस्सा होते हैं। ये चीज़ें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँच गए। तो जब भी हम इन सामानों को देखते हैं तो बहुत कुछ मन में आ जाता है। इस वक्त मेरे भी मन में आ रहा है और मुझे लगता है आप भी पुराने सामानों के बीच ज़रूर कहीं खो गए होंगे और पुरानी यादों के साथ कई जुड़ी कहानियों को सोच रहे होंगे।

फिल्म नगीना का ये गीत सुना आपने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और फिर लौटते हैं उसी पुराने सामान की तरफ जिसे कहीं हमने सहेज कर रख दिया है और फिर जब भी देखते हैं वो पुराना वक्त याद आने लगता है। लेकिन आज का जो दौर है, यूज़ एंड थ्रो वाला जो दौर है, जहाँ चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, पता है ये पुराना सामान ना एक ठहराव का एहसास कराता है। हालांकि इन्हें सहेजने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने घर को कबाड़खाना बना ले। समझदारी तो इसी में है कि हम इन यादों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रखें, पुरानी चीज़ों को साफ करके उन्हें फिर से या फिर रिसाइकल करके या सजावट के रूप में इस्तेमाल करके हम उन्हें अपने वर्तमान का हिस्सा भी बना सकते हैं। चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो पुरानी चीज़ें भी हमारे आज से मैच करके रखी जा सकती हैं। और कई बार ऐसा सामान होता है हमारे पास जो हमारे किसी यूज़ का नहीं होता, तो उन्हें ज़रूरतमंदों को भी दिया जा सकता है, जो हमारे लिए पुराना हो गया हो लेकिन किसी के लिए वो काम का हो। तो समय से ऐसी चीज़ों को

को देने में भी भलाई होती है। और उन पुराने खतों का क्या करें जो कहीं हमने लिख छोड़े हैं और जब भी वक्त मिलता है उन्हें पलटते हैं, तो उन्हें पढ़ें और पढ़ के एक नए एहसास की ऊर्जा से भर जाएं। ये भी हो सकता है कि आपका ऐसा ही कुछ सामान किसी और के पास हो।

इजाज़त फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप आशा जी की आवाज़ में। और बात हो रही है पुराने सामानों की, तो संक्षेप में कह दें तो सालों से पड़े ये पुराने सामान घर के निर्जीव हिस्से नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनहरी यादों की तिजोरी है जो वक्त वक्त पर हमें मुस्कुराने की वजह दी जाती है और हमारे सामने यादों की एक बारात गुजर जाती है इसी तरह।

इसी के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ से आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-30/100J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चीन ने भी नेपाल को तुरंत आर्थिक मदद देने का वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिजोरम में 6 सड़कों के निर्माण के लिए 256,70,00,000 रुपए मंजूर किए जाने की घोषणा की है। श्री गडकरी ने बताया कि इन सड़कों की कुल लंबाई 82.89 किलोमीटर होगी और इनका निर्माण केंद्रीय सड़क अवसंरचना योजना के अंतर्गत किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग में हुए विकास और इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की समुद्र में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त परमाणु प्रौद्योगिकी पहल के शुभारंभ से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने वॉशिंगटन में अमरीकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। आज की रात साथ हूँ मैं आपके माधुरी। तो चलिए शुरू करते हैं सुनहरे गीतों का दौर।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में फिल्म मेरे महबूब से, जिसका संगीत दिया नौशाद साहब ने। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म 20 साल बाद से, लता जी की आवाज़ में।

जंगली फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ों में, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी ने लिखे बोल। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री।

0: साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त समय हो रहा है 1:29 और 46 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं गीत सुहाने के इस सुनहरे सफर के साथ।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बहारों के सपने से, लता जी की आवाज़ और आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म हमराज से, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में।

गाइड फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में, एस डी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के लिखे बोलों के साथ। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने का ये सुनहरा सफ़र। रात्रि के 1:46 और हो गए हैं पूरे 35 सेकंड। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल से आशा और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे लगता है कई बार सुनते रहें और बस सुनते रहें। ये गीत था फिल्म लव इन टोक्यो से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, संगीत शंकर जयकिशन का। और अब कार्यक्रम कह रहा है कि मैं इस सफ़र का आखिरी गीत जो है वो पेश करूं, तो वो गीत है फिल्म पड़ोसन से लता मंगेशकर और आशा जी की आवाज़ों में।

और इसी के साथ सुनहरे गीतों की ये पेशकश यहीं समाप्त होती है। इजाजत दीजिए माधुरी को, अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक बाढ़ आई से फंसे भारतीयों नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ से प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बने रहने में भारत के लिए कौशल के साथ साथ बौद्धिक क्षमता निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने नई दिल्ली में क्षमता निर्माण पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी और वैश्विक परिवेश का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए क्षमता निर्माण को व्यक्तिगत कौशल आधारित दृष्टिकोण से विकसित होकर एक सामूहिक और समग्र समाज के प्रयास में तब्दील होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन रहने की बात कही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Prime Minister of Nepal Balendra Shah thanked Prime Minister Narendra Modi for his warm words of solidarity and offering all possible humanitarian assistance to the flood-hit country for the rescue and relief operations. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline plus 977-985-131-6807. Plus 977-970-910-7500 and plus 977-981032-6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh said the National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. The World Bank has offered 25 billion Nepalese rupees in emergency financial assistance to flood-hit Nepal for the rescue, relief and reconstruction of affected areas. The World Bank's country director for Nepal, David Sislin, informed Finance Minister Swarnim Wagle that soon after news of the flood spread, up to 25 billion Nepalese rupees could be mobilized from various sources as emergency assistance. The government has commenced calibrated and targeted release of onions from its buffer stock to ensure sufficient supply and control seasonal price increases in the coming months. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said onion availability is comfortable with production estimates.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप और रात सुरमई लेकर मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। तो रात सुरमई में जहाँ हम सुर के अलग अलग रंग, भावों के अलग अलग रंग को समेट कर लेकर आते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रंग से जिसका नाम है खुशी।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से लता जी की, माफ़ कीजिएगा ये गीत आपने सुना फिल्म अभिमान से लता जी की आवाज़ में। और अगला गीत हम आप तक पहुँचाएँ उससे पहले ये दो लाइनें आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी, मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत ज़िंदगी मुझे।

ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश साहब की आवाज़ में, धरती कहे पुकार से फिल्म से। और अगला गीत कुछ शिकायत लिए है, कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत मेरी, लप पे रह जाती है आ आ के शिकायत मेरी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 2:29 और हो चुके हैं पूरे 17 सेकेंड और ये सफ़र है रात सुरमई का। खुशी के गीत सुन चुके हैं और शिकायत की बारी है अब, और शिकायत में तो बहुत से शिकायतें शामिल हो जाती हैं। मोहब्बत में ही मिलते हैं शिकायत के मज़े पे हम, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है।

शिकायतों की भी एक लंबी फहरिस्त तो होती है। बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं और बहुत सी ऐसी भी शिकायतें होती हैं कि जितना चाहो बदगुमान होके रह जाते हैं, वो दूर नहीं हो पाती। मोहब्बत है तो फिर इस तरह की शिकायतें क्यों हैं, और शिकायतें हैं तो क्या वहाँ मोहब्बत भी है? खैर, ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, और मोहब्बत में शिकायतें होती हैं और शिकायतों में मोहब्बत छुपी होती है। अब जब शिकायतों से हम आगे बढ़ जाएं तो बेवफा से वफा और वफादारों से बेवफाई भी हो जाती है। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं।

0: प्यार में कौन भला बेवफा होना चाहेगा, सबको अपने प्यार की मंजिल प्यारी होती है। और ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म एक कली मुस्काई से लता जी की आवाज़ में, संगीत मदन मोहन साहब का। और जब बात प्यार की हो और उसमें वफा बेवफाई की हो, तो जो मुकर जाए इस मोहब्बत से वही तो बेवफा होगा। पर ये भी सच है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता।
1: ना वफादारी

फिल्म शालीमार से ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार के आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा ये गीत, और इस गीत को जब भी सुनते हैं दिल से गुजर जाता है ये गीत। और रात सुरमई के सफ़र में खुशी हो गई, शिकवे हो गए, शिकायत हो गई, बेवफाई भी हो गई, और बेवफाई के बाद क्या उठता है? जी हाँ, दिल में दर्द का गुबार उठता है, और इस दर्द के लिए क्या कहें? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है?

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म खूबसूरत से तरत अजीज साहब की आवाज में। कब ठहरेगा दर्द, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी।

ये सफर यहीं पूरा हुआ जाता है और इसी के साथ दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार व्यक्त करते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके इस एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थाई आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपये की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ रिश्ते शाम के सिंदूरी रंग जैसे होते हैं। जितनी देर रात गहरी होती जाती है, उतना ही प्रेम का रंग निखरता जाता है। किसी अपने का साथ हो तो साधारण सा दिन भी यादगार बन जाता है।

कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की नहीं होती जरूरत। नजर जिस ओर ठहर जाए, समझ लीजिए दिल ने अपना रास्ता चुन लिया है। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत भाषा शायद यही खामोश नजरें हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

पुराने दौर की मोहब्बत में एक संकोच था, एक इंतजार था, और छोटी सी झलक में भी एक बहुत सारा प्यार छिपा होता था। कभी एक मुस्कान काफी थी, कभी नजर को झुका लेना काफी था, कभी नजर का झुक जाना भी काफी था। जाना ही दिल की पूरी कहानी कह देता था।

मोहब्बत हमेशा बड़ी बड़ी बातों में नहीं मिलती, कभी किसी की खामोशी में, कभी एक प्यारी सी नजर में, और कभी रात की तन्हाई में याद आते किसी अपने के एहसास में मिल जाती है। और इस सुहानी रात में बस इतना ही, छोड़ के जा रही हूँ एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086 0086 185 1428 4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086 139 8999 0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977 985 131 6807 और 977 970 910 7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव और राहत पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपये की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रेमी राष्ट्र के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इस संवाद में युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म न्यू दिल्ली से, लता मंगेशकर और उनके साथियों की आवाज़ में। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म आवारगी से लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। संगीतकार अनु मलिक, गीतकार आनंद बख्शी।

सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज़ में, संगीतकार राजेश रोशन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म मासूम से अनूप घोषाल की आवाज में, संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलजार। आगे बढ़ते हैं सुनते अगला गीत फिल्म गीत गाता चल से, जसपाल सिंह और उनके साथियों की आवाज में।

अभी आपने गीत सुना फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस जी बर्मन। और अब समय क्या रखे, अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले छोड़ के जा रही एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, गीत है फिल्म स्वदेश से, उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज़ में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार एआर रहमान। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश के खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। नेपाल तिब्बत सीमा के भुटकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल के कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00801851429 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए C-130J विमान से मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलिन ने बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सुव्यवस्थित रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं, जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवेन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबेनी को 3-1 से और वेलवेन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के NUNG को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आमना सामना होगा। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। मयंक ने 9 राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 अंक जबकि प्रतीति ने 7.5 अंक हासिल कर लड़कियों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। In Nepal, nearly 160 people have been killed and over 750 including 133 Indian nationals remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the

करती हूँ। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म गोपाला कृष्ण से यशुदास और हेमलता की आवाज में। सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितने ही बादल क्यों ना हो, उनके पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है। दुख की बदली अगर मन पर छा भी जाए तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसे उजाले में बदल सकती है। हर नई सुबह कहती है, कल जो हुआ उसे जाने दो, आज जो है उसको मुस्कुरा कर जियो।

जिंदगी में कुछ पल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती बहुत बड़ी होती है। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट और आसमान पर बिखरी सुनहरी रोशनी, ये छोटे छोटे पल ही तो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए आज की सुबह को कल की चिंता में मत खोइए, इस पल को पूरे मन से महसूस कीजिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलता, हमारे भीतर भी बदल सकता है। अगर मन में सकारात्मकता हो तो साधारण सा दिन भी सुहाना मौसम बन जाता है। आइए आज अपने मन का मौसम भी खुशनुमा रखें, चेहरे पर मुस्कान, दिल में उम्मीद और कदमों में आत्मविश्वास लेकर।